0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
2: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
3: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
1: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
3: जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-53
1: और 90-97-61-60-02।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
6: कहाँ पर?
5: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, छवही खास, गोपालगंज,
6: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
5: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
6: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835565695।
7: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
8: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
7: सुनो दिल से।

0: ठक ठक
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
5: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
6: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
7: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
7: संपर्क 99-393-65-930।
9: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042434 6200042434।
4: नमस्ते, निदेशक CBSE पब्लिक स्कूल बस डीला खास गोपालगंज जितेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं। अभिभावक महोदय, आप अच्छे स्कूलों की एक सूची बनाइए, उन स्कूलों के क्लासरूम में अवश्य जाइए जिसमें आप अपने वार्ड का एडमिशन दिलाना चाहते हैं। वहाँ क्लासरूम में बच्चों के रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स स्किल, बॉडी लैंग्वेज और फेयर नोटबुक देखने का मौका मिलता है। साथ साथ आप 10th और 12th के CBSE का रिजल्ट भी देखने का मौका मिलता है। यदि अबव 95% स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस एवं रिजल्ट संतोषजनक है तो आप तय कर पाएंगे कि स्कूल अच्छा है। जी धन्यवाद।
5: Last 10th board result 2025. Outstanding performance. 50 students scored above 90% and no students scored below 80%. Truly शानदार achievement.
6: लगातार तीन वर्षों 2023, 2024 और 2025 में district topper in commerce stream देने का गौरव।
5: Visit करे CBSE Public School, Bastila Khas, Gopalganj या contact करे 7633970104।
7: सुनिए सुनिए सुनिए,
8: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
7: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
8: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
7: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
9: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894-18744।
5: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
6: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल अम्बेडकर चौक हॉस्पिटल रोड गोपालगंज, अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास बेतिया हाता गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710309 या 90765665750।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: रामू हरिया, कल तैयार रहिए लो, पराली जलाए जले के बा।
5: ठीक बा भैया।
6: ए भैया, एगो सूचना सुन ला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दियल जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
4: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
6: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। 1 टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
4: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
6: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
4: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाई और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी दे के।
6: याद रखी, ठूठ कूड़ा ना, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत, माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
7: के 24 राज्यों में 160 से अधिक शहरों में 280 से ज्यादा स्कूल्स के साथ एजुकेशन में ट्रस्टेड नेम बिरला।
8: अब वही लेगेसी, वही एक्सेलेंस आ गया है आपके शहर गोपालगंज में।
7: इंट्रोड्यूसिंग बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशंस आर नाउ ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 7।
8: और खास बात, प्ले ग्रुप के लिए लिमिटेड पीरियड फ्री एडमिशन।
7: मॉडर्न एजुकेशन विद AC क्लासरूम्स, डिजिटल लर्निंग, कंप्यूटर एंड साइंस लैब्स, लाइब्रेरी एंड सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी।
8: बिकॉज लर्निंग इज बियॉन्ड क्लासरूम्स, म्यूजिक, डांस, योगा एंड जूडो क्लासेस फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऑल टीचर्स आर BEd qualified and follow CBSE guidelines, ensuring quality education.
7: Visit today, Yadopur Road, Saraya Ward No. 1, Shambhu Path, Saraswati Talkies ke paas Gopalganj.
8: Call now 775-994-9440 or 775-994-9441.
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
11: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 309 45 651 या 97

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
2: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
3: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
4: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।

0: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
1: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
0: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
1: यहाँ उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, नेबोश और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
0: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
0: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बंजारी रोड HP पेट्रोल पंप के सामने गोपालगंज।
2: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में,
4: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
6: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल, चाकू से गोद कर एक महिला की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। भूमि विवाद में एक व्यक्ति को मारी गई गोली, 3 आरोपी गिरफ्तार। मोटरसाइकिल लूट कांड में भी 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। अलग अलग मामलों में हुई कार्रवाई में 25 लोगों को भेजा गया जेल। 5639 शिक्षकों की उपस्थिति पर शिक्षा विभाग को हुआ संदेह। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। कल 1 बजे रात्रि में मीरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम जिगना जगन्नाथ तोताराम के टोला में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि संतोष कुमार यादव पिता जंग बहादुर यादव को घर के बाहर खटिया पर जब वे सोए हुए थे उसी समय गांव के ही व्यक्तियों द्वारा सिर में गोली मारकर घायल कर देने की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। सूचना के सत्यापन के लिए थाना अध्यक्ष मीरगंज द्वारा पुलिस बल के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए FSL की टीम के साथ मौके पर निरीक्षण किया गया। आवश्यक भी एकत्र किए गए। बताया जा रहा है कि स्थानीय अस्पताल से घायल व्यक्ति को डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल में रेफर कर दिया और यहां से भी डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया। फिलहाल पटना में उसका इलाज चल रहा है। प्रथम दृष्टया जांच में यह तथ्य पुलिस को सामने आया कि पूर्व के भूमि विवाद को लेकर गोलीबारी की गई है और भूमि विवाद का मामला न्यायालय में लंबित भी है। इसी विवाद के कारण गांव के ही मदन कुमार हरिनंद पिता स्वर्गीय गुलजार चौधरी तथा हरिकेश पिता स्वर्गीय गुलजार चौधरी, ये सभी जगन्नाथ तोताराम टोला के निवासी हैं। इनके द्वारा ही गोली चलाने की संभावना व्यक्त की गई। इस मामले में पुलिस ने पीड़ित परिवार के आवेदन पर कांड दर्ज करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से अवैध हथियार के संदर्भ में पुलिस पूछताछ कर रही है। वर्तमान में विधि व्यवस्था वहां सामान्य है। पुलिस ने कहा कि किसी भी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पुलिस स्थिति पर पूरी निगरानी रख रही है और गिरफ्तार आरोपियों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। कटिया थाना क्षेत्र के अमही बाके गांव में रविवार की सुबह 4 से 5 बजे के बीच एक महिला की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हत्या का आरोप महिला के परिजन पर ही लगा है। हालांकि अब तक इसमें आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और आसपास के लोग भी इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महिला का पति घटना के बाद से फरार है, जिसको लेकर लोगों को संदेह है। बताया जा रहा है की मृत महिला अमही बाके गांव के मनसी मिया के पुत्र नसरुद्दीन मिया उर्फ सहालू की 26 वर्षीय पत्नी नाजिया खातून थी। रविवार की सुबह 4 से 5 बजे के बीच खून से लथपथ महिला का शव जब लोगों ने देखा तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। FSL की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले में वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित कर अनुसंधान में जुट गई। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया और घटना के बाद से ही महिला का पति फरार बताया जा रहा है, जिसको लेकर अंदेशा है कि पारिवारिक कलह में महिला की हत्या की गई है। हालांकि अब तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और पुलिस इस मामले में आवश्यक कार्रवाई और जांच पड़ताल कर रही है। लगभग 1 साल पहले बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के पकड़ी मोड़ के पास 3 मोटरसाइकिल पर सवार 4 अज्ञात अपराधियों ने प्रदीप कुमार पिता राम बाबू प्रसाद एवं साकिर अंसारी पिता अब्दुल कादिर साकिर नबीगंज बाजार थाना बसंतपुर जिला सिवान को हथियार का भय दिखाकर उसकी मोटरसाइकिल लूटने और मारपीट करने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया था। इसी मामले में अब पुलिस ने अनुसंधान करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों को आधार बनाते हुए इस कांड में संलिप्त अभियुक्त छोटू राम पिता दुलाल चंद राम साकिन हेमू छपरा थाना बैकुंठपुर जिला गोपालगंज को विधिवत गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद अभियुक्त ने इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। बताया जा रहा है कि पूर्व में भी 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। इस कांड में कुल 3 अपराधियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है और अन्य संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए मानवीय एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अनुसंधान पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। पुलिस ने कांड के सफल उद्भेदन की दिशा में आगे भी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर जिले के अलग अलग थानों की पुलिस ने 24 घंटों में गिरफ्तार कुल 25 लोगों को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसमें हत्या के प्रयास, हत्या का मामला और शराब की तस्करी तथा कोर्ट के द्वारा जारी वारंट के आधार पर इन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। इन सभी आरोपियों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद इन पर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा पुलिस ने सैकड़ों लीटर शराब और कई वाहन भी जब्त किए हैं। आज जिले के शिक्षा विभाग से एक चौंकाने वाला डेटा सामने आया है। बताया जा रहा है कि जिले के शिक्षक शिक्षिकाएं और प्रधान शिक्षक शिक्षिकाओं की उपस्थिति संदिग्ध पाई गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी संबंधित शिक्षकों से 3 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण की मांग की है। बताया जा रहा है कि जिले में शिक्षकों की उपस्थिति व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई। ई शिक्षा कोष के 1 दिन के डेटा ने ही चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। बताया जा रहा है कि 5,639 शिक्षक शिक्षिकाएं और प्रधान शिक्षक शिक्षिकाओं की उपस्थिति संदिग्ध पाई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने सभी संबंधित शिक्षकों से 3 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण की मांग की है। जांच में सामने आया है कि कई शिक्षक ऑन मार्क ड्यूटी दिखाए हैं, जबकि कुछ बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाए गए हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में शिक्षक तय समय से देर विद्यालय पहुंचकर उपस्थिति दर्ज करते पाए गए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए साफ कहा है कि समय पर विद्यालय पहुंचना और सही तरीके से उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने साफ साफ चेतावनी दी है कि तय समय के भीतर जवाब नहीं मिलने पर संबंधित शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ई शिक्षा कोष के माध्यम से अब शिक्षकों की उपस्थिति पर नियमित निगरानी भी की जा रही है, जिससे अब किसी भी तरह की गड़बड़ी तुरंत सामने आ सकती है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के इस कार्रवाई से शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। जिले में कई जगहों पर सड़क के किनारे लोगों के अतिक्रमण से कई बार लोगों की जान तक जा रही है। ऐसे में अतिक्रमणकारियों को थोड़ा भी मानवता का ख्याल नहीं है। कई जगहों पे लोग सड़क पर ही मिट्टी, गोबर, गिट्टी, बालू इत्यादि गिराकर लापरवाही बस वहाँ कई कई दिनों तक उसको छोड़ रखे हैं और वहाँ से आने जाने वाले व्यक्ति को अचानक गिट्टी, बालू या मिट्टी या गोबर जैसी चीजों पे अगर मोटरसाइकिल चढ़ जाती है तो उनके जीव का काल हो जाता है। आज ऐसा ही एक मामला गोपालगंज सिवान मुख्य पथ पर तुरकाहा में नहर से पहले टर्निंग प्वाइंट पर देखने को मिला, जहाँ एक व्यक्ति की जान चली जाती। बताया जा रहा है कि तेज गति से जा रहे मोटरसाइकिल सवार के सामने से अचानक एक पिकअप गाड़ी आई। पिकअप गजब से बचने के लिए जब मोटरसाइकिल सवार सड़क के किनारे अपने गाड़ी को ले गया तो उसके सामने गोबर का बड़ा सा अंबार आ गया और गोबर में उसकी गाड़ी घुस गई, जिससे वह गिरा और पूरे शरीर में गोबर और कीचड़ लग गया। गनीमत रहा कि वह अपनी बाईं तरफ गोबर के ढेर में गिरा। अगर वह दाईं तरफ गिरा होता तो पिकअप वाला उसके सर के ऊपर से ही पिकअप चढ़ाकर उसकी जान ले लेता। पीछे से जा रहे एक राहगीर ने जब इस स्थिति को देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। तुरंत उन्होंने घायल व्यक्ति को मदद किया, उन्हें अस्पताल पहुंचाया और इसकी जानकारी गोपालगंज के ट्रैफिक डीएसपी को दी। इस दौरान घायल व्यक्ति की जान बचाने वाले ने ट्रैफिक डीएसपी सोमेश मिश्रा को इस पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। इस दौरान ट्रैफिक डीएसपी ने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए।
7: नमस्कार।
8: नमस्कार,
7: ट्रैफिक से बोल रहे हैं ना सर?
8: हाँ बोलिए
7: सर। आपको एक सूचना देना था, अभी आधे घंटे पहले की बात है। ये जो गोपालगंज से थावे की तरफ जो रोड आ रही है, ध्यान पूर्वक सुना जाएगा सर, उसमें जो तुरकहां पुल से थोड़ा सा पहले एक टर्निंग पॉइंट है, उसके ठीक बाईं साइड में एकदम रोड से सटा हुआ गोबर का अलाव वहां किसी ने लगाया है, रखा है। मेरी गाड़ी पीछे थी, सामने एक जो सज्जन थे उनकी गाड़ी उस गोबर के जो गोबर है ना वो पूरा पीछ के ऊपर है लगभग, तो उस पर स्लिप किया, पीछे वाला आदमी फेंका गया तो उसको ज्यादा चोट नहीं आई, मतलब हल्के फुल्के में निपट गया। तो मैं जिला प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि उसको देखा जाए और रोड के किनारे जितने लोग भी इस तरह के जो है ना सामान रखे हुए हैं उसको जो हटाया जाए, क्योंकि बारिश की वजह से जो है ना।
8: आपका शुभ नाम क्या हुआ?
7: मैं शकील अहमद हूँ।
8: शकील जी,
7: सेमरा पूरा, मैं पूर्व वार्ड सदस्य भी हूँ, जनप्रतिनिधि भी हूँ।
8: पूर्व वार्ड परिषद है, आपको थोड़ा सा कानून का ज्ञान होना चाहिए, होगा हमको पूरी उम्मीद है। ये चीज मामला एसडीएम साहब के संज्ञान में लाइए, रोड इंक्रोचमेंट सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी जो आज के डेट में 152 बीएनएसएस है, दैट कम अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ सब डिविजन मजिस्ट्रेट। हम सिर्फ यातायात देखते हैं, यातायात में जो भी रोड की समस्या, एक्सीडेंट हो जाए या जाम हो जाए, कोई वीआईपी मूवमेंट हो जाए या आपकी गाड़ी का कुछ फ्री हो जाए उसको देखेंगे, अतिक्रमण हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है।
7: सर मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि मैं जो सूचना दिया हूँ
8: एकदम दिए हैं इसको,
7: तो अगर सर आप भी आवागमन करते होंगे तो आप वो देख लीजिए, उस वो गोबर जो है ना गीला हो गया है, जिसके वजह से उनकी बाइक जो है ना फिसल गई। अगर वो बाएं तरफ नहीं फिसल गया, अगर दाहिने तरफ फिसले होते तो सर किसी की जान भी जा सकती है।
8: ये आपने सूचना हमें दी, उसके लिए हम आपका बात सुन रहे हैं, थोड़ा फोन रख दिए
7: जी सर।
8: हाँ, लेकिन ये इफेक्टिव होगा अगर आप एसडीएम साहब को सूचना देंगे।
7: ठीक है, तो कल मंडे है, मैं कल रिटर्न रिटर्न कर
8: जरूर,
7: क्योंकि सर ये तो मेरे साथ भी हो सकता था।
8: हाँ जरूर,
7: सर आपके सूचना के लिए बता दूं, वहाँ से जब आप ढाला पार करिएगा ना सर, तुरकहां ढाला,
8: अच्छा तुरकहां,
7: उसके बाद आप 2 किलोमीटर चलिएगा तो एक आदमी बालू गिट्टी का दुकान किया हुआ है, वो मुकेरी टोला जो क्रॉसिंग है उसके ठीक समीप, वो उसका भी जो है ना बालू पीच के ऊपर ही गिरा के बैठा है, वो व्यवसाय कर रहा है।
8: सब सब सब
7: हाँ, मतलब एक कोई जांच टीम होती जो ये 5 किलोमीटर का भौतिक निरीक्षण कर लेती।
8: एसडीओ साहब को आप आवेदन दे दीजिए, जांच करा लेंगे।
7: हाँ मैं कल ही देता हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जनमानस के लिए।
8: जरूर जरूर,
7: ठीक है सर, धन्यवाद। फिर भी सर एक थोड़ा सा आप भी अपने स्तर से थोड़ा सा देखा जाए सर, थैंक यू।
6: इधर बिशंभरपुर के मटिहनिया बांध पर उत्पाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए 2 मोटरसाइकिल से भारी मात्रा में देसी शराब को जब्त किया। इस दौरान एक गाड़ी से आ रहा शराब तस्कर फरार हो गया और दूसरी मोटरसाइकिल से आ रहे एक विधि विरुद्ध बालक को पुलिस ने पकड़ा है, जिस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। दोनों ही मोटरसाइकिल और शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र इंजीनियर निशांत कुमार अपनी सद्भाव यात्रा पर पूरे बिहार के लिए निकल चुके हैं। इसको लेकर गोपालगंज के जदयू पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद पटेल ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। पटेल ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के शिल्पकार पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को विकास के शिखर पर पहुंचाया है। उनके पुत्र निशांत कुमार उनके पद चिन्हों पर चलकर बिहार के चंपारण की पावन धरती से, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्म भूमि रही है, वहां से निशांत कुमार संघर्ष, समर्पण, सेवा और सद्भाव के संकल्प के साथ बिहार के विकास को आगे बढ़ाने के लिए सद्भाव यात्रा पर निकल रहे हैं। उनके साथ बिहार प्रदेश जदयू यूनाइटेड के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष विधायक उमेश सिंह कुशवाहा भी और पार्टी के तमाम गणमान्य नेता भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। सभी को प्रमोद कुमार पटेल ने बधाई और शुभकामनाएं दी। जिले के मॉडल सदर अस्पताल में फिलहाल दो दिनों से हुई बारिश के दौरान भारी जलजमाव देखने को मिला, जिससे मरीजों को काफी परेशानी हुई। हाल ही में करोड़ों रुपए लगाकर जिले का मॉडल सदर अस्पताल बनाया गया है, परंतु यहां हल्की बारिश में ही जलजमाव से लोगों को परेशानी हो रही है। यहां जल निकासी की समस्या अब तक नहीं सुलझाई गई। पहले भी जलजमाव से सदर अस्पताल जूझ रहा था और अभी भी मॉडल सदर अस्पताल बनने के बाद भी यहां परिसर में जलजमाव से मरीजों को परेशानी हो रही है। ठाणे थाना क्षेत्र के नारायणपुर हाई स्कूल के पास ब्रह्म स्थान के समीप जहीर खान पिता सैफुद्दीन खान को गांव के ही कुछ व्यक्तियों द्वारा इंस्टाग्राम के माध्यम से धमकी भरा ऑडियो संदेश भेजे जाने से मना करने पर मारपीट कर घायल कर दिया गया तथा गोली फायरिंग की गई। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस इस मामले में तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक निरीक्षण करने के साथ ही साक्ष्य संकलन के लिए FSL टीम को सूचित किया। घटनास्थल से एक गोली का खोखा बरामद किया गया और मारपीट में घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस मामले में पुलिस ने कांड दर्ज कर लिया है और घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध हथियार की बरामदगी के लिए विशेष टीम का गठन करते हुए लगातार छापेमारी कर रही है। फिलहाल विधि व्यवस्था वहाँ सामान्य है और पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारी इलाके में निगरानी बनाए हुए हैं। और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। चाकू से गोद कर एक महिला की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। भूमि विवाद में एक व्यक्ति को मारी गई गोली, 3 आरोपी गिरफ्तार। मोटरसाइकिल लूट कांड में भी 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। अलग अलग मामलों में हुई कार्रवाई में 25 लोगों को भेजा गया जेल। 5,639 शिक्षकों की उपस्थिति पर शिक्षा विभाग को हुआ संदेह। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
10: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
11: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
12: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
13: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
14: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
13: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
14: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
13: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।
15: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
16: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
15: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
16: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
13: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज।
14: और अब 30 अप्रैल
11: तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
13: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
11: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
13: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
11: सेंट जॉन स्कूल, सासामुसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
5: कहाँ पर?
4: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
5: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
4: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
5: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
8: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
9: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
10: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
9: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
10: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
12: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: आँखियाँ में।
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
1: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
1: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
1: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
6: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
7: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
6: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
7: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
7: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, AC हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम,
6: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल, CBSE पैटर्न पर आधारित एक कम्प्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक, सेशन 2026 से 27 के लिए, प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
7: यहाँ मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विथ लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
6: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और CCTV कैमरा की सुविधा,
7: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा, 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता, हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 8002221969 या 9117018350।
8: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
9: मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे। मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे। हम तुम मिलेंगे तो, हम तुम मिलेंगे तो सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे तो, देखेंगे तो

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034-48652 पे।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
7: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
7: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
8: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
9: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
7: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
7: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-39-51-51 पे।
10: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
11: यूं ही तुम मुझसे बात

0: अरे बाप रे।
1: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
2: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
1: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
3: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
4: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
3: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
4: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
3: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले

0: दिनों फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
0: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399 66999।
4: यूं ही तुम मुझे

0: रेडियो और इनफिल्म के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा और हमारे एन्यूमरेटर्स हो सकता है कि कुछ प्रेजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये 2 फेज में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, चूंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पर ज्यादा फोकस करें ताकि सही से जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पे जो बनने वाली हूँ सही सही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
5: एडमिशन फ्री।
6: कहाँ पर?
5: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
6: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
5: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है।
6: तो देर ना करें, ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज, कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
7: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
8: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुत डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
7: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
3: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
9: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
10: पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू। 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की भी मतगणना जारी। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया। मौसम विभाग ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित उत्तर भारत में आज गरज चमक के साथ वर्षा और ओले पड़ने का अनुमान जताया। अमरीका होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। सबसे पहले डाक मतपत्र की गिनती की जाएगी। शुरुआती रुझान दोपहर तक मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
11: कुछ घंटों में पश्चिम बंगाल की राजनीतिक किस्मत तय होगी। 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतगणना सुबह 8 बजे राज्यभर में कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई। 293 निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम दिन भर आने की उम्मीद है, जबकि फलता निर्वाचन क्षेत्र में इस महीने बाद में पुनः मतदान होगा। राज्य भर की 77 मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। स्ट्रांग रूम और मतगणना हॉल में सीसीटीवी निगरानी और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चुनाव अभियान और रिकॉर्ड मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें आज के फैसले पर है। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
10: तमिलनाडु में मतगणना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए चलते हैं चेन्नई में हमारे संवाददाता सुशील तिवारी के पास। सुशील, मतगणना के बीच राज्य में सुरक्षा के क्या प्रबंध किए गए हैं?
12: देखिए मुकेश, सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है। 3 स्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और रूट को डाइवर्ट किया गया है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि तमिलनाडु जो है वो राजनीतिक रूप से बड़ा सक्रिय जो है प्रदेश है, तो बड़ी संख्या में जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो भी जो बाहरी दायरा है उसके आसपास खड़े नजर आ रहे हैं। उनकी उत्कंठा है, उनकी इच्छा है कि वो जल्दी से जल्दी जान सकें कि उनके राजनीतिक नेता, उनके नेताओं का क्या भविष्य हो रहा है। तो बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचने लगे हैं। हम अभी थोड़ी देर पहले जो है चेन्नई में जो 3, वैसे तो पूरे राज्य में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन चेन्नई में 3 मतगणना केंद्र है, लॉयला कॉलेज, अन्ना यूनिवर्सिटी और क्वीन मैरीज कॉलेज। तो हम क्वीन मैरीज कॉलेज के पास थे, वहां जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम थे। लेकिन ये मरीना बीच के पास है, बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच चुके हैं और लोगों में जबरदस्त उत्कंठा है।
10: जी सुशील, ये भी बताइए कि आज जो मतगणना हो रही है उसमें किन किन प्रमुख उम्मीदवारों की साख दांव पर है?
12: देखिए मुकेश, अगर हम बात करें तो डीएमके का जो सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस है एसपीए, उसके जो नेता है वो एमके स्टालिन, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री भी, निवर्तमान मुख्यमंत्री जिन्हें कहा जाए, वो कोलाथुर सीट जो कि चेन्नई में ही है वहां से लड़ रहे हैं। तो उनके चुनाव परिणाम पर सबकी निगाहें होंगी। जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं ई पलानीसामी, वो इडापड्डी जो है सेलम डिस्ट्रिक्ट में है, सेलम जिले में है, वहां से लड़ रहे हैं। और केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन जो है वो अविनाशी सीट से लड़ रहे हैं जो कि त्रिपुर में है। इसके अलावा अगर अन्य प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो जोसेफ विजय जो है टीवीके पार्टी के, उनकी टीवीके पार्टी का उनका तमिल वेत्र कड़गम जो पार्टी है उनके नेता 2 सीटों से लड़ रहे हैं, पेरम्बूर जो कि चेन्नई डिस्ट्रिक्ट में ही है और त्रिची जिले की त्रिची ईस्ट, त्रिची पूर्व की जो सीट है वहां से वो 2 जगह से लड़ रहे हैं। जो डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है उदयनिधि स्टालिन, वो चेपक सीट से लड़ रहे हैं। और एक अन्य महत्वपूर्ण नाम डॉक्टर तमिल इसाई सुंदर राजन का है, जो कि महिलापुर जो चेन्नई की ही सीट है, ये वर्तमान ये पूर्व में तेलंगाना और पुडुचेरी की राज्यपाल रह चुकी हैं। तो वो भाजपा नेता है, वो इस बार चुनाव लड़ रही है मैलापुर जो चेन्नई की सीट है वहां से। तो ये महत्वपूर्ण लोग हैं जो इस बार चुनाव मैदान में हैं, जिनके नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मुकेश
10: जी, सुशील, आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए 6 केंद्रों पर मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है। केंद्र शासित प्रदेश में 294 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
13: पहले चरण में सभी 6 मतगणना केंद्रों पर 17 विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गिनती की जाएगी। इनमें पुदुचेरी क्षेत्र के 12 निर्वाचन क्षेत्र, कराईकाल के 3 और माहे तथा यानम का 1-1 निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। शेष 13 निर्वाचन क्षेत्रों की गिनती दूसरे चरण में की जाएगी। शुरुआती रुझान सुबह लगभग 9:30 बजे तक आने की उम्मीद है। ईवीएम और वीवीपैट की गिनती के लिए कुल 166 टेबल और डाक मतपत्रों के लिए 35 टेबल स्थापित किए गए हैं। मतगणना केंद्रों में कड़ी सुरक्षा और प्रवेश नियंत्रण के उपाय लागू हैं। चुनाव अधिकारियों द्वारा जारी QR कोड आधारित पहचान पत्रों के सत्यापन के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। मतगणना केंद्रों पर मोबाइल फोन जमा करने की व्यवस्था भी की गई है। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
10: और असम में मतगणना से जुड़ी जानकारी के लिए रुख करते हैं गुवाहाटी में मौजूद हमारे संवाददाता राकेश डोले से। राकेश जी, राज्य में मतगणना के बीच क्या माहौल देखा जा रहा है?
14: जी, असम में विधानसभा चुनाव के मतगणना कुछ समय पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई है। राज्य में इस बार 85.96% मतदान दर्ज किया है, जो पिछले विधानसभा चुनावों में सबसे अधिक है। राज्यभर में 40 मतगणना केंद्रों पर गिनती की जा रही है। अधिकांश जिलों में जिला मुख्यालय पर एक एक केंद्र है, जबकि कोकराझार, तिनसुकिया, जोरहाट में दो दो तथा नौगांव में 3 मतगणना केंद्र है। पूरी प्रक्रिया पर 126 मतगणना प्रेक्षक कड़ी निगरानी रख रहे हैं, जिनकी सहायता के लिए लगभग 6000 मतगणना कर्मी और 2300 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। 126 सदस्य असम विधानसभा के लिए कुल 722 उम्मीदवार मैदान में हैं। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 64 है। जी
10: राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर केरलम में भी कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल में आज 293 सीटों की मतगणना हो रही है।
15: जनादेश 2026।
10: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
15: आज सुबह 8:30 बजे से
10: मतगणना की पल पल की खबर,
15: हर सीट की सटीक जानकारी,
10: संवाददाताओं से ताजा हाल
15: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
10: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
15: जनादेश 2026।
10: पांच राज्यों की 7 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों की मतगणना भी शुरू हो गई है। ये 7 सीट गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे, दक्षिण महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कुरीडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने लिपलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि यह दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग है और दशकों से इस मार्ग से यात्रा जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संदर्भ में नेपाल के विदेश मंत्रालय के सीमा संबंधी दावों के बारे में यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस संबंध में भारत का रुख स्पष्ट है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे दावे न तो न्यायसंगत हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों तथा सबूतों पर आधारित हैं। प्रवक्ता ने कहा कि भारत द्विपक्षीय संबंधों के सभी मुद्दों पर नेपाल के साथ सार्थक बातचीत के लिए तैयार है। होर्मुज में फंसे जहाजों के लिए अमरीका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस परियोजना से सैकड़ों जहाजों और लगभग 20,000 नाविकों को सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ देश प्रभावित हुए हैं और अमरीका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालने में सहयोग करेगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार इसके लिए मिसाइल नाशकों, 100 से अधिक विमानों और 15,000 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि इस प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने वालों के लिए सख्ती से निपटा जाएगा। फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने होर्मुज से जहाजों की आवाजाही लगभग बंद कर रखी है। उधर अमरीका ने भी ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी कर दी है। इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। समझौते के लिए ईरान के प्रस्ताव पर अमरीका सहमत नहीं है। ईरान के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने कहा कि ईरान के प्रस्ताव पर अमरीकी जवाब की समीक्षा की जा रही है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। एक रिपोर्ट।
16: ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो अपने 14 सूत्री प्रस्ताव पर अमरीका की प्रतिक्रिया की समीक्षा कर रहा है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि योजना का उद्देश्य शत्रुता को समाप्त करना है और इसमें परमाणु मुद्दों का कोई जिक्र नहीं है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान परमाणु प्रतिबंधों से संबंधित मांगों को पूरा नहीं करता। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम के बावजूद लड़ाई तेज हो गई है और इसराइली सेना ने हाल के दिनों में हिजबुल्लाह से जुड़े दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया है। इस बीच हिजबुल्लाह भी इसराइली सैनिकों पर रॉकेट और ड्रोन से हमले जारी रखे हुए है। उधर मध्यस्थों के माध्यम से राजनयिक प्रयास भी जारी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमन।
10: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर 3 दिन की उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि संगोष्ठी परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक के प्रदर्शन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण मंच है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। आईपीएल क्रिकेट में कल गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
17: धन्यवाद मुकेश। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, नतीजे आज, निगाहें बंगाल पर। पत्र के अनुसार मतदान केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, देश की राजनीतिक दिशा तय करेंगे तमिलनाडु बंगाल के चुनाव परिणाम। पत्र के अनुसार जनादेश आज, 5 प्रदेशों में दलों की धड़कने तेज। हिन्दुस्तान ने फलता में पुनर्मतदान शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, निर्वाचन आयोग के इस निर्णय की अनुगूंज पूरे देश में पहुंचनी चाहिए कि बाहुबल के सहारे मतदाताओं को डराने और मतदान को बाधित करने का क्या नतीजा हो सकता है। दिल्ली में एसी से लगी आग में 9 लोगों की मौत पर हिन्दुस्तान का शीर्षक है, एसी बना काल, 9 को लील गया। नव भारत टाइम्स के अनुसार बुजुर्ग पेरेंट्स को बचाने अंदर दोबारा गई फिर लौट न सकी। दैनिक जागरण ने आग का सिलसिला शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, गर्मियां बढ़ते ही घरों, कारखानों और अन्य स्थलों पर आग लगने की घटनाओं का सिलसिला तेज होना इसलिए चिंताजनक है क्योंकि अभी तो तापमान और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि आग लगने की ज्यादातर घटनाएं एसी में ब्लास्ट या शॉर्ट सर्किट के कारण हो रही है। राजस्थान पत्रिका ने नया सवेरा शीर्षक से लिखा है, जब आक्रोश बन गया राष्ट्र संकल्प तो आतंक पर फिर हुआ निर्णायक प्रहार। पहली बार तैनात हुई ऑल वुमन कॉम्बैट टीम ने मोर्चे पर दिखाया जोश, दुनिया को बताया अब और नहीं, ऑपरेशन के बाद सामने आई शौर्य गाथाएं। पंजाब केसरी की सुर्खी है, लिपुलेख पर भारत की नेपाल को 2 टूक। पत्र के अनुसार विदेश मंत्रालय ने नेपाल के दावों को खारिज करते हुए एक तरफा और अनुचित बताया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब हर तरह के मौसम में धरती के कोने कोने पर भारत रख सकेगा दृष्टि। दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि कैलिफोर्निया से हुआ लॉन्च। चीन, पाक सहित हर देश की छोटी बड़ी गतिविधि की होगी निगरानी। देशबंधु के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर बोले संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अंतोनियो गुतरश, तमाम तरह की स्वतंत्रता प्रेस की आजादी पर टिकी, इसके बिना न तो मानवाधिकार संभव है न ही शांति, पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करने का आह्वान किया।
10: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, असम, पश्चिम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू। 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों की भी मतगणना जारी। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया। मौसम विभाग ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित उत्तर भारत में आज गरज चमक के साथ वर्षा और ओले पड़ने का अनुमान जताया। अमरीका हॉर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
18: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। काउंटिंग ऑफ वोट्स बिगिन फॉर असेंबली इलेक्शंस इन असम, वेस्ट बंगाल, केरलम, तमिलनाडु एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी। काउंटिंग ऑफ वोट्स ऑल्सो अंडर वे फॉर बाईपोल्स इन 7 असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसीज। India rejects Nepal's objection to Kailash Mansarovar Yatra through Lipulekh Pass, calls it unjustified. IMD forecasts thunderstorms accompanied with hailstorm over North India, including Haryana, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh and Uttarakhand today. United States to launch Project Freedom to guide stranded ships safely out of Strait of Hormuz. And in IPL cricket, Gujarat Titans defeat Punjab Kings by 4 wickets in Ahmedabad last night. And now the news in detail. Counting of votes began for the assembly elections in Assam, West Bengal, Kerala, Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry this morning. Counting began at 8 a.m. with postal ballots taken up first, which will be followed by electronic voting machines or EVMs. Early trends are expected to emerge by noon. The Election Commission has made elaborate arrangements to ensure peaceful and transparent counting. Counting of votes is being conducted for 293 seats in West Bengal, 126 assembly seats in Assam, 140 in Kerala, 234 in Tamil Nadu and 30 seats in Puducherry. Now we go over live to our correspondent Kalyan Laha in Kolkata for the latest update on counting. Kalyan, how is counting progressing in West Bengal?
19: At this moment, the postal ballot is being counted. And after the completion of postal ballot, the EVM counting will start. And the Election Commission has taken all the arrangements to conduct a free, fair and a peaceful counting. And three-layer security arrangement has been established at all the counting centers. And there are 77 counting centers in the state. And one thing I should mention that today 293 assemblies constituencies counting is being held, and Election Commission has ordered repoll in Paltta assembly constituency. On that will be held on 21st May, and the result is on 24th May.
18: Thank you, Kalyan, for that update. We also have with us our correspondent Rakesh Dole from Guwahati for the latest update on counting from the state of Assam. Rakesh, what latest update you have for our listeners on counting in Assam?
14: Yes, in Assam, counting of votes for the general elections to the Legislative Assembly got underway a short while ago under tight multi-layer security arrangements. The state has recorded a high voter turnout of 85.96%, the highest in the last five assembly elections.
20: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी
21: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू
20: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता
22: एडमिशन फ्री एडमिशन फ्री
23: कहाँ पर
22: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज
23: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन स्मार्ट लर्निंग एनवायरमेंट एक्सीलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा
22: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है
23: तो देर ना करें ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक
22: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल पता चवही खास NH 27 गोपालगंज कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569
24: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है
25: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर
26: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक
25: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने कॉलेज रोड गोपालगंज अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952 नियम और शर्तें लागू
27: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज
28: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल
29: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं जैसे गोरखपुर पटना कलकत्ता लखनऊ बनारस चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयां भी मिलती हैं
30: एक सूचना संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज संपर्क सूत्र है 62042434
31: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो
0: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
0: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज।
3: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
2: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
3: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराश आ जाता है।
2: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
3: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम इकडेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
9: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
10: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64498 पे।
11: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

0: हेलो एवरीवन,
1: नमस्ते, मैं हूं सारा अली खान
0: और मैं हूं विकी कौशल।
1: वी होप यू लव दिस म्यूजिक वीडियो।
0: डू लाइक एंड शेयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू सारेगामा म्यूजिक यूट्यूब चैनल।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
4: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।

चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गेठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
5: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
5: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
5: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
7: कॉल करे 87894 18744।
8: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
9: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
8: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
9: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
8: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
10: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
11: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
10: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
11: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
10: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
11: जानकारी है तो कॉल करें 6052 62112 पे।
12: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
11: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
10: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
13: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
10: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
14: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
15: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
14: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
15: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395651 या 97097506575।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
7: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528474088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी, दोपहर तक शुरुआती रुझान मिलने का अनुमान। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया। और मौसम विभाग ने आज अररिया, मधुबनी और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की। किशनगंज में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। राज्य निर्वाचन आयोग आज पंचायत चुनाव को लेकर प्रपत्र एक का प्रारूप प्रकाशित करेगा। आयोग के अनुसार आज से 18 मई तक दावा आपत्ति स्वीकार किए जाएंगे। आपत्तियों का निष्पादन 22 मई तक किया जाएगा, जबकि अपील वादों के निष्पादन के लिए 11 मई से 29 मई की तिथि निर्धारित की गई है। प्रपत्र एक का अंतिम प्रकाशन 5 जून को होगा, जबकि जिला गजट में इसके आंकड़े 9 जून को प्रकाशित किए जाएंगे। विधान परिषद के विधानसभा कोटे की एक सीट के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन है। इस सीट पर एकमात्र प्रत्याशी भाजपा के सूर्य कुमार शर्मा उर्फ अरविंद शर्मा ने नामांकन किया है। इस आधार पर उनका निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। आज निर्वाचन की औपचारिक घोषणा की जाएगी। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री मंगल पांडे के सीवान से विधायक चुने जाने के बाद यह सीट रिक्त हुई थी।

0: 234 सीटों के लिए 23 अप्रैल को और पश्चिम बंगाल की 293 सीटों के लिए दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले गए थे। इधर पांच राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना भी चल रही है। ये 7 सीटें हैं गुजरात की उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरीडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर। प्रदेश में पिछले 2 वर्षों में मिट्टी के 8 लाख नमूनों की जांच हुई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5 लाख और वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3 लाख नमूनों की जांच की गई। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं में 12 पैरामीटर पर नमूनों की जांच की गई और मिट्टी की गुणवत्ता के संबंध में किसानों को जानकारी दी गई। साथ ही व्हाट्सएप के माध्यम से डिजिटल मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। बिहार राजस्व सेवा के 47 अधिकारियों का निलंबन रद्द कर दिया गया है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। विभाग ने बताया कि राजस्व सेवा के पदाधिकारियों ने 30 अप्रैल को मुख्य सचिव के साथ हुई वार्ता में हड़ताल वापस लेने की घोषणा की थी। इसके बाद सरकार ने हड़ताल के दौरान निलंबित अधिकारियों का निलंबन वापस लेने का आश्वासन दिया था। हड़ताल वापसी के बाद राजस्व अधिकारी और अंचलाधिकारी आज से काम पर लौट रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि आधार कार्ड का स्वरूप इस साल के अंत तक बदलकर केवल एक फोटो और एक QR कोड वाला हो जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि यह दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुराना मार्ग है और इस मार्ग से दशकों से यात्रा जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संदर्भ में कहा कि इसे लेकर भारत का रुख हमेशा से स्पष्ट रहा है और यह कोई नई बात नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे दावे ना तो न्यायसंगत हैं और ना ही ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित हैं। प्रवक्ता ने कहा कि भारत द्विपक्षीय संबंधों के सभी मुद्दों पर नेपाल के साथ सार्थक बातचीत के लिए तत्पर है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम आज बोधगया पहुंच रहे हैं। जानकारी के अनुसार श्री लाम महाबोधि मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद वे वियतनाम मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति लाम के आगमन को लेकर बोधगया और गयाजी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया कि वियतनामी राष्ट्रपति के परिभ्रमण कार्यक्रम को देखते हुए यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। आज पूर्वाहन 10 बजे से अपराहन 3 बजे तक गया हवाई अड्डा से महाबोधि मंदिर मार्ग पर सामान्य वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। प्रदेश की सभी पंचायतों में इस महीने की 19 तारीख से प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को भेजे निर्देश में कहा है कि शिविरों में प्रखंड, अंचल और थानों से जुड़ी शिकायतों को ऑन स्पॉट निपटारा किया जाएगा। इसका आयोजन पंचायत सरकार भवन या इसके आसपास किसी सार्वजनिक स्थान पर होगा। विकसित भारत समृद्ध बिहार अभियान के तहत सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसका मकसद आम नागरिकों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। आकाशवाणी समाचार के व्हाट्सएप चैनल ने 1 लाख फॉलोअर्स का आंकड़ा हासिल कर महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्रतिदिन समाचार अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज और अलर्ट उपलब्ध कराए जाते हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: छोट शहर मगर सपना ग्लोबल, आप इंजीनियरिंग के टॉप लेवल पढ़ाई बिहार में ही संभव छी।
2: हर जिला में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, 38 प्रतिष्ठित संस्थान, विश्व स्तरीय शिक्षा अपने राज्य में,
1: हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम, अनुभवी फैकल्टी आ मजबूत प्लेसमेंट सपोर्ट।
2: नामांकन JEE मेन 2026 या BCECE मेरिट के आधार पर, अंतिम तिथि 5 मई 2026।
1: जखन मौका अपने राज्य में हो तो सफलता दूर नहीं हो छी। उत्कृष्ट प्लेसमेंट अहाँ के इंतजार में छी।
2: बेसी जानकारी खातिर विजिट करू BCECE। बोर्ड डॉट बी

0: bihar.gov.in विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के अधिकांश भागों में आंधी बारिश की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज अररिया, मधुबनी और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। वहीं किशनगंज में भारी बारिश का अलर्ट है।
2: दिनांक 4 मई राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, मधुबनी एवं सुपौल जिले में ओलावृष्टि होने की संभावना है और किशनगंज जिले में भारी वर्षा होने की संभावना है।
1: भागलपुर और नौगछिया को जोड़ने वाले विक्रमशिला सेतु के 4 और 5 नंबर पिलर के बीच का स्लैब गिर जाने के कारण आवागमन बाधित हो गया है। इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। भागलपुर के SSP प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि ट्रैफिक को मुंगेर और सुल्तानगंज के रास्ते डायवर्ट किया गया है। इधर पुल निर्माण निगम के पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पटना स्थित JP गंगा पथ पर सड़क मरम्मत कार्य के कारण आज और कल यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। प्रशासन के अनुसार सड़क पर बिटुमिनस कंक्रीट कार्य को लेकर विशेष ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। इसके चलते दो चरणों में मुख्य कैरेज वे और कनेक्टिंग ब्रिज पर परिचालन प्रभावित रहेगा। यह व्यवस्था दोनों दिन दोपहर 1 से 3 बजे तक और रात्रि 10 से सुबह 4 बजे तक प्रभावी रहेगी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जून के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरात के संगठन से बाहर निकलने के बाद हुई अपनी पहली वर्चुअल बैठक में ओपेक प्लस के 7 देशों ने अगले महीने तेल उत्पादन लक्ष्य को लगभग 188,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने पर सहमति जताई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से संयुक्त अरब अमीरात के ओपेक प्लस समूह से अलग होने के ऐलान के बाद आपूर्ति संतुलन बनाने के लिए की गई है। प्रदेश आज बिहार प्रांत के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। उनकी जयंती पर पटना के श्रीकृष्ण स्मारक भवन परिसर में राजकीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और अन्य गणमान्य लोग उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। नालंदा पुलिस ने कल स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG शुरू होने से पहले जिले के पावापुरी से सॉल्वर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से मिले एडमिट कार्ड के आधार पर 2 अभ्यर्थियों को भी हिरासत में लिया गया है। इस बीच NTA ने इस घटना की पुष्टि करते हुए जिला प्रशासन को मामले की विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। रोहतास जिले के दिनारा थाना क्षेत्र अंतर्गत आरा मोहनिया पथ पर बिलवैया मठिया गांव के पास आज सुबह एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तिलक समारोह से लौटी बस से उतर रहे लोगों के को तेज रफ्तार डाक पार्सल वाहन की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है। घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं बेगूसराय जिले के सदर प्रखंड के बंदुवार मोहनपुर 8वां ढाला के पास सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 1 युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मुजफ्फरपुर जिले के रतनपुर गांव के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस दुर्घटना पर संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। अररिया जिले के मदनपुर पश्चिम गांव में पोखर में डूब जाने से एक 4 साल की बच्ची की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि खेलने के दौरान पैर फिसलने के कारण बच्ची पोखर में गिर गई। मुंगेर के पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने दो पुलिसकर्मियों को भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया है। कासिम बाजार थाना में पदस्थापित एएसआई अनिकेत कुमार झा और मुफस्सिल थाना में तैनात कर्मी अभिषेक कुमार के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। सीतामढ़ी शहर के 20 से होकर बहने वाली लखनदेई नदी की सफाई के लिए विशेष श्रमदान अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी ऋचि पांडे समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों, नगर निगम कर्मियों और स्थानीय लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सारण की टीम ने 12वीं जूनियर बिहार राज्य बास्केटबॉल प्रतियोगिता के बालक वर्ग का खिताब जीत लिया है। गया में आयोजित फाइनल मुकाबले में सारण ने पटना को पराजित कर दिया। वहीं बालिका वर्ग का खिताब गया ने वैशाली को पराजित कर अपने नाम कर लिया। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित पुरुष T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में कटिहार, सहरसा और बेगूसराय की टीमों ने जीत दर्ज की है। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं कल खेले गए एक मैच में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के दिल्ली दौरे की खबर पर लिखा है, बिहार मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आज। दैनिक भास्कर ने दिल्ली में आगलगी की घटना पर लिखा है, एसी में ब्लास्ट से बिल्डिंग में आग, 9 की मौत। प्रभात खबर लिखता है, 2,45,000 फर्जी तरीके से ले रहे पीएम किसान योजना का लाभ, भुगतान रुका। राष्ट्रीय सागर पटना मेट्रो निर्माण की प्रगति पर लिखता है, मेट्रो टनल के 20 मीटर दायरे में निर्माण और बोरिंग पर रोक। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव को लेकर आज मतदाता सूची प्रारूप प्रकाशित करेगा। 18 मई तक स्वीकार किए जाएंगे दावा आपत्ति। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी। दोपहर तक शुरुआती रुझान मिलने का अनुमान। भारत ने लिपुलेक दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया। और मौसम विभाग ने आज अररिया, मधुबनी और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की। किशनगंज में भारी बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
4: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
7: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403, 6200042403। सुनिए,
8: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
7: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
8: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
7: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
9: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, एसी हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम,
10: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। CBSE पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक। सेशन 2026 से 2027 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
9: यहां मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
10: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और सीसीटीवी कैमरा की सुविधा।
9: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता: हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
10: संपर्क करें 800-222-1969 या 911-701-8350।
11: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
12: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
11: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
12: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
11: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
12: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
13: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
11: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
14: Now pick it up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी रेडियो दोस्त आरजे सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस के कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: गुड मॉर्निंग मैम।
2: जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: थैंक यू मैम, कैसी हैं?
2: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ।
2: तो क्या हो रहा था अभी?
1: बस काम हो रहा है। गाना सुनना था।
2: जी बिल्कुल, बता दीजिए गाने का नाम।
1: अदनान सामी का गाना है, तेरा चेहरा जब नजर आए।
2: और सुनवाना भी है?
1: हाँ, वाइफ को डेडिकेट है ये गीत।
2: अच्छा, अच्छा।
1: और बाकी सारे लिसनर्स को।
2: ओके, चलिए तो प्ले करे गाना।
1: नाम नहीं पूछिएगा?
2: अनिल बात कर रहे हैं छोटपुर से।
1: हाँ अनिल बोल रहे हैं।
2: जी
1: ठीक है, तो प्ले कर दीजिएगा।
2: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सोने कॉल किया।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 94.4 FM में।
1: हाँ मैडम ठीक है, गाना सुनना है।
0: जी गाना सुनाएंगे, आप अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से।
1: मेरा नाम है मनोज कुमार
0: जी। कैसे हैं मनोज जी?
1: ठीक है
0: जी। और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: तो मुंगेर से बात कर रहे हैं, हवेली खड़गपुर।
0: अच्छा,
1: राम गोबड्डा।
0: तो कौन सा गाना सुनना है आज आपको?
1: गाना सुना दीजिए आप शारदा सिन्हा का, से विवाह गीत, अभी विवाह का टाइम चल रहा है ना, शारदा सिन्हा का विवाह।
0: जी जी, और सुनवाना भी है?
1: सुनवाना है सरिता देवी, बरखा कुमारी और आपको।
0: जी चलिए, तो प्ले कर रहे हैं गाना।
1: ठीक
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय।

0: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
1: कहाँ पर?
0: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
1: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
0: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
1: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज, कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
2: रामू हरिया, कल तैयार रहिए लो, पराली जलाए चले के बा।
3: ठीक बा भैया।
4: ए भैया, एगो सूचना सुन ला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दियल जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
5: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
4: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला, अब पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। 1 टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियत जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
5: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बताओ तू हमरा के एक बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
4: एक बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। इसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसा पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
5: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाई और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी दे के।
4: याद रखी, ठूठ कूड़ा नहा, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत, माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
0: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
10: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
10: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज।
1: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
6: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
6: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9932-1308।
11: ब्रेक के
3: बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
12: मैं अहमद अली सारे आवाज नंबर एक है।
11: जी का हाल चाल बा अहमद जी?
12: ठीक बा जी, अपन बताइए बारिश में कैसा लागता?
11: अरे का बताइए कैसा लागता, जैसे अंदर पाँव धैनी तले बारिश तेज हो गयी, खुला खातिर वही बीच में आईनी है।
12: भाग मनाई की पहुँच गयी नहीं है, न तो आइयो ना कोई दिन
11: न हमके तो ऐसा ही लग रहा है की हम आज नहीं जा पाए क्योंकि निकले के टाइम में ही बारिश आ गया।
12: हमारा नंबर तो दू बेर लागल लेकिन उठनी है ना।
11: अरे जैसे आके चालू कर ले रही अभी बीच में आई रही, फोनवा में चार्जो ना रहे, लाइट ना रहे तो चार्जो ना भई रहे।
12: हम कहनी हमरा पर इतना जुलुम का है होता पूछे मम्मी से।
11: ना ना जुलुम नहीं था, होते चार्ज ना रहे और बात करती तो तुरंत मोबाइल
12: भाई की जाये। अब के मोबाइल से फिर लगनी हम अपना मोबाइल से लगावत लगावत है
11: ना
12: लागल 126 बार डायल कैले बनी।
11: अच्छा अच्छा चले लागल बता दी।
12: आज गाना तो सुनवा दी नजायज फिल्म से बरसात के मौसम में तो नहाई के आलम में। सुनाला के बाद सबसे पहले कमरान रशीद के, राघव जी के, दिलीप भाई के और जे भी रेडियो रिमझिम जहाँ से भी सुना था सब करा के। आज कहिया बाजी गनवा? गनवा कब बाजी? आज की का?
11: आज बाजी, आज शाम के 5 बजे
12: के बीच में
11: आई। ठीक
12: बा, चलिए शुक्रिया
11: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
12: जुम्मा मुबारक सब करा के।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
3: भरोसे वाले से लेंगे,
2: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
3: और कीमत भी।
2: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
4: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
6: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करे खरीदारी।
6: आज ही आए SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
8: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
6: कॉल करें 85070-32042 पे।
9: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडो पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
10: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुत डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
9: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
6: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
11: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज।
12: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
11: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
12: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
11: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
12: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल 9939721308।
11: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
12: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
11: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
12: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
11: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
13: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4।
2: हम किस्मत बोल रही है चंद्रा से।
1: जी का हाल चल रहा है दादाजी?
2: मैं ठीक बाबू। ठीक बनी सर, लगे ठीक बनू?
1: जी जी बिल्कुल बढ़िया बनी।
2: अच्छा बारिश हो रहा बा?
1: जी काफी तेज बारिश हो रहा बा। तो खाना पीना हो गए बा?
2: हाँ खाना पीना हो गए बा, जुम्मा हो रहा वाला देखो बारिश हो रहा।
1: तो बता दी कौन गाना सुने के बा?
2: कौन सुनी ले?
1: अच्छा हाँ कव्वाली तो सुने नहीं, तो बता दे कव्वाली के नाम।
2: अपना मन से बोलिए बजा दिए पूरा।
1: अच्छा ठीक बा,
2: ठीक बा।
1: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें कॉल करने।
3: न सुकून मिलता है बुतखाने में, चैन है तो

0: हाँ जी, मैं लाल बाबू सिंह नवादा सहार भोजपुर से बात कर रहा हूँ
1: जी। क्या हाल चाल है लाल बाबू?
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे।
1: जी बिल्कुल बढ़िया है
0: जी। हम गाना सुनना चाहते हैं, राना जी माफ करना
1: जी, और सुनाना भी है
0: जी। सभी रेडियो रिंजिन के श्रोता को सुनाना चाहता हूँ
1: जी जी। और क्या करते हैं आप? सो मैं पहली बार कॉल किए हैं
0: जी। मैं एक्सेलेटर मशीन चलाता हूँ, पोकलेन किसी भाषा में बोले तो पोकलेन चलाता हूँ। हैदराबाद में आंध्र प्रदेश में हूँ।
1: अच्छा अच्छा
0: जी। यहीं से रेगुलर को सुनते रहता हूँ।
1: मतलब हेलो माय चॉइस में कॉल आपका पहली बार है
0: जी? कॉल पहले भी किए हैं लेकिन एक दो साल पहले किए।
1: अच्छा,
0: अभी तक नहीं किया था कुछ दिन।
1: चलिए तो प्ले करें गाना आपकी।
0: जी जी जी। ओके धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल किया।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्रपतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में।

0: नेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
1: यहाँ उपलब्ध है एक साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, नेबोश और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स।
0: और सबसे खास बात, 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
0: पता, छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड, HP पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज।
2: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
3: नमस्कार।
4: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन 90.4 FM में।
3: कोई बहुत बहुत स्वागत है।
4: लाल बहादुर बात कर रहे हैं?
3: हाँ जी।
4: कैसे हैं?
3: ठीक है मैम भाई, इधर तो बारिश हो रहा है।
4: अरे पूछिए मत, कितना बारिश हो रहा है इधर।
3: आपका तरफ हो रहा है उधर?
4: बहुत तेज।
3: मौसम कुछ रोके, कुछ इधर उधर हो रहा है, चारों तरफ हो रहा है कि नहीं? 18 जून का ऐसे तो मानसून आता है नियम के अनुसार। पहले ही बारिश दशक दे चुके हैं, वर्षा हो रही है, इसके ख्याल में आपका क्या विचार है, क्या सावधानियाँ बरतना चाहिए? बारिश वाला गाने को सुना दीजिए।
4: बारिश वाला?
3: हेलो
4: जी जी।
3: बरसात के मौसम में तेलंगा सुनाई के वाले में। हेलो हमारे जितने भी स्वच्छता अभियान से जुड़े हैं ग्रामीण से और शहरी निगम निकाय और हमारे भारत वर्ष में आपको
4: प्ले कर रहे गाना जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोने कॉल किया।

0: नमस्ते
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग में। बदल सुनो चार एफ एम में।
0: क्या क्या हाल चाल? मैं लाल भाई बोल रहा था।
1: जी बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ।
1: तो क्या हो रहा था?
0: पूरा अरे बारिश में बैठे हैं।
1: तो गाना कौन सा सुनना आज आपको?
0: गाना है सवेरे संयोजन बजरिया, भक्ति गाना है
1: जी। और सुनवाना भी है?
0: बजरिया है, रूबी है, कुन्मा है और रजेश संजय है।
1: चलिए तो प्ले करे गाना आपकी।
0: ठीक है, सोनी बोल रहे हैं क्या?
1: जी जी
0: नमस्ते
1: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल किया।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
7: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434-03 62042434-03।
8: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
9: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
8: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
9: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
8: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
2: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11001।
4: बात, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टूंजन में,
10: सुनी जी पहचाना क्या?
11: जी गोपाल रॉय।
10: फोन से तो आपसे बहुत दिन हो गया, बात नहीं हो रहा है।
11: जी जी, कॉल पे बात नहीं हो रही है। शो में आते हैं आप?
10: हाँ बोलिए।
11: बोले शो में आते हैं, लाइव शो में।
10: वही तो, तो वो प्रोग्राम तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। हाँ, घर में सभी सुनते हैं। अच्छा, आप कैसे हैं? बोलिए।
11: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे
10: हैं? अच्छे। तो अभी तो मैं दुकान पे हूँ, दुकान पे गाना सुन रहे हैं और फोन में, इसलिए फोन कर रहे हैं। आपका फोन ये लाइन कभी कभी बंद रहता है क्या? बोलिए तो।
11: ये 3 सप्ताह में खुलता है 11 बजे से, बाकी दिन बंद रहता है
10: ना। अगला एक हफ्ते के आगे ना, वही हफ्ते में एक दिन बंद ही था।
11: जैसे सोमवार को खुलता है 11 बजे से और 12:30 बजे तक चालू रहता है, फिर बंद हो जाता है ये फोन।
10: अच्छा अच्छा अच्छा
11: जी। और फिर उसके बाद खुलेगा बुधवार को।
10: अच्छा अच्छा अच्छा।
11: फिर उस दिन 1.5 घंटा चालू रहेगा, 11 से 12:30, फिर बंद रहेगा, आखिर शुक्रवार को खुलेगा 11 से 12:30।
10: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा,
11: टाइमिंग अकॉर्डिंग का वो अपना टाइम में ही खुलेगा, बाकी टाइम बंद रहता है।
10: अच्छा अच्छा, आपका प्रोग्राम तो पॉपुलर हो रहा है, बहुत अच्छा लगता है, सभी बोलते हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है आपका।
11: और भी कोई सुनता है क्या वहाँ?
10: हाँ, मेरा घर पे सुनते हैं, मेरा दुकान पे आसपास में कोई हुआ है ना, वो भी लोग सुनते हैं।
11: अच्छा,
10: तो बोल रहे की आजकल तो किशोर कुमार का गाना बजा दीजिएगा।
11: जी बता दीजिए, किशोर कुमार का कौन सा गाना सुनिएगा?
10: राजपूत मूवी का है ना, मेरे संगे संगे आए तेरी, वो गाना तो है।
11: जी जी,
10: बजा दीजिएगा
11: और डेडिकेट भी करिएगा।
10: हाँ, आपको आपको रिंगजिंग परिवार के सभी लिसनर्स को डेडिकेट करते हूँ, सभी सुन रहे
11: हैं।
10: अच्छा अच्छा, ये गाना कब सुनेंगे?
11: आज शाम को आज या कल में 5 से 7 बजे के बीच में कभी भी आ जाएगी, क्योंकि आज रिकॉर्डिंग हो रही है, आधा आज चलेगा और आधा कल चलेगा।
10: ओ अच्छा अच्छा अच्छा,
11: तो अगर आज आपका गाना 5 से 7 के बीच में शाम को नहीं बजा तो इसका मतलब है कल पक्का है कि बजेगा।
10: ओ अच्छा अच्छा, ठीक है। गाना तो रेडियो में गाना सुनने में मजा ही अलग होता है ना।
11: और इसका रिपीट चलता है 9 से 11 के बीच में।
10: क्या बोले?
11: जैसे शाम को 5 से 7 के बीच में अगर आप नहीं सुन पाते हैं,
10: अच्छा,
11: तो नेक्स्ट डे आप 9 से 11 बजे के बीच में सुबह सुन सकते हैं।
10: ओ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा,
11: रिपीट चलता है।
10: अच्छा अच्छा, ठीक है सर जी, ठीक है। आपका पढ़ाई चल रहा है क्या?
11: जी जी, अभी तो चल रही है।
10: अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके,
11: बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
5: रामू हरिया, कल तैयार रही लो पराली जलाए चले के बा?
6: ठीक बा भैया।
7: ए भैया, एगो सूचना सुन ला हा। कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दियल जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
5: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता?
7: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। 1 टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
5: अरे हमरा तो जानकारी ना रहल कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एक बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता?
7: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
5: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराए जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएम जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कर जानकारी दे के।
7: याद रखी, ठूठ कूड़ा ना, खेती के गहना नहा, एकरा के जराई मत माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
8: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
9: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
8: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
10: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
11: Now pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
11: Pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीत 90.4 एफएम में।
1: तो मैडम जी
2: नमस्ते, तो कैसी हैं नेहा जी, बताइए।
1: अच्छा है, आप बताएं कैसे है, नाश्ता हो गया?
2: जी हाँ हो गया है। आपका हुआ?
1: हाँ हाँ हो गया।
2: तो अभी क्या हो रहा था?
1: अभी तो आपके पास फोन लगाया है तो कुछ बिजी बता रहा है तब लग गया।
2: तो आज गाना कौन सा सुनना है आपको?
1: गाना सुनना है लैला ने कहा मरी मेरा गाना ही।
2: और सुनवाना भी है
1: जी आपको? आज इतना रेडियो रिमझिम आर्जे है, दोस्त सब सुनता है सभी के साथ।
2: चलिए तो प्ले करेगा ना आपके?
1: जी मैडम जी नमस्ते।
2: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोने कॉल की।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9520374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
3: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
4: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
5: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
6: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
5: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
6: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
7: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
6: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
7: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
6: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
7: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
8: बात, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: प्रणाम मैडम।
10: प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम नगर में।
9: जी मैडम
10: जी, नाम बता दी आपको।
9: सुनने के बाद महेश शर्मा।
10: जी जी, तो कौन गाना सुने के बता दी।
9: गाना सुनने के बाद दुपट्टा मौसी के, मौसी वाला गाना ना निकल हुआ।
10: कौन गाना?
9: दुपट्टा मौसी के निकल हुआ गाना ना।
10: दुपट्टा मौसी के हमके ना पता बा, गाना बढ़िया बा, सुन ले बने।
9: सुन ले बने ललका दुपट्टा मौसी के।
10: अच्छा, और सुनवाए के भी बा।
9: जी जी, गाना सुनने।
10: चलिए ठीक बा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कॉल करूंगी।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो चार एफ एम में।
1: नमस्ते मैडम
0: जी, कैसे हैं?
1: ठीक है, अपना सुनाइए।
0: जी मैं भी बढ़िया हूँ, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: संजय शाह, फुल्ली डुमर बिहार से बोल रहे हैं, बांका जिला।
0: जी क्या हाल चल रहे हैं?
1: ठीक है।
0: तो क्या हो रहा था?
1: गाना सुनना है।
0: जी बिल्कुल,
1: साड़ी का मोती है घड़ी के।
0: जी बिल्कुल सुनाएंगे गाना, नाम बता दीजिए गाने का।
1: संजय, साड़ी का मोती है घड़ी के, भोजपुरी सॉन्ग है।
0: जी जी, और सुनवाना भी है?
1: हाँ आपको सुनवाना है, और जाके जो है जितना श्रोता गण है सबको सुनाना है।
0: चलिए तो प्ले करें गाना आपकी।
1: प्ले कीजिए। ठीक
0: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल किए।

0: तो दोस्तों, आप लोग अभी कार्यक्रम हेलो माय चॉइस को मेरे साथ यानी आरजे सोनी के साथ सुन रहे थे। अब समय हो चुका है इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो मुझे दीजिए अब जाने की इजाजत और ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो रिंजन 90.4 FM। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, नमस्कार।
1: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
2: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
2: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
5: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
6: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
7: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
8: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
7: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
9: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
7: कॉल करें 85070-32042 पे।
10: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
11: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
10: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
7: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
12: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आंख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
1: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतानी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा। आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाई।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
3: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
5: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
5: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
5: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
6: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
7: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91 626 64 498 पे।

0: कब भौजी? आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि सीधे हमरा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97746164।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क 99393965930।
6: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
7: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
8: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
0: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
9: रामू हरिया, कल तैयार रहिए लो, पराली जलाए चले के बा।
10: ठीक बा भैया।
11: ए भैया, एगो सूचना सुन ला हा, कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
9: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता?
11: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला, अब पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। 1 टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
9: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बताओ तू हमरा के एक बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता?
11: एक बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली, ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसा पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
9: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाई और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी दे के।
11: याद रखी, ठूठ कूड़ा नहा, खेती के गहना, एकरा के जराई मत, माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू सो एसएमएस फरमाइश के साथ समय 9:24 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है एक छोटा सा, जिसमें अपना नाम और गांव का नाम और गाने का नाम बताना है और फिर हम कुछ ही समय में आपकी फरमाइश प्ले करेंगे। यदि आप ऐसा चाहते हैं कि हम अपने पसंद के गाने सुने ओल्ड इज गोल्ड या 90s के, तो बिल्कुल इस कार्यक्रम में फरमा सकते हैं। हाँ, एक और बात कि आप सप्ताह में एक ही बार फरमा सकते हैं, क्योंकि बहुत कम समय का यह कार्यक्रम है और कुछ मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए, तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और पहला मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि नमस्ते सोनू सर जी, हम दिलीप कुमार ठाकुर मिर्जापुर टू मोहाली पंजाब से, और आज मेरा भी फरमाइश सॉन्ग है ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं। सिंगर कुमार सानू की आवाज़ में, तो बिल्कुल आपके फरमाइश के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे।

कमल के सॉन्ग रेडियो रेम छीम 90.4 FM पे सुन रहे हैं हम सभी कुमार शानू की आवाज में, और ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं। आगे मैसेज कई पहुंचे हुए और आगे मैसेज इनकी तरफ से पहुंचा हुआ है। लिखा गया है कि थैंक यू और आपको धन्यवाद है रेडियो रेम छीम सुनने के लिए, और आप भी अभी बने रहे हमारे साथ, ऐसा ना हो कि गाने सुनने के बाद से आप दूर हो जाएं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे गाने की फरमाइश कही है, आगे बढ़ेंगे। आगे गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है प्रीति रैदास विलेज लकड़ी दरगाह से करती हैं, और गाने का बोल देती हैं, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता मूवी से, पा लिया है प्यार तेरा अब नहीं खोना, ओ मेरे सोना तुम मेरे होना। तो बिल्कुल आपके गाने हम प्ले करेंगे। और आगे मैसेज कुछ पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि राधे राधे सोनू सर, मैं गोलू जयसवाल गुप्ला मठ से, और मुझे सॉन्ग सुनना है। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सर मैं सन्नीराज पटेल हरिहरपुर से। तो बिल्कुल आपके कई मैसेज हमारे पास पहुंची है और आज आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि क्या चाहूँ रब से तुम्हें पाने के बाद, क्या चाहूँ रब से तुम्हें पाने के बाद, किसका करूँ इंतजार तेरे आने के बाद, क्यों मोहब्बत में जान लुटा देते हैं लोग, मैंने भी यह जाना इश्क करने के बाद। सुनो भाई नमस्कार, और हम भी जुड़ गए हैं दिलीप राम दिल्ली से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में दिलीप जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हमको भी गाना सुनना है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश तो हम इस सप्ताह पूरी कर दिए हैं, और आपकी फरमाइश अब पूरी नहीं हो पाएगी, अगले सप्ताह का इंतज़ार करें और थोड़े दूसरों को भी मौका दें। आगे बढ़ेंगे और इस मैसेज को करती हैं निशा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ, लिखा गया है कि नाइस सॉन्ग ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं। अनिल जी छोटपुर से मैसेज करते हैं, बिल्कुल आगे मैसेज है, और मैसेज को रोकते हैं, गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश रेडियो रेम छीम 90.4 FM पे।

0: बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
1: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
0: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
1: यहाँ उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, नेबोश और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
0: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
0: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बंजारी रोड HP पेट्रोल पंप के सामने गोपालगंज।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
3: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
1: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
2: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
1: जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-53
2: और 90-97-61-60-02।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
0: भारत के 24 राज्यों में 160 से अधिक शहरों में 280 से ज्यादा स्कूल्स के साथ एजुकेशन में एक ट्रस्टेड नेम बिरला।
1: अब वही लेगेसी, वही एक्सेलेंस आ गया है आपके शहर गोपालगंज में।
0: इंट्रोड्यूसिंग बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल, एडमिशन्स आर नाउ ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 7।
1: और खास बात, प्ले ग्रुप के लिए लिमिटेड पीरियड फ्री एडमिशन।
0: मॉडर्न एजुकेशन विद AC क्लासरूम्स, डिजिटल लर्निंग, कंप्यूटर एंड साइंस लैब्स, लाइब्रेरी एंड सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी।
1: बिकॉज लर्निंग इज बियॉन्ड क्लासरूम्स, म्यूजिक, डांस, योगा एंड जूडो क्लासेस फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऑल टीचर्स आर BEd qualified and follow CBSE guidelines, ensuring quality education.
0: Visit today, Yadopur Road, Sareya Ward number 1, Shambhu Path, Saraswati Talkies ke paas, Gopalganj.
1: Call now 775-994-9440 or 775-994-9441.
4: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल।
5: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
4: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
6: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
7: Excuse me, boss. You have a text message.
8: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमसीएम 90.4 एफएम पे। समय जो है 9:46 हो रहे हैं हमारे स्टूडियो घड़ी में और आगे कई मैसेज पहुंचा हुआ है। आगे मैसेज में लिखा गया है कि थैंक यू सो मच सर जी सॉन्ग प्ले करने के लिए और गाने में साथ देने के लिए। आपको धन्यवाद है रेडियो एमसीएम सुनने के लिए और गाने की फरमाइश करने के लिए ऐसी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सुपर सॉन्ग में सनी राज पटेल और इनकी तरफ से भी गाने का फरमाइश पहुंचा हुआ है और गाने का बोल दिया गया है ममता की अनमोल खजाना कबो न दिल से तेज अब धड़केला हरदम बेटा खातिर माई के करे जा। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि कुछ दूर हमारे साथ चलो हम दिल की कहानी कह देंगे, कुछ दूर हमारे साथ चलो हम दिल की कहानी कह देंगे, समझे ना जिसे तुम आँखों से वो बात जुबानी कह देंगे। सुनो भाई नमस्कार, सुना तुम्हारे होना सुपर सॉन्ग। और मैसेज करते हैं दिलीप जी और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है मेरा गाना कब बजेगा सर जी। बिल्कुल आपके गाने बजाएंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है लिखा गया है कि क्या हाय अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आप सभी दोस्तों को, मैं रहमत अली फ्रॉम जगमलवा सॉन्ग। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करेंगे और बने रहे हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं, अब गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश टेडोरियम छिम 90.4 एफएम पे।

रेडियो एमसी 98.4 एफएम पे इस प्यारी से सॉन्ग को सुन दे आप सब और सो चल रहा है एसएमएस फरमाइश का और खिसारी जी की आवाज़ में सुपर सॉन्ग। आगे मैसेज कई पहुंचे हुए हैं और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि थैंक यू सर सॉन्ग प्ले करने के लिए, आपको धन्यवाद है रेडियो एमसीएम सुनने के लिए और इसे गाने के फरमाइश करने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है सुपर डुपर सॉन्ग, धन्यवाद जो भाई फरमाइश किए हैं उनको अंडे, धन्यवाद सुनो सर जी। चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो एमसीएम सुनने के लिए, इसे बने रहे हमारे साथ। और इस मैसेज को करते हैं हमारे श्रोतागढ़, इनका नाम है दिलीप कुमार ठाकुर, मिर्जापुर मोहाली से, फिलहाल पंजाब से सुनते हैं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय हेलो सर नमस्ते, आप कैसे हैं? अनुजा कुमारी अमेठी काला से, तो बिल्कुल बढ़िया है, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज, हाय सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है और सब बताइए? खाना तो बिल्कुल बढ़िया है मेरा हाल, और आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इस मैसेज को करती हैं लाडली नवादा से, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सर मेरा नहीं बजेगा क्या? बिल्कुल बजेगा, एक एक करके फरमाइश पूरी होगी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हमारा गाना बजा दीजिए एक एक करके ही तो फरमाइश पूरी करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, प्लीज़ सर प्ले कर दीजिए। बिल्कुल हम तो बोल ही रहे हैं कि प्ले होगा सबकी, जितना हमें समय मिला है उतना आप लोगों को समय देंगे। और आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे सुजीत जी गाने के फरमाइश किए हुए हैं और गाने का बोल देते हैं, क्यों जिंदगी की राह में, तो सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो एमसीएम 98.4 एफएम।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जेजी शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जेजी शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
7: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
7: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100, या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
10: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
11: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
11: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल अम्बेडकर चौक हॉस्पिटल रोड गोपालगंज, अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास बेतिया हाता गोरखपुर।
11: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 84710 30 92 या 9765665750।
12: सुनिए सुनिए सुनिए,
13: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
12: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
13: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
12: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
11: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
11: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714861 64।
14: ठक ठक
15: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
14: अच्छा मिला ही नहीं।
15: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
16: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
15: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
16: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम पे कार्यक्रम एसएमएस फरमाइश में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे लिखा गया है कि हाय सर, मैं माहिरा पटेल माझा से और गाना सुनना है तेरी गलियोशा। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और हमें लगता है कि आप नए गाने की फरमाइश कर रही हैं और इस गाने की फरमाइश यदि नहीं होंगे तो पूरा तो नहीं हो पाएगा और समय भी बहुत कम है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सर मेरा नहीं बजेगा। तो बिल्कुल आपके ही गाने हम बजाएंगे रहमत अली जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, प्लीज़ सर प्ले कर दीजिएगा, बिल्कुल कोशिश है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हमारा गाना बजा दीजिए, बिल्कुल एक ही करके गाने का फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे बढ़ते हैं और गाने के फरमाइश प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम पे। इश्क ना करना

टुडे एमजीएम 94 एफएम सुनने हम सभी और शो एसएमएस फॉर्मेट के साथ बने हैं और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और हम साथ साथ मूवी से कोई भी गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है गोलू जी की तरफ से कुपला मठ से। तो चलिए इनके फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो एम

0: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
1: कहाँ पर?
0: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
1: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
0: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
1: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
2: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
3: भरोसे वाले से लेंगे,
2: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
3: और कीमत भी।
2: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
4: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
6: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
6: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
8: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
6: कॉल करें 8570-32042 पे।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ मैसेज है, देख रहे हैं, नमस्कार, प्रोग्राम सुन रहा हूँ, बहुत ही अच्छे गाने बज रहे हैं। प्रदीप है नागपुर महाराष्ट्र से, बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रंजन को। सन्यासी रंजन बाबा जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं कि हमारा भी हाजिरी लगा दीजिए। बिल्कुल आपकी हाजिरी लग चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। यहाँ नील जी है छोटपुर से, लिख रहे हैं कि हमरा के दर्द भरल गीत डेडिकेट करे वाला भैया के बहुत बहुत धन्यवाद बटे, और बनिहारी करे के जरूरत नहीं है, किराना दुकान खोल ली, पैसा भी आई और वहाँ के भी आए आ जाए, बिल्कुल बढ़िया तरीका बटे, और बनिहारी करे से ज़्यादा बढ़िया बा, और एमे फंसे के भी चांस कम बटे, तो काफ़ी बढ़िया तेज़ दिमाग चलाता नील जी। और बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश वॉइस के माध्यम से सिवान जिला से पहुंचा हुआ है जितेंद्र जी का, तो चलिए प्ले कर रहे हैं आपकी फरमाइश को, आवाज पहुंच रही है, अपने गाने को एंजॉय करिए सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे।
1: अश्विन जी, मैम जी, नमस्कार, आप नाम? अब हम जितेंद्र सिवान जिला से आपके पुजगुजा में, अब हमको एक गाना सुनना है, गाना है

0: शिवनी मैम जी नमस्कार। हमारा फरमाइश चला एकदम सुन के एकदम मन गदगद हो गया। एकदम चलाते रहिए रेडियो रिम झिम 90.4। आज कहता है सुनो दिल से। ओह
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
1: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 90971602।
4: कब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया घूम लेनी नू सारा मार्केट देख लेनी नू सारा बाजार कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
5: अरे ना देवर जी कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल सिरी में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हो चुके हैं आप सभी के बीच रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और हाँ, व्हाट्सएप मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज हैं। मनीष रजाक है फाजिल नगर कुशनगर उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं कि आप बीच में गुनगुनाते रहिए अच्छा लगता है और हमें उनसे मोहब्बत करके वेरी नाइस सॉन्ग। और यहाँ बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और मैसेज है लिख रहे हैं कि नमस्कार जी सुपर सॉन्ग हम उनसे मोहब्बत करके। और हम भी यूपी में हैं, जुड़ चुके हैं और मैसेज करने वाले हैं। इंद्रदेव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। एक और यहाँ वॉइस पहुँचा हुआ है और प्रिया कुमारी दिल्ली से जुड़ी हुई है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करने की पूरी कोशिश है, बने रहिए साथ में। और एक यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि शिवान से जितेंद्र जी के आनंद मोहन जी की आवाज़ में बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैसेज करने वाले हैं दिनेश मिश्रा जी दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे और अगली फरमाइश धनाओं से पहुंचा हुआ है हमारे पास वॉइस के माध्यम से, तो चलिए सुनते हैं कि कौन से गाने की फरमाइश पहुंची है हमारे पास।
8: सोनी जी नमस्कार, इरशाद मास्टर ग्राम धनाव थाना नासिकगंज जिला रोहतास बिहार से बोल रहा हूँ, गाने का लिंक भेज दिया हूँ।
9: ऐसे ही और सदाबहार वीडियोस देख।
8: हाल चाल है मैडम, और पूरे रेडियो रिमझिम का समाचार बताइएगा। और हम इरशाद मास्टर ग्राम धनाव थाना नासिकगंज जिला रोहतास बिहार से बोल रहे हैं।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
8: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
7: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
8: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
9: रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ, उससे पहले यहाँ कुछ मैसेज पहुँचे हुए हैं और कमरान रसीद हैं पकड़ी सुल्तान से लिख रहे हैं कि एक शायरी है, किसी को चाहना गलत नहीं है, किसी को चाहना गलत नहीं है, चाह कर छोड़ देना गलत बात है। बिल्कुल सही और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शो में जुड़े अमन प्रजापति हैं थावे से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, बनी रही हमारे साथ सुनते रहिए रेडियो रंजन को। और यहाँ विमल कुमारी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है, लिख रहे हैं कि मेरे पापा का कॉल आया था क्या? बिल्कुल आपके पापा का कॉल भी आया था और फरमाइश भी प्ले हो चुकी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो में जुड़ी बनी रही हमारे साथ सुनते रहिए रेडियो रंजन को। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है वो है वॉइस के माध्यम से और फरमाइश करने वाले हैं अंकुर जी। तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर रहे हैं, आवाज़ पहुँच रही है, अपने गाने को इंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM को।
10: गुड आफ्टरनून सोनी मैम, मुझे तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, आज शाम सुनना है

0: रामू हरिया कल तैयार रही लो परारी जलाए चले के बा
1: ठीक बा भैया।
2: ए भैया एगो सूचना सुनला हा, कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहा बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लागी।
3: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
2: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। एक टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
3: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बताओ तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
2: एकर बढ़िया विकल्प यह बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
3: अच्छा तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएम जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी दे के।
2: याद रखी, ठूठ कूड़ा ना हा, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
4: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
5: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
4: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
6: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। 2:05 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और यहाँ मैसेज की बात करें तो काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं। और मैसेज के साथ में फरमाइश भी है तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आज की अगली फरमाइश जो है लेते हैं कॉल के माध्यम से। और जिनकी भी फरमाइश से है वो सब बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को, आप सबकी भी फरमाइशें प्ले करेंगे। और यहाँ कॉल पहुँच चुका है तो चलिए बात करते हैं कौन है, कहाँ से और गाने की फरमाइश कौन सी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बताइए अपना और कहाँ से। अंजलि
1: हाँ।
0: कैसी हैं अंजलि जी?
1: अच्छे हैं, अपना बताइए।
0: हाँ भाई बढ़िया है, क्या हो रहा था?
1: अभी कुछ नहीं, बैठे
0: हैं। तो गाना कौन सा सुनना है आपको?
1: गाना सुनना है कि
0: होखा था सगाई आवत अरुवाई। केकरा आवाज में बा गाना?
1: इतना तो पता नहीं है।
0: गाना नया बा?
1: ना नया ना, पुराना हो गया लेकिन।
0: चलिए तो प्ले कर दो नहीं गाना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल के लिए।
1: थैंक यू।

0: रोशनपुर सपहा।
1: ठक ठक।
2: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
2: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
2: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में।
3: क्यों, क्या हुआ है?
2: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
3: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
2: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
5: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।

94.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ काफ़ी सारे मैसेज है और फरमाइश भी, तो आप सभी को बता दूँ 2:11 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में, और एक फरमाइश प्ले करेंगे, उसके बाद जाएंगे दोपहर समाचार की तरफ। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे, हेलो मैम नमस्कार, राधे राधे, गाना सुनना है, और शाहजन मेरा उस पार है, फिल्म का नाम है गंगा जमुना सरस्वती। उमा शंकर जी है राजा लालपुर लालगंज से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और गाने की फरमाइश है, तो आपकी फरमाइश जो है दोपहर समाचार के बाद पूरा करेंगे। बने रहिए साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे, गुड आफ्टरनून डियर सोनी जी, कैसी हैं, और ज़रूर बताइएगा, और मेरे तरफ से सभी दोस्तों के लिए मेरा प्यार भरा सलाम बोल दीजिएगा, और मैं रेडियो फ़ैन मोहम्मद इरफान फ्रॉम दुबई से बहुत बहुत स्वागत है, और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। और आगे लिखते हैं कि तन्हाई की दीवारों पर खामोशी का पहरा है, तन्हाई की दीवारों पर खामोशी का पहरा है, वक्त की लहरों का जख्म जरा गहरा है, रिमझिम के सफ़र में चलते तो एक मुसाफिर बनकर, पर किसी खास चेहरे के पीछे छुपा एक अनजाना चेहरा है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े, और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही हैं, और फरमाइश करने वाली हैं शविता देवी जी दिल्ली से, और इनको सुनना है बबीता सागर की आवाज़ में कैसन बाड़े लक्ष्मण देवरवा। तो चलिए आपकी फरमाइश जो है प्ले कर दी है, आवाज़ पहुंच रही है, अपने गाने को एंजॉय करिए सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी जीत की ओर अग्रसर। 293 सीटों में से 193 सीटों पर आ गए। तृणमूल कांग्रेस की 93 सीटों पर बढ़त। असम में भाजपा तीसरी बार सत्ता में आने को तैयार। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके की अपने पहले ही चुनाव में जबरदस्त सफलता। सत्तारूढ़ डीएमके तीसरे स्थान पर। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पीछे चल रहे हैं। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर। पुदुचेरी में एनडीए की सत्ता में फिर वापसी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने त्रिपुरा, नागालैंड और गुजरात में एक एक सीट जीती। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के रुझानों से भविष्य की राजनीति की दिशा तय होने के संकेत मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल और केरलम में सत्ता परिवर्तन तय नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिलने जा रही है और वो पहली बार इस पूर्वी राज्य में सरकार बनाएगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 293 सीटों में से 292 के रुझान मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काफी बढ़त बना ली है और वो 193 सीटों पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस गठबंधन 93, AJUP 2, AISF 2, कांग्रेस 1 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट पर आगे है। राज्य की फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया गया है। यहां 21 मई को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता कल्याण लाहा से। कल्याण, भाजपा पश्चिम बंगाल में जीत की ओर अग्रसर है। पश्चिम बंगाल की टीएमसी से मुक्ति का नारा अब वास्तविकता में बदलता दिख रहा है। टीएमसी के पिछड़ने के क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं?
1: देखिए, हम अभी जो दिख रहे हैं ग्राउंड में, बीजेपी बहुत सारे सीट में अभी आगे है। और जो आप बोल रहे हैं क्या क्या कारण हो सकता है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बहुत बड़ा सिचुएशन है इधर। और आर्टिकल जो इंसिडेंट है हुआ है उसके बाद उसके सेम टाइप का बहुत सारे इंसिडेंट है। लैक ऑफ जॉब है और आपका जो डिससेटिस्फेक्शन है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके अंदर जो डिससेटिस्फेक्शन है। और आपको जैसे मैं पहले बोल रहा था, जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी जॉब ऐसा नहीं है, रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। और आपका जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है जो उसका जिक्र मैं पहले किया था, वो जो आम जनता है उनका गवर्नमेंट के ऊपर जो विश्वास था, जो फेथ है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इसका जो रिजल्ट आपको अभी ग्राउंड में दिख रहा है, बीजेपी बहुत सारे सीट में अभी लीडिंग है और एक थम्पिंग मेजोरिटी के साथ सामने आएगा।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद कल्याण। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन सत्तारूढ़ एलडीएफ से बहुत आगे निकल गया है। वहां विधानसभा की सभी 140 सीटों में से 9 के परिणाम मिल गए हैं। 6 सीटें कांग्रेस, 2 मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और 1 सीट IUML ने जीती हैं। पुतुपल्ली सीट कांग्रेस के चांडी ओमन, हरिपद सीट रमेश चन्नीतला, नीलांबुर सीट आर्यदन शौकत, त्रिशूर सीट राजन जे पल्लन और कोल्लम सीट बिंदु कृष्णा ने जीती। अलतूर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के TM शशि विजयी रहे। रुझान इस प्रकार है, कांग्रेस 54, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 26, IUML 22 और CPI 9 पर आगे। पुदुचेरी में परिणाम और रुझानों में AINRC की सत्ता बरकरार रहने के साफ संकेत हैं। भाजपा प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि विधानसभा चुनावों के शुरुआती रुझान भाजपा के पक्ष में हैं और पार्टी असम तथा पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत से जीत हासिल करने जा रही है। श्री सिन्हा ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस की राजनीति को नकार दिया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के रुझान भाजपा के पक्ष में उभर रहे हैं।
2: पश्चिम बंगाल में जो रुझान दिख रहे हैं वो दर्शा रहे हैं कि बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग उठी है और रुझान दिखा रहे हैं कि वो निरंतर एक ज्वार में परिवर्तित हो रही है और जब वो परिणाम में परिवर्तित होंगे तो वो सुनामी के रूप में दिखाई पड़ेगी। 12 वर्षों के सतत प्रयत्न और हमारे केंद्रीय नेतृत्व की दूरदृष्टि के साथ, कार्यकर्ताओं के संघर्ष बलिदान के साथ हम इस मुकाम तक पहुंचते हैं। असम में 2011 के चुनाव में हमारी 3-4 सीटें, आज लगातार तीसरी बार सरकार है। ये अपने आप में दिखाता है कि पूर्वोत्तर में कितना बड़ा बदलाव आया है।
0: भाजपा नेता GVL नरसिम्हा राव ने विधानसभा चुनावों के रुझानों में ऐतिहासिक जनादेश देने के लिए असम और पश्चिम बंगाल की जनता द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके विकास मॉडल को वोट देना बताया है। भाजपा नेता रवि त्रिपाठी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने भाजपा को स्पष्ट जनादेश दिया है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये केवल शुरुआती रुझान है और पूरी तस्वीर साफ होने पर ही कुछ कहना उचित होगा। असम में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। असम में विधानसभा की 126 सीटों में से 2 के परिणाम मिले हैं। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के चरण बोरो ने मजबूत सीट जीती है। धेमाजी सीट से सत्तारूढ़ भाजपा के डॉ रनुर पेगू विजयी रहे हैं। भाजपा 78, कांग्रेस 24, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट 9, असम गण परिषद 8, AIUDF 2 और अन्य 3 सीट पर आगे हैं। असम से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश डोले से। राकेश, असम में एनडीए अपने उम्मीदों के अनुरूप लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। असम सोनमलेता मोर्चा पिछड़ गया है, खुद गौरव गोगोई हार गए हैं। श्री गोगोई के हार के पीछे क्या उनके परिवार पर लगे आरोप भी एक कारण है?
3: जो परिवार आप जो बोल रहे हैं, परिवार पर लगे आरोप कारण है, ये एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल है। बट द थिंग इज दैट जो वेलफेयर स्कीम्स और जिस तरह की चीजें एनडीए गवर्नमेंट ला रही थी यहाँ पर, दिस कैन बी अ बिग रीजन, ये बहुत बड़ा एक रीजन बन सकता है,
0: खासकर महिलाओं के लिए जो वहाँ चलाए गए थे कार्यक्रम
3: जी,
0: और उनका भी योगदान रहा है जीत में।
3: जी, आप अरुणोदय की बात कर रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एक स्कीम है। अभी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि वो जो 1250 रुपीस मिल रहे थे मंथली, वो बढ़ा के 3000 कर देंगे। फिर आप हम लोग अब जब देखेंगे लास्ट इलेक्शन के साथ कंपेयर करेंगे, अपर असम गढ़ था बीजेपी के लिए, वहाँ पे 36 सीट में से उन लोगों ने एनडीए ने जीता था अराउंड 31, वो वहाँ पे वो गढ़ था। पर अभी आप इस तरह के रुझान देख रहे हैं पूरे असम में, बीजेपी जो है लीड लेकर बैठे हुए हैं, दो तो जीत चुके हैं, फिर एक बीपीएफ जो उन्हीं के घटक पार्टी है, जो अलायंस पार्टी है बीटीआर रीजन से, वो भी एक जीत चुकी है। तो इन टोटल 80 बीजेपी जो है 78 सीट पे लीडिंग है अभी, और कांग्रेस मात्र 23 सीट में।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद राकेश। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों में से 3 के परिणाम मिल गए हैं और तीनों ही भाजपा के खाते में गए हैं। गुजरात की उमरेड सीट भाजपा उम्मीदवार हर्ष दभाई गोविंद भाई परमार ने जीती। कर्नाटक की बागलकोट से कांग्रेस उम्मीदवार उमेश हुलाप्पा मेती और दावंगेरे दक्षिण से कांग्रेस उम्मीदवार समर्थ शमनूर मल्लिकार्जुन आगे हैं। महाराष्ट्र की राहुरी सीट से भाजपा उम्मीदवार अक्षय शिवाजीराव करदेले और बारामती सीट से पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सुनेत्रा अजित पवार बढ़त बनाए हुए हैं। नागालैंड की कोरिडांग सीट भाजपा उम्मीदवार दाउचीर आई एम चेन ने जीती। त्रिपुरा की धर्मनगर सीट से भाजपा उम्मीदवार जाहर चक्रवर्ती विजयी रहे। नागालैंड में भाजपा उम्मीदवार दाउचीर आई हिमचेन ने 28 कोरिडांग विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में 3123 वोटों से जीत हासिल की। उन्हें 7317 वोट मिले। उन्होंने निर्दलीय प्रतिद्वंदी तोशिकाबा को हराया, जिन्हें 4194 वोट मिले। इस सीट के लिए कुल 6 उम्मीदवार मैदान में थे। निर्दलीय उम्मीदवार इमती वापांग को 3633 वोट मिले, जबकि राष्ट्रीय जनता पार्टी के आई अबेन जांग को 3219 वोट मिले। निर्दलीय उम्मीदवार इमचाटोबा इमचेन को 147 वोट मिले। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार टी चालुकुम्बा आओ को सबसे कम 144 वोट मिले। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विधानसभा की सभी 234 सीटों के रुझान मिल गए हैं। अभिनेता विजय जोसेफ की पार्टी टीवीके ने सभी को चौंकाते हुए 112 सीटों पर बढ़त बना ली है। एआईएडीएमके 58, डीएमके 47, पीएमके 5, कांग्रेस 4, सीपीआई 2, भाजपा 1 और अन्य 4 सीट पर आगे हैं। चेन्नई से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी से। सुशील, वर्ष 2024 में बनी अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी की अप्रत्याशित जीत ने तमिलनाडु में वर्षों से चले आ रहे डीएमके या एआईडीएमके की सरकार बनाने की परंपरा को तोड़ दिया है। इस जीत के पीछे क्या प्रमुख वजह है?
4: देखिए कनक, जो आप अगर इसकी वजह के उसमें जाएंगे तो पहली चीज तो ये है कि मतदाता ने एक नए सिरे से, खासतौर पे नए मतदाता जो यंग वोटर्स हैं और युवा मतदाता हैं, यंग वोटर्स यानी फर्स्ट टाइम वोटर्स जो पहली बार वोट डाल रहे थे वो 14 लाख के आसपास थे और 1 करोड़ से ज्यादा युवा मतदाता 30 से कम की उम्र के थे। इनके बीच विजय का एक करिश्मा था, एक जादू था। उसके साथ ही जो सरकार के खिलाफ माहौल था, विजय ने उस माहौल को पूरी तरह से भुनाया और जयललिता के जाने के बाद इस तरीके का एक फिल्म स्टार या उस तरीके के करिश्मे वाले विपक्ष के नेता की कमी महसूस की जा रही थी, उस कमी को भरने में विजय जो है वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने लोगों से ये वादा भी किया था, उन्होंने कोई द्रविड़ियन पॉलिटिक्स के जो सिंबल्स थे उनको भी अपने साथ अपने प्रचार में जरूर कैरी किया, लेकिन उसका कहीं पर खुले तौर पर सामने जिक्र नहीं आया। वो किसी विचारधारा से प्रेरित होकर के नहीं आए, वो किसी आंदोलन की उपज नहीं थे, लेकिन सरकार के खिलाफ गुस्सा और नई जनरेशन, यंग जनरेशन, जेंजी जो है और युवा जो है उनकी नई सोच ने तमिलनाडु में ये राजनीतिक परिवर्तन दिखाया है जो द्रविड़ियन राजनीति से अलग दिखता जाता हुआ नजर आ रहा है।
0: धन्यवाद, धन्यवाद सुशील। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका में भारतीय समुदाय के साथ चर्चा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि जमैका के प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। दोनों पक्षों के बीच खासकर बुनियादी ढांचे, मानव विकास और तकनीक आधारित शासन तथा उद्यमिता पर विमर्श हुआ। दोनों नेताओं ने भारत जमैका संबंधों में हाल के घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। डॉ जयशंकर जमैका, सूरीनाम तथा त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर हैं। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अब बात करते हैं भाजपा मुख्यालय में मौजूद हमारे संवाददाता दीपेंद्र से। दीपेंद्र, इन चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन से पार्टी मुख्यालय में खुशी का माहौल होगा, क्या देख रहे हैं आप वहां?
5: बिल्कुल कनक, असम और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए अब पार्टी मुख्यालय में इस वक्त जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। पार्टी कार्यकर्ता हाथों में झंडा लिए हुए और जीत की खुशी में नारे लगा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। इसके अलावा आतिशबाजी भी हो रही है और ढोल नगाड़े की धुन पर जो है जश्न नाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताऊं कि जो बीजेपी के पार्टी के नेता हैं और कार्यकर्ता है, इस जीत को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भाजपा के सुशासन मॉडल पर जनता के भरोसे को बता रहे हैं। और रुझानों के अनुसार बीजेपी पहली बार जो है पश्चिम बंगाल में सरकार बनाती हुई दिख रही है, वही लगातार तीसरी बार असम में सरकार बनाएगी। और आपको बता दूं कि शाम में प्रधानमंत्री मोदी पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उनके स्वागत के लिए पार्टी मुख्यालय में तैयारियां चल रही हैं। जी,
0: जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुराना मार्ग है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत लगातार कहता रहा है कि ऐसे दावे अनुचित और ऐतिहासिक तथ्यों से परे हैं। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल ने कहा है कि एक क्षेत्र उसके अधिकार में आता है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 159 अंक की बढ़ोतरी के साथ 77,073 पर, जबकि निफ्टी 58 अंक की वृद्धि के साथ 24,056 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से देश भर में आज से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी जीत की ओर अग्रसर। 293 सीटों में से 192 सीटों पर आगे, तृणमूल कांग्रेस की 95 सीटों पर बढ़त। असम में भाजपा तीसरी बार सत्ता में आने को तैयार। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बनने विजय की पार्टी टीवीके की अपने पहले ही चुनाव में जबरदस्त सफलता। सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी तीसरे स्थान पर, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पीछे चल रहे हैं। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर। पुदुचेरी में एनडीए की सत्ता में फिर वापसी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने त्रिपुरा, नागालैंड और गुजरात में एक एक सीट जीती। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जनादेश 2026
1: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम।
2: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
5: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
6: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
5: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
6: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
5: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
5: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
6: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
7: नमस्ते, निदेशक CBSE पब्लिक स्कूल बसडीला खास गोपालगंज, जितेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं। अभिभावक महोदय, आप अच्छे स्कूलों की एक सूची बनाइए, उन स्कूलों के क्लासरूम में अवश्य जाइए जिसमें आप अपने वार्ड का एडमिशन दिलाना चाहते हैं। वहाँ क्लासरूम में बच्चों के रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स स्किल, बॉडी लैंग्वेज और फेयर नोटबुक देखने का मौका मिलता है। साथ साथ आप 10th और 12th के CBSE का रिजल्ट भी देखने का मौका मिलता है। यदि अबव 95% स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस एवं रिजल्ट संतोषजनक है तो आप तय कर पाएंगे कि स्कूल अच्छा है। जी धन्यवाद।
8: Last 10th board results 2025, outstanding performance. 50 students scored above 90% and no students scored below 80%. Truly शानदार achievement.
6: लगातार तीन वर्षों 2023, 2024 और 2025 में district topper in commerce stream देने का गौरव।
8: Visit करें CBSE Public School, बस्टीला खास, गोपालगंज, या contact करें 7633970104।
9: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
6: कहाँ पर?
9: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, छवही खास, गोपालगंज,
6: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
9: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
6: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
9: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569650।
10: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170858587।

दोपहर समाचार के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। 2:37 हो रही है स्टूडियो घड़ी में। और आप सभी को बता दें कि हमारे यहाँ मौसम काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका है, बारिश के साथ में बिजली भी कड़क रही है। तो जो लोग भी रेडियो पर सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम को, उनका रेडियो नहीं चलेगा अभी क्योंकि ट्रांसमीटर बंद है। और अगर आप रेडियो रिमझिम को सुनना चाहते हैं, योर वॉइस योर चॉइस शो सुनना चाहते हैं, तो आप ऐप पे आइए, ऐप पे चलेगा आपका शो पूरा 4 तक आप सभी के साथ हैं आपके अपने शो योर वॉइस योर चॉइस में। और जब तक मौसम सही नहीं होता, ट्रांसमीटर चालू नहीं होगा, तो रेडियो पर आप रेडियो रिमझिम को नहीं सुन पाइएगा। बाकी आप सभी बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और बढ़ेंगे यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं। और लिख रहे हैं कि यहाँ सुजीत कुमार है, समाचार के बाद मेरा गाना बजा दीजिएगा प्लीज़। बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश प्ले करेंगे। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरी पत्नी जी का गाना बजाने के लिए आपका धन्यवाद। और उमा शंकर मिश्रा है दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि हमारे भाभी जी का गाना चलाएं, और 1 तो नहीं बजा था, 3 गाना बजा था आपकी भाभी जी का। और दिनेश मिश्रा है दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि कोलकाता में भी भाजपा फिर एक बार जीत गया। और मैसेज करने वाले हैं विनोद चौहान जी मुंबई से, और ये समाचार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शो से जुड़े बहुत बहुत स्वागत आपका। बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है। और अगली फरमाइश करने वाले हैं सुजीत कुमार जी लालगंज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर रहे हैं। दिल तो है दिल, दिल का एतबार नहीं, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले कर दी। एंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

0: 24 राज्यों में 160 से अधिक शहरों में 280 से ज्यादा स्कूल्स के साथ एजुकेशन में ट्रस्टेड नेम बिरला।
1: अब वही लेगेसी, वही एक्सेलेंस आ गया है आपके शहर गोपालगंज में।
0: इंट्रोड्यूसिंग बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशंस आर नाउ ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 7।
1: और खास बात, प्ले ग्रुप के लिए लिमिटेड पीरियड फ्री एडमिशन।
0: मॉडर्न एजुकेशन विथ AC क्लासरूम्स, डिजिटल लर्निंग, कंप्यूटर एंड साइंस लैब्स, लाइब्रेरी एंड सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी।
1: बिकॉज लर्निंग इज बियॉन्ड क्लासरूम्स, म्यूजिक, डांस, योगा एंड जूडो क्लासेस फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऑल टीचर्स आर BEd qualified and follow CBSE guidelines, ensuring quality education.
0: Visit today, Yadopur Road, Saraya Ward No. 1, Shambhu Path, Saraswati Talkies ke paas, Gopalganj.
1: Call now 775-994-9440 or 775-994-9441.
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का और 2:46 हो रही है स्टूडियो घड़ी में और यहाँ बढ़ेंगे आगे व्हाट्सएप मैसेज की तरफ। तो काफी सारे मैसेज पहुंचे हुए हैं और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि नमस्कार आप सभी लोगों को, आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैडम जी आप भी बहुत अच्छी होंगी और आज जितने लोगों की गाने की फरमाइश है उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, आपने इस गाने की फरमाइश करके मुझे कहने पर मजबूर कर दिया। मैडम जी आपको लगता है कि यह फीडबैक शेयर नहीं करना चाहिए तो मत कीजिएगा, मेरी तरफ से मैंने श्रोताओं के साथ शेयर करने के लिए भेजा है। कुछ सवालों के जवाब सारी उम्र बीत जाती है फिर भी नहीं मिलता और कुछ सवालों का जवाब हमारे पास मिलते हैं जिसे हम देखते हैं, उसका दर्द महसूस करते हैं, हम जानते हैं कि ये गलत है फिर भी हम उसका साथ देते हैं क्योंकि हम उसके प्यार उससे प्यार करते हैं या शायद कुछ और, या शायद इंसानियत के लिए प्रकृति ने हमें ऐसा ही बनाया है। इस सब बातों से ज़्यादा अच्छा है कोई हमें गलत कहे या सही कहे, अगर हम सही है तो उसे प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक वैसे ही लोग की फरमाइश आती है और जब हम गाना सुनते हैं हम उस लम्हे में खो जाते हैं, दर्द और खुशी दोनों महसूस करते हैं और उन यादों के बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं, शायद प्रकृति ने हमें ऐसा ही बनाया है। और इस मैसेज के साथ जुड़े हुए हैं सोनू सऊदी अरब से, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में, बनी रही हमारे साथ सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सोनी जी, कैसी हैं आप, और मैं भी शो से जुड़ गया हूँ, रोहित यूपी छत्तीस अमेठी जिला उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत है रोहित जी आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि पप्पू गुस्से में बैंक से बाहर निकलते हुए बड़बड़ा रहा था, दूध वाले हड़ताल करते हैं तो दूध सड़क पर फेंक देते हैं, टमाटर वाले हड़ताल करते हैं तो टमाटर सड़क पर फेंकते हैं, न जाने बैंक वाले को कब अकल आएगी। और मैसेज करने वाले हैं धनेश मिश्रा जी दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। राहुल जुड़े हुए हैं दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी आपका भी, बनी रही हमारे साथ सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। राकेश भारती जुड़ चुके हैं बक्सर से, बहुत बहुत स्वागत है, लिख रहे हैं सोनी दी मेरा भी शादी सेट हो गया, नवम्बर में शादी है और आपको आना होगा उस समय, पूरी कोशिश रहेगी, बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई हो आपकी शादी सेट हो गई। और अपनी होने वाली श्रीमती जी का फोटो भेजिए जरा, हम भी देखें कि आखिर है कैसी। और बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है नॉर्थ बंगाल से गोपाल रॉय जी का और इनको सुनना है गाना चुरा के दिल मेरा। तो चलिए अगली फरमाइश जो है आपका प्ले कर रहे हैं, आवाज पहुंच रही है, अपने गाने को एंजॉय करिए सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे। और गाने की फरमाइश पूरे परिवार के साथ सुनना चाहते हैं तो एंजॉय करिए अपने पूरे परिवार के साथ अपनी फरमाइश को रेडियो रिमझिम पे।

0: रेडियो रिमझिम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा और हमारे एन्यूमरेटर्स हो सकता है कि कुछ प्रिजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये 2 फेज में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, चूंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पे ज्यादा फोकस करें ताकि सही से जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पर जो बनने वाली हो सही से ही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान
2: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
1: आज ही संपर्क करें 7388 9470 या 9198 8869 73।

0: 90.4 रेडियो रमजन सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ बढ़ेंगे व्हाट्सएप मैसेज की तरफ, और मैसेज पहुँचा हुआ है। प्रिया कुमारी हैं दिल्ली से, लिख रहे हैं कि मैम मुझे ट्यूशन जाना है, मेरा भी फरमाइश प्ले कर दीजिए। बिल्कुल, अगली फरमाइश आप ही का है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रमजन को। और यहाँ मैसेज है, विष्णु कुमार जुड़ चुके हैं वीके फास्ट फूड सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, फरमाइश है प्ले करने की पूरी कोशिश है। एक और यहाँ मैसेज है, आमपाली दुबे जुड़ चुके हैं और लिख रहे हैं कि गाना बढ़िया है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ एक मैसेज है, लिख रहे हैं कि चुरा के दिल मेरा गोरिया, चलिए इस गाने की फरमाइश करने वाले भाई साहब को और आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मैडम जी आपका भी। और सोनू है सऊदी अरब से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश जो है दिल्ली से पहुँचा हुआ है प्रिया कुमारी जी का, तो चलिए प्ले करते हैं, वॉइस पहुँचा हुआ है, सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।
1: मैं प्रिया कुमारी दिल्ली से, मुझे गाना सुनना है, कितनों करबू पढ़ाई रोटियां बेलन के पड़ी, खास तरह से मेरी मम्मी के लिए।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान लिया।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या। दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। 3:03 हो चुके स्टूडियो घड़ी में, और यहाँ मैसेजों का सिलसिला जो है वो बढ़ते ही जा रहा है। दिनेश विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं जयपुर जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत है, फरमाइश के साथ है, बिल्कुल बने रहिए साथ में, सुनते रहिए रेडियो रंजन को। एक और यहाँ मैसेज है, और शविता देवी जुड़ी हुई है, इनके तरफ से वॉइस पहुँचा हुआ है। तो हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ एक और मैसेज है, उमा शंकर मिश्रा है दिल्ली से, लिख रहे हैं मेरी बेटी का गाना बजाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि कार अगर पूरी तरह ख़राब हो जाए तो क्या उसे बेकार कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। और मैसेज करने वाले हैं सन्यासी रंजन बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और आगे बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है शिपाया खास से कृष्ण मोहन जी का, जो कि सुन रहे हैं अभी लखनऊ उत्तर प्रदेश से रेडियो रिमझिम को, और इनको सुनना है गाना चांद जैसा चेहरा तोहार दिल हमार ले गल। तो चलिए अगली फरमाइश जो है आपका प्ले कर रहे हैं, आवाज़ पहुंच रही है, अपने गाने को एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894-18744।
5: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो मैसेज है कृष्ण मोहन जी की तरफ से मैसेज पहुँच चुका है। लिख रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी गाना बजाने के लिए। और लिख रहे हैं कि गाने में गुनगुनाया बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ बढ़ेंगे आगे एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं हेलो राधे राधे पाजी यूपी चौहान से और मेरा भी हाजिर लगा दीजिए। बिल्कुल लग चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं अर्ज किया है कल उसकी याद पूरी रात आती रही, कल उसकी याद पूरी रात आती रही, मैं जगता रहा पूरी दुनिया सोती रही, आसमान पर पूरी रात बिजली कड़कती रही, बस एक बारिश ही थी जो मेरे साथ रोती रही। क्या बात है। और मैसेज करने वाले हैं रोहित जो कि जुड़े हुए हैं यूपी छत्तीस अमेठी जिला उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ एक मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि लिख रहे हैं क्या ये वगो से टू यू नेक्स्ट टाइम थैंक्स। और राहुल जी हैं दिल्ली से, तो राहुल जी मैं आपको बता दूं कि यहाँ काफ़ी सारी फरमाइशें होती है और आप जुड़े गाने की फरमाइश से अगर थोड़ा वेट करिएगा तो हम आपकी गाने की फरमाइश जो है ज़रूर प्ले करेंगे। और अगर जाना है समय नहीं है तो कोई बात नहीं, अगली बार आइएगा तो समय लेके आइएगा अगर गाने की फरमाइश होगी तो। सो से जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ मैसेज है विष्णु कुमार जी हैं, लिख रहे हैं हमारा गाना नहीं बजेगा क्या। बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश है प्ले करेंगे। और यहाँ दिनेश विश्वकर्मा जी है तो आप भी थोड़ा सब्र रखिए, हम आपकी भी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। और यहाँ अगली फरमाइश जो प्ले करेंगे वॉइस के माध्यम से पहुँचा हुआ है, कमरान रशीद जुड़े हुए हैं, तो चलिए सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।
1: हाँ नमस्कार सोनी जी, कैसी हैं? सब बढ़िया है ना? और मैं आज एक बार फिर जुड़ चुका हूँ बहुत दिन के बाद, क्या करूँ लंबा लंबा गैप तो हो ही जाता है, और क्या करें आप तो जानती हैं इस समय के हिसाब से परिवर्तन होता है इंसान का, लाइफ तो चेंजिंग हो रहा है। और मैं बस जुड़ गया हूँ आपके शो में बहुत दिन के बाद, और सब बढ़िया है, घर परिवार सब आपके बढ़िया है। तो हमको आज सुना दीजिएगा, मूवी का नाम तो हमको याद नहीं आ रहा है। हाँ हाँ याद आ गया, याद आ गया। फिल्म का नाम है चांदनी रात, सन 1949 में आई थी। उसमें गाने हैं कैसे बजे दिल का सितार, शमशाद बेगम और मोहम्मद रफ़ी का आवाज़ है, शकील बदायूं ने लिखा है, संगीत है नौशाद की। ये सुना दीजिएगा कैसे बजे दिल का सितार चांदनी रात 1949 में आई थी। डेडिकेट सबसे पहले आपको आयशा, शबनम, साजिदा अंसारी और शबनम सबीना और सब्बा सिद्दीकी, सफ़ा और शाहजहाँ, गुलाम हुसैन, समीर आलम और निशा सुकुनवा, निशा भारती, रोशनी कुमारी, हेना हाजरा, इरफान भाई, दिलीप राम, शाहजहाँ, अहमद अली और हमको नाम तो याद नहीं आ रहा है। सोनी जी बहुत दिन हो गया जुड़े हुए तो इतना ध्यान नहीं आ रहा कौन कौन हमको डेडिकेट करते हैं। सबको रिव्यू सुनने वाले सबको नमस्कार।

0: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
1: कहाँ पर?
0: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल छवही खास गोपालगंज,
1: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
0: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
1: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास NH 27 गोपालगंज, कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569650।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 9779-714-86164।

90.4 रेडियो रिमझिम पे बने हुए हैं आप सभी और कार्यक्रम है आप सभी का अपना शो योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ काफ़ी सारे मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैडम जी मैं इस समय मुंबई से जुड़ा हूँ और दिनेश विश्वकर्मा जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद और फरमाइश है तो बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ हिमांशु मिश्रा जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आगे बढ़ेंगे, एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि का हाल बादी, बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं। और मैसेज करने वाले हैं गणेश कुमार पिपला नारायण से। और यहाँ एक और मैसेज यहाँ है, लिख रहे हैं कि मौसम बहुत बदल गया है हमारे छोटपुर सिवान में, तेज बारिश और पत्थर गिर रहा है, आपके तरफ का मौसम कैसा है? तो बिल्कुल आपके जैसा ही है, आपके उधर जैसा मौसम है हमारे यहाँ भी वैसा ही हुआ है। बाहर ऐसा लग रहा है देखने पे कि अभी ही रात हो गई है और बारिश भी हो रही है, पत्थर भी गिर रहा है, जिसकी वजह से ट्रांसमीटर बंद है। और जो लोग भी रेडियो पे सुन रहे हैं हमें फ्रिक्वेंसी के माध्यम से, वो लोग हमें नहीं सुन पा रहे होंगे, सिर्फ ऐप चल रहा है अभी मौसम की वजह से। और बढ़ेंगे आगे, एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना है बजा दीजिए, बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश प्ले करेंगे। और यहाँ अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से विष्णु कुमार जी की। तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर रहे हैं, आवाज़ पहुँच रही है, अपने गाने को एंजॉय करिए, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM को।

और यहाँ आफ्ताब आलम जुड़ चुके हैं मुंबई से, बहुत बहुत स्वागत है। लिख रहे हैं कि गाना फरमाइश कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, कोशिश रहेगी हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करें। और लिख रहे हैं कि मिलाई ले नई नवा नाइस सॉन्ग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और यहाँ विष्णु कुमार जी की तरफ से भी मैसेज पहुँच गया, लिख रहे हैं गाना बजाने के लिए।

0: चाहते हो मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में?
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज।
4: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
3: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
4: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। 3:27 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में, और यहाँ काफ़ी सारे मैसेज है। यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, गाने की फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं अफ्ताब आलम जी मुंबई से, बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी कोशिश है हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करें। और बढ़ेंगे आगे, एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हम भी जुड़ गए हैं दोपहर के बाद, मैयर एमपी से जुड़े हुए हैं सुनील कुशवाहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। मनेरी हमारे साथ सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को, और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश हमारे पास वॉइस के माध्यम से पहुंचा हुआ है, और लिख रहे हैं कि सोनी जी आज हमको गाना भी सुनना है, यह हमारा यूट्यूब चैनल है, मैंने जो भेजा है यही गाना है जो कि आपको पूरा गाना सुनवाना है, प्लीज़ सोनी मैम। बिल्कुल सुनवाएंगे, और मैसेज करने वाले हैं दिनेश विश्वकर्मा जी, तो चलिए सुनते हैं कौन से गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।
1: सोनी मैम प्रणाम, नमस्ते, हम भी जुड़ गए हैं आपके कार्यक्रम में, आपका कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगता है। हम दिनेश विश्वकर्मा न्यू मुंबई से, और हमें यही गाना सुना दीजिए, ये तो मेरा चैनल का लिंक मैंने भेजा है, जल्दी में हमको टाइम नहीं मिला, मैं दुकान पे हूँ, हमको यही गाना सुनना है मैडम, प्लीज़ सुना दीजिएगा। और ये मैं खुद बनाता हूँ गिलास, शुगर के मरीजों के लिए, और पैसा भी नहीं लेते।

0: रामू हरिया कल तैयार रही लो पराली जलाए चले के बा
1: ठीक बा भैया।
2: ए भैया एगो सूचना सुनला हा, कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहा बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लागी।
3: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
2: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। एक टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियत जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
3: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावो तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
2: एकर बढ़िया विकल्प यह बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। इससे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
3: अच्छा तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कर लू भाई जानकारी दे के।
2: याद रखी, ठूठ कूड़ा ना हा, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: ब्रेक के बाद फिर से हाजिर आप सभी के बीच रेडियो रंजन 90.4 FM पे। और यहाँ क्या बात है, मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ भी दिन अंधेरा हो गया है, सुबह बारिश हुआ था, फिर से बारिश होने की तैयारी में है। और मैसेज करने वाले हैं रोहित जी, तो आपके वहाँ तो अभी बारिश होने की तैयारी में है और हमारे यहाँ तो काफ़ी पीट पीट के एकदम बोलते हैं ना बारिश होता है, वैसे बारिश हो रही है और पूरा अंधेरा क्या रात हो चुकी है यहाँ पे। और मेरे घर से भी फ़ोन आ गया था कि जब तक बारिश ना खुले नहीं आना है, वहीं रुके रहना है, और अगर जल्दी बारिश खुल जाए तो समय से पहले ही घर चले आना है। अब देखते हैं बारिश खुलता है, बारिश का क्या विचार है, मैं आज घर जाऊंगी या फिर यहीं रहूंगी। और यहाँ आगे बढ़ूंगी, एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना है, बजा दीजिए। बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे, तो चलिए अगली फरमाइश जो है आप ही का प्ले कर रहे हैं। आवाज़ पहुँचिए, अपने गाने को इंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रमजम 90.4 FM को। और अगली फरमाइश जो हम प्ले करने जा रहे हैं, हमारे पास पहुँचा हुआ है, प्रदीप जुड़े हुए हैं।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0976-575।
4: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी और तहार

0: होती अब इनका ऑपरेशन होके वाला रहनु ओकर का भइल।
1: अरे ए बबुओ परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बा चाची तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बानी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत तानी। तो तू इनके लगे काहे ने कुचल जा। आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि लाख महफिल सजे लाख दीपक जले, लाख महफिल सजे लाख दीपक जले, लाख वर्षे घटा रंग नूर की, अगर आपके मन चाहे साथी के साथ ना हो तो दिल की परछाइयां भी लगती है दूर की। ओहो क्या बात है। और मैसेज करने वाले हैं अनिल जी छोटपुर से। और यहाँ एक और मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि स्टूडियो से बाहर निकलिए, बारिश का मज़ा लीजिए, मौसम खतरनाक हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, और मैं स्टूडियो से बाहर गई थी और बीच बीच में मैं देख भी रही हूँ, काफ़ी ख़तरनाक वाला मौसम हुआ है। और 15 मिनट मैं आप सभी के पास हूँ, आप सभी के साथ हूँ आपकी फरमाइश शो में योर वॉइस योर चॉइस में। उसके बाद मैं बाहर ही बैठने वाली हूँ और मौसम का आनंद लेने वाली हूँ। और मैसेज करने वाले हैं, नाम है इनका मनी गोपालगंज से, बहुत बहुत स्वागत है। तो मनी जी अभी आप बताइए, आप घर के बाहर हैं या घर में हैं, ज़रूर बताइएगा। और यहाँ अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं सोनी जी मेरा फरमाइश आपके कार्यक्रम में पूरा करने के लिए आपको दिल से धन्यवाद है। दिनेश विश्वकर्मा जी है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आप शो से जुड़े। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है काफ़ी बेहतरीन गाने की फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं आफ्ताब आलम जी मुंबई से, और इनको सुनना है गाना पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले कर दें, एंजॉय करिए अपने गाने को सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

आलम जी की तरफ से मैसेज है, लिख रहे हैं कि गाना बजाने के लिए थैंक यू, लेकिन ये वाला गाना नहीं था, नया वाला था, तो आपको मैसेज में ये भी बोलना था कि नया वाला वर्जन बजाइएगा। हाँ, मुझे तो यही वाला समझ में आया कि वो ओरिजिनल वाला बजा दें। खैर कोई नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सो मच जुड़े।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
0: कहाँ पर?
3: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास, गोपालगंज,
0: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
3: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
0: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835556965।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि बड़ा अच्छा लग रहा है मैडम से, आप गुनगुनाते रहिए थोड़ा और गुनगुना दीजिए। और मैसेज करने वाले हैं अताब आलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ अभी अभी रंजू जुड़ी हुई हैं गोपालगंज से और इनको सुनना है गाना ये शाम मस्तानी। तो चलिए आपकी फरमाइश प्ले कर रहे हैं और सही में शाम तो मस्तानी हुई है। इंजॉय करिए अपने गाने को सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम पे।

0: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388 9470 या 9198 8869 73।

आज के शो की आखिरी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। और हाँ, व्हाट्सएप मैसेज है, लिख रहे हैं कि वंस अगेन गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, माइंड ब्लोइंग परफेक्शन बैक टू बैक सॉन्ग, थैंक यू रिक्वेस्ट दिस सॉन्ग। और सोनू है सऊदी अरब से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। और यहाँ सिमरन जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। 3:58 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और लिख रहे हैं कि रिमझिम दी, तो जी आप बोलिए शो में जुड़े। और आप सुबह से देख रहे हैं कि व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे थे, तो आप व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करिए, इस नंबर पे अगर नॉर्मल कॉल करते हैं तो हमारे ऑफिस में पहुंचेगा। लिख रहे हैं कि हैप्पी बर्थडे जैसिका शर्मा, तो अगर आप सुन रही हैं तो सिमरन जी की तरफ से मैसेज है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे तरफ से भी पूरे रेडियो रिमझिम टीम की तरफ से जैसिका जी को आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं है, बहुत बहुत बधाई है। और बढ़ेंगे आगे, आज की शारी फरमाई से जो है ख़त्म हो चुकी है और शो की समाप्ति का टाइम है, तो चलिए जाते जाते ये अपनी तरफ से एक आखिरी गाना छोड़ के आप सभी के लिए जा रहे हैं, एंजॉय करिए। और आप सभी बताइएगा गाना कैसा लगा, और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और साथ में अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मौसम बिगड़ रही है तो उसकी भी तैयारी में रहिए आप सभी, और फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में आप सभी से। तब तक के लिए हमें दीजिए शो से जाने की इजाज़त, नमस्कार।

बापू मैं जा रही हूँ, जो मेरी मर्जी है वो आपको पसंद नहीं। अब देश आजाद है तो आपकी बेटी क्यों नहीं? मुझे मेरा साथी मिल गया है, चिंता मत करना, मैं खुश रहूंगी। आपकी सुजाता।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
6: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
8: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
5: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434-03।
9: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण, MD फिजिशियन, अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड, गोपालगंज। और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
10: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
11: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
5: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
12: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
13: रेडियो रिमझिम,
12: सुनो दिल से।

0: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
1: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
0: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
1: यहाँ उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, नेबोश और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
0: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
0: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड HP पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
2: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क 99-393-65-930।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
2: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
0: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
1: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
0: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
0: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
0: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
1: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस, और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86-034-48-652 पे।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
2: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
0: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
1: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
0: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
0: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
0: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
1: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से। All right.

0: रामू हरिया कल तैयार रही लो पराली जलाए चले के बा
1: ठीक बा भैया।
2: ए भैया एगो सूचना सुन ल, कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहा बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, न तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
0: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
2: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। एक टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियत जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
0: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावा तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
2: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। ऐसे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
0: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराए जाना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएम जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाए और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कर जानकारी दे के।
2: याद रखी, ठूठ कूड़ा ना हा, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
5: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
3: और 9097160602।
6: नमस्ते, निदेशक सीबीएसई पब्लिक स्कूल बस डीला खास गोपालगंज जितेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं। अभिभावक महोदय, आप अच्छे स्कूलों की एक सूची बनाइए, उन स्कूलों के क्लासरूम में अवश्य जाइए जिसमें आप अपने वार्ड का एडमिशन दिलाना चाहते हैं। वहाँ क्लासरूम में बच्चों के रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स स्किल, बॉडी लैंग्वेज और फेयर नोटबुक देखने का मौका मिलता है। साथ साथ आप 10th और 12th के सीबीएसई का रिजल्ट भी देखने का मौका मिलता है। यदि अबव 95% स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस एवं रिजल्ट संतोषजनक है तो आप तय कर पाएंगे कि स्कूल अच्छा है। जी धन्यवाद।
7: लास्ट एंड बोर्ड रिजल्ट 2025, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, 50 स्टूडेंट्स स्कोर्ड अबव 90% एंड नो स्टूडेंट स्कोर्ड बिलो 80%, ट्रूली शानदार अचीवमेंट।
8: लगातार तीन वर्षों 2023, 2024 और 2025 में डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन कॉमर्स स्ट्रीम देने का गौरव।
7: विजिट करें सीबीएसई पब्लिक स्कूल बस डीला खास गोपालगंज या कॉन्टैक्ट करें 7633970104।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: ठक ठक
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
5: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलता नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
6: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला, सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
5: अरे बाग चाची तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी, यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना? BSNL, जियो, एयरटेल, वी

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0970-06-575।
4: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
5: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
4: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
5: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
6: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
3: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
3: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9797146164।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99-393-65-930। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 620-3139-564।
2: भारत के 24 राज्यों में 160 से अधिक शहरों में 280 से ज्यादा स्कूल्स के साथ एजुकेशन में एक ट्रस्टेड नेम बिरला।
0: अब वही लेगेसी, वही एक्सेलेंस आ गया है आपके शहर गोपालगंज में।
2: इंट्रोड्यूसिंग बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल, एडमिशंस आर नाउ ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 7।
0: और खास बात, प्ले ग्रुप के लिए लिमिटेड पीरियड फ्री एडमिशन।
2: मॉडर्न एजुकेशन विथ AC क्लासरूम्स, डिजिटल लर्निंग, कंप्यूटर एंड साइंस लैब्स, लाइब्रेरी एंड सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी।
0: बिकॉज लर्निंग इज बियॉन्ड क्लासरूम्स, म्यूजिक, डांस, योगा एंड जूडो क्लासेस फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऑल टीचर्स आर BEd qualified and follow CBSE guidelines, ensuring quality education.
2: Visit today, Yadopur Road, Sareya Ward No. 1, Shambhu Path, Saraswati Talkies ke paas, Gopalganj.
0: Call now 775-994-9440 or 775-994-9441.
2: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
0: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
2: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है, तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
0: यहाँ उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, NEBOSH और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
2: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
2: पता, छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड, HP पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज।
3: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: रेडियो रिमझिम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा और हमारे एन्यूमरेटर्स हो सकता है कि कुछ प्रेजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये 2 फेजों में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, चूंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पे ज्यादा फोकस करें ताकि सही से जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पे जो बनने वाली हो सही से ही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज,
2: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
1: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
2: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
1: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
2: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: उत्तर बिहार का गौरव,
5: सारण प्रमंडल की शान,
4: गोपालगंज की धड़कन
5: और अपने भाषा की पहचान,
4: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
5: सुनो दिल से।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत नी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
6: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
7: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
8: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
9: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
10: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
6: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
10: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
3: कॉल करे 87894 18744।
11: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4।
12: और एम जिम
11: सुनो दिल से।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: रामू हरिया, कल तैयार रहिए लो, पराली जलाए चले के बा।
7: ठीक बा भैया।
8: ए भैया, एगो सूचना सुनला हा, कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दिया जा रहा बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लागी।
9: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
8: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। 1 टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
9: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावो तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
8: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली। इससे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसा पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
9: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाई और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कर लू भाई जानकारी देके।
8: याद रखी, ठूठ कूड़ा ना हा, खेती के गहना हा, एकरा के जराई मत, माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
10: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
11: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
12: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
13: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
14: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
13: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
11: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
15: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
16: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
17: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
13: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003, 62042434003।
18: Now pick your phone up.
19: Hello?
18: Pick it up, pick it up.
19: Hello?
18: Now pick your phone up.

0: हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी रेडियो दोस्त आरजे सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस के कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश को।
1: गुड मॉर्निंग मैम।
2: जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: थैंक यू मैम, कैसी हैं?
2: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ।
2: तो क्या हो रहा था अभी?
1: बस काम हो रहा है। गाना सुनना था।
2: जी बिल्कुल, बता दीजिए गाने का नाम।
1: अदनान सामी का गाना है, तेरा चेहरा जब नजर आए।
2: और सुनवाना भी है?
1: हाँ, वाइफ को डेडिकेट है ये गीत।
2: अच्छा, अच्छा।
1: और बाकी सारे लिसनर्स को।
2: ओके चलिए, तो प्ले करे गाना।
1: नाम नहीं पूछिएगा।
2: अनिल बात कर रहे हैं छोटपुर से।
1: हाँ अनिल बोल रहे हैं
2: जी।
1: ठीक है, तो प्ले कर दीजिएगा।
2: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सोने कॉल किया।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: हाँ मैडम, ठीक है, गाना सुनना है।
0: जी गाना सुनाएंगे, आप अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से।
1: मेरा नाम है मनोज कुमार।
0: जी कैसे हैं मनोज जी?
1: ठीक है
0: जी। और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: तो मुंगेर से बात कर रहे हैं, हवेली खड़गपुर।
0: अच्छा,
1: राम गोबड्डा।
0: तो कौन सा गाना सुनना है आज आपको?
1: गाना सुना दीजिए आप शारदा सिन्हा का, से विवाह गीत, अभी विवाह का टाइम चल रहा है ना, शारदा सिन्हा का विवाह।
0: जी जी, और सुनवाना भी है?
1: सुनवाना है सरिता देवी, बरखा कुमारी और आपको।
0: जी चलिए, तो प्ले कर रहे हैं गाना। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय पर।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
1: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
2: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी। अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
2: कॉल करें 87894 18744।
5: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
6: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
5: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
6: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
5: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
6: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
7: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
5: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
9: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
10: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
9: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101 87952। नियम और शर्तें लागू।
1: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
2: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
1: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
2: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, नेबोश और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
1: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
1: पता, छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड, HP पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज।
2: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, AC हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम,
1: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। CBSE पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक, सेशन 2026-27 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
2: यहां मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
1: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और सीसीटीवी कैमरा की सुविधा।
2: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता: हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 800-222-1969 या 911-7018-350।
11: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
13: मैं अहमद अली, सारे आवाज नंबर 1 है।
12: ठीक, हाल चाल अहमद जी?
13: ठीक बस जी, अपन बताए बारिश में कैसा लागता?
12: अरे का बताए कैसा लागता, जैसे अंदर पाँव धनी तले बारिश तेज हो गयी, खुला खतर वही बीच में आनी है।
13: भाग मनाई की पहुँच गयी नहीं है, न तो आइयो ना कोई दिन
12: न। हमको तो ऐसा ही लग रहा है की हम आज नहीं जा पाए, क्या की निकले के टाइम में ही बारिश आ गया।
13: हमारा नंबर तो 2 बार लागल है लेकिन उठानी है ना।
12: अरे जैसे आके चालू कर ले रही अभी बीच में आई रही, फोन में चार्ज ना रहे, लाइट ना रहे तो चार्ज ना भई रहे।
13: हम कनी हमरा पर अपना जुलुम का है हो तब पूछे मम्मी से।
12: ना ना जुलुम नहीं था, होते ना चार्ज ना रहे और बात करती तो तुरंत मोबाइल बैठ जाये।
13: कई अफसरी के मोबाइल से फिर लगानी है, हम अपना मोबाइल से लगावत लगावत है
12: ना
13: लागल है। 126 बार डायल कैले बनी।
12: अच्छा अच्छा, चले लागल बता दी।
13: आज गाना तो सुनवा दी नजायज फिल्म से, बरसात के मौसम में तो नहाई के आलम में। सुनाला के बाद सबसे पहले कमरान रशीद के, राघव जी के, दिलीप भाई के और जे भी रेडियो रिमझिम जहाँ से भी सुना था सब करा के। आज कहिया बाजी गनवा? गनवा कब बाजी? आज की का?
12: आज बाजी, आज शाम के 5 बजे के बीच में आई।
13: ठीक बा
12: जी,
13: चलिए शुक्रिया
12: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
13: जुम्मा मुबारक सब करा के।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: रेडियो रिंगम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप

0: आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा, और हमारे इन्वेटर्स हो सकता है कि कुछ प्रिजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये दो फेज में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, चूंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी इन्वेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पर ज्यादा फोकस करें ताकि सही सही जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पर जो बनने वाली हो सही सही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग,
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
4: क्यों, क्या हुआ है?
3: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
4: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
3: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
5: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
6: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
7: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
6: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
7: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444। राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434068 पे।
10: Now pick it up, pick it up.
11: Hello.
10: Now pick your phone up.
11: Hello.
10: Pick it up, pick it up.
11: Hello.
10: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4।
2: हम किस्मत बोल रहे हैं चंद्रा से।
1: जी क्या हाल चल रहा है दादाजी?
2: मैं ठीक बाबू। ठीक बानी सर, लगे ठीक बानू?
1: जी जी बिल्कुल बढ़िया बानी।
2: अच्छा बारिश हो रहा बा?
1: जी काफी तेज बारिश हो रहा बा। तो खाना पीना हो गया बा?
2: हाँ खाना पीना हो गया, बारिश हो रहा।
1: तो बता दी कौन गाना सुने के बा?
2: कौन सुनी लिया?
1: अच्छा हाँ कव्वाली तो सुने नहीं, तो बता दे कव्वाली के नाम।
2: अपना मन से बोलिए बजा दिए पूरा।
1: अच्छा ठीक बा। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें कॉल करने।
3: सुकून मिलता है बुझाने में

0: हाँ जी, मैं लाल बाबू सिंह नवादा शहर भोजपुर से बात कर रहा हूँ
1: जी। क्या हाल चाल है लाल बाबू जी?
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे।
1: जी बिल्कुल बढ़िया है
0: जी। हम गाना सुनना चाहते हैं, राना जी माफ करना
1: जी, और सुनवाना भी है
0: जी। सभी रेडियो रिंजिम के श्रोता को सुनाना चाहता हूँ
1: जी जी। और क्या करते हैं आप? सो मैं पहली बार कॉल किए हैं
0: जी। मैं एक्सेलेटर मशीन चलाता हूँ, पोकलेन किसी भाषा में बोले तो पोकलेन चलाता हूँ। हैदराबाद में आंध्र प्रदेश में हूँ।
1: अच्छा अच्छा
0: जी। यहीं से रेगुलर रिंजिम को सुनते रहता हूँ।
1: मतलब हेलो माय चॉइस में कॉल आपका पहली बार है
0: जी? कॉल पहले भी किए हैं लेकिन एक दो साल पहले किए।
1: अच्छा,
0: अभी तक नहीं किया था कुछ दिन।
1: चलिए तो प्ले करें गाना आपकी।
0: जी जी जी। ओके धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल किया।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: नमस्ते, निदेशक सीबीएसई पब्लिक स्कूल बस डीला खास गोपालगंज जितेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं। अभिभावक महोदय, आप अच्छे स्कूलों की एक सूची बनाइए, उन स्कूलों के क्लासरूम में अवश्य जाइए जिसमें आप अपने वार्ड का एडमिशन दिलाना चाहते हैं। वहाँ क्लासरूम में बच्चों के रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स स्किल, बॉडी लैंग्वेज और फेयर नोटबुक देखने का मौका मिलता है। साथ साथ आप 10th और 12th के सीबीएसई का रिजल्ट भी देखने का मौका मिलता है। यदि अबव 95% स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस एवं रिजल्ट संतोषजनक है तो आप तय कर पाएंगे कि स्कूल अच्छा है। जी धन्यवाद।
4: लास्ट 10th बोर्ड रिजल्ट 2025, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, 50 स्टूडेंट्स स्कोर्ड अबव 90% एंड नो स्टूडेंट्स स्कोर्ड बिलो 80%, ट्रूली शानदार अचीवमेंट।
5: लगातार तीन वर्षों 2023, 2024 और 2025 में डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन कॉमर्स स्ट्रीम देने का गौरव।
4: विजिट करें सीबीएसई पब्लिक स्कूल बस डीला खास गोपालगंज या कॉन्टैक्ट करें 7633970104।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
10: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
10: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
11: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
12: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
11: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
12: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
11: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
13: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
11: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
14: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
15: Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello.

0: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: नमस्कार
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगन 90.4 FM में।
1: कोई बहुत बहुत स्वागत है।
2: लाल बहादुर बात कर रहे हैं?
1: हाँ जी।
2: कैसे हैं?
1: ठीक है मैम भाई, इधर तो बारिश हो रहा है।
2: अरे पूछिए मत, कितना बारिश हो रहा है इधर।
1: आपका तरफ हो रहा है उधर?
2: बहुत तेज
1: जी। मौसम कुछ ओके, कुछ इधर उधर हो रहा है, चारों तरफ हो रहा है कि नहीं? 18 जून का ऐसे तो मानसून आता है नियम के अनुसार से।
2: जी जी।
1: और पहले ही बारिश दशक दे चुके हैं, वर्षा हो रही है, इसके ख्याल में आप लोग क्या विचार है, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? बारिश वाला गाने को सुना दीजिए।
2: बारिश वाला?
1: हेलो
2: जी जी।
1: बरसात के मौसम में चलेंगे सुनाई के वाले में। हेलो, हमारे जितने भी स्वच्छता अभियान से जुड़े हैं ग्रामीण से और शहरी निगम चाहिए और हमारे भारत वर्ष में
2: गाना
1: जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोने
2: कॉल किया।

0: नमस्ते,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग जिम में।
0: क्या हाल चाल जी?
1: बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: मैं भी ठीक
1: हूँ। तो क्या हो रहा था?
0: पूरा अरे बारिश में बैठे हैं।
1: तो गाना कौन सा सुनना आज आपको?
0: गाना है सवेरे संयोजन बजरिया, भक्ति गाना है
1: जी। और सुनाना भी है?
0: बजरिया है, रूबी है, कुन्मा है और रजेश संजय है।
1: चलिए तो प्ले करे गाना आपकी।
0: ठीक है, सोनी बोल रहे हैं क्या?
1: जी जी।
0: नमस्ते
1: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल किया।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
0: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87 8 94 18 7 44।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 309 45 651 या 97 097 06 575।
9: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
10: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
9: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
10: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोप्राइटर सोनू जी, संपर्क करें 99 399 66 999।
11: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
12: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
13: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
12: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
0: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87 8 94 18 7 44।
14: है तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो। बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो
16: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टिंजन में।
15: सुनी जी, पहचाना क्या है?
16: जी गोपाल रॉय।
15: फोन से तो आपसे बहुत दिन हो गया, बात नहीं हो रहा है।
16: जी जी, कॉल पे बात नहीं हो रही है। शो में आते हैं आप?
15: हाँ बोलिए।
16: बोले शो में आते हैं, लाइव शो में।
15: वही तो, वो प्रोग्राम तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। हाँ, घर में सभी सुनते हैं। अच्छा, आप कैसे हैं? बोलिए।
16: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे
15: हैं? अच्छे। तो अभी तो मैं दुकान पे हूँ, दुकान पे गाना सुन रहे हैं। फोन में इसलिए फोन कर रहे हैं। आपका फोन ये लाइन कभी कभी बंद रहता है क्या? बोलिए तो।
16: ये 3 दिन सप्ताह में खुलता है 11 बजे से, बाकी दिन बंद रहता है
15: ना। अगला एक हफ्ते के आगे ना, वही हफ्ते में एक दिन बंद ही था।
16: जैसे सोमवार को खुलता है 11 बजे से और 12:30 बजे तक चालू रहता है, फिर बंद हो जाता है ये फोन।
15: अच्छा अच्छा अच्छा।
16: और फिर उसके बाद खुलेगा बुधवार को।
15: अच्छा अच्छा अच्छा।
16: फिर उस दिन 1.5 घंटा चालू रहेगा 11 से 12:30, फिर बंद रहेगा। और फिर शुक्रवार को खुलेगा 11 से 12:30।
15: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा।
16: टाइमिंग रिकॉर्डिंग का, वो अपना टाइम में ही खुलेगा, बाकी टाइम बंद रहता है।
15: अच्छा अच्छा। आपका प्रोग्राम तो पॉपुलर हो रहा है, बहुत अच्छा लगता है, सभी बोलते हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है आपका।
16: और भी कोई सुनता है क्या वहाँ?
15: हाँ, मेरा घर पे सुनते हैं, मेरा दुकान पे आस पास में कोई हुआ है ना, वो भी लोग सुनते हैं।
16: अच्छा।
15: तो बोल रहे की आजकल तो किशोर कुमार का गाना बजा दीजिएगा।
16: जी बता दीजिए, किशोर कुमार का कौन सा गाना सुनिएगा?
15: राजपूत मूवी का है ना, मेरे संगे संगे आए तेरी, वो गाना है।
16: जी जी,
15: बजा दीजिएगा
16: और डेडिकेट भी करिएगा।
15: हाँ, आपको, आपको रिंगजिंग परिवार के सभी लिसनर्स को डेडिकेट करते हूँ, सभी सुन रहे
16: हैं।
15: अच्छा अच्छा, ये गाना कब सुनेंगे?
16: आज शाम को आज या कल में 5 बजे से 7 बजे के बीच में कभी भी आ जाएगी, क्योंकि आज रिकॉर्डिंग हो रही है, आधा आज चलेगा और आधा कल चलेगा।
15: ओ अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ।
16: तो अगर आज आपका गाना 5 से 7 के बीच में शाम को नहीं बजा तो इसका मतलब है कल पक्का है कि बजेगा।
15: ओ अच्छा अच्छा, ठीक है। गाना तो रेडियो में गाना सुनने में मजा अलग होता है ना।
16: और इसका रिपीट चलता है 9 से 11 के बीच में।
15: क्या बोले?
16: जैसे शाम को 5 से 7 के बीच में अगर आप नहीं सुन पाते हैं,
15: अच्छा,
16: तो नेक्स्ट डे आप 9 बजे से 11 बजे के बीच में सुबह सुन सकते हैं।
15: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा,
16: रिपीट चलता है।
15: अच्छा अच्छा, ठीक है सर जी, ठीक है। आपका पढ़ाई चल रहा है क्या?
16: जी जी, अभी तो चल रही है।
15: अच्छा अच्छा, ठीक है।
16: बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: प्रसाद क्लिनिक,
5: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
4: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
5: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
6: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
7: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
6: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
6: संपर्क 99-393-65-930।
9: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
6: कहाँ पर?
9: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल छवही खास गोपालगंज,
6: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
9: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
6: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
9: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
8: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
8: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज।
6: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
8: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
6: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
8: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
6: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
10: बात आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो
12: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीत में, बहुत बहुत प्यार है हमें।
11: तो मैडम जी
12: नमस्ते, तो कैसी है नेहा जी बताइए।
11: अच्छा है, आप बताए कैसे, नाश्ता हो गया।
12: जी हाँ हो गया है, आपका हुआ।
11: हाँ हाँ हो गया।
12: तो अभी क्या हो रहा था।
11: अभी तो आपके पास फोन लगाया है तो कुछ बिजी बता रहा था, तभी लग गया।
12: तो आज गाना कौन सा सुनना है आपको।
11: गाना सुनना है लैला ने कहा मजनू रे गाना ही,
12: और सुनवाना भी है
11: जी आपको। आज इतना रेडियो रंजीत में आ रहे हैं, दोस्त सब सुनता है उसको सभी के साथ।
12: चलिए तो प्ले करेगा ना आपके।
11: जी मैडम जी नमस्ते।
12: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोना कॉल की।

0: के 24 राज्यों में 160 से अधिक शहरों में 280 से ज्यादा स्कूल्स के साथ एजुकेशन में ट्रस्टेड नेम बिरला।
1: अब वही लेगेसी, वही एक्सेलेंस आ गया है आपके शहर गोपालगंज में।
0: इंट्रोड्यूसिंग बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशंस आर नाउ ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 7।
1: और खास बात, प्ले ग्रुप के लिए लिमिटेड पीरियड फ्री एडमिशन।
0: मॉडर्न एजुकेशन विथ AC क्लासरूम्स, डिजिटल लर्निंग, कंप्यूटर एंड साइंस लैब्स, लाइब्रेरी एंड सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी।
1: बिकॉज लर्निंग इज बियॉन्ड क्लासरूम्स, म्यूजिक, डांस, योगा एंड जूडो क्लासेस फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऑल टीचर्स आर BEd qualified and follow CBSE guidelines, ensuring quality education.
0: Visit today, Yadopur Road, Sareya Ward number 1, Shambhu Path, Saraswati Talkies ke paas, Gopalganj.
1: Call now 775-994-9440 or 775-994-9441.
2: रेडियो रिमझिम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं।

0: कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा और हमारे एन्यूमरेटर्स हो सकता है कि कुछ प्रिजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये 2 फेज में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, चूंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पे ज्यादा फोकस करें ताकि सही से जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पर जो बनने वाली हो सही सही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
2: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज
3: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714861 64।
4: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलता नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु ओकर का भइल।
5: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
4: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
6: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
7: रामू हरिया, कल तैयार रहिए लो पराली जलाए चले के बा।
8: ठीक बा भैया।
9: ए भैया, एगो सूचना सुनला हा, कृषि विभाग द्वारा एगो सूचना दियल जा रहल बा कि खेत के अवशेष यानी पराली नहीं खे जरावे के, ना तो कृषि विभाग के कोनो योजना के लाभ ना मिली और ऊपर से जुर्माना भी लगी।
7: ऐसन का है, जरावला से काहे मना होता।
9: फसल के अवशेष जरला से हमनी के माटी, पर्यावरण और हमनी के खुद के स्वास्थ्य के बहुत नुकसान होता। फसल के अवशेष के जरे से माटी के उर्वरता कम हो जाला, जरूरी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाला और पर्यावरण में हानिकारक गैस निकलेला। एक टन ठूठ जरला से 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड नियर जहरीला गैस वायुमंडल में निकलेला।
7: अरे हमरा तो जानकारी ना रहला कि एकरा से हमनी के पर्यावरण पर इतना नुकसान बा, लेकिन बतावो तू हमरा के एकर बढ़िया विकल्प का सरकार बतावता।
9: एकर बढ़िया विकल्प ये बाटे कि फसल के अवशेष के जराए के बजाय ओकरा के माटी में ही मिला ली, इससे हमनी के माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसन पोषक तत्व मिली, जोना से पैदावार में बढ़ोतरी हुई।
7: अच्छा, तो अब से ठूठ के हमनी के जराएब जा ना, एकरा के हमनी के माटी में मिलाएब जा, ताकि हमनी के माटी के उर्वरता बढ़ जाई और हमनी के पर्यावरण भी सुरक्षित रही। बहुत अच्छा कैलू भाई जानकारी दे के।
9: याद रखी, ठूठ कूड़ा नहा, खेती के गहनाहा, एकरा के जराई मत माटी में मिलाई। जिला कृषि विभाग गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी।
8: Now pick it up,
10: hello.
8: Now pick your phone up,
10: hello.
8: Pick it up,
10: hello.
8: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: प्रणाम मैडम।
2: प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: जी मैडम।
2: जी, नाम बता दी आपको?
1: सुनने के बाद महेश शर्मा।
2: जी जी, तो कौन गाना सुने के बता दी?
1: गाना सुने के बाद दुपट्टा मौसी के मौसी वाला गाना ना निकल हुआ।
2: कौन गाना?
1: दुपट्टा मौसी के निकल हुआ गाना ना।
2: दुपट्टा मौसी के हमके ना पता बा, गाना बढ़िया बा, सुन ले बने?
1: सुन ले बने ललका दुपट्टा मौसी के।
2: अच्छा, और सुनवाए के भी बा?
1: जी जी, गाना सुनने।
2: चलिए ठीक बा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कॉल करूँगी।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 94.4 FM में।
1: नमस्ते मैडम
0: जी, कैसे हैं?
1: ठीक है, अपना सुनाइए।
0: जी मैं भी बढ़िया हूँ, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: संजय शाह, फुली डुमर बिहार से बोल रहे हैं, बांका जिला।
0: जी क्या हाल चल रहे?
1: ठीक है।
0: तो क्या हो रहा था?
1: गाना सुनना है।
0: जी बिल्कुल,
1: साड़ी का मोतिया झड़ी के।
0: जी बिल्कुल सुनाएंगे गाना, नाम बता दीजिए गाने का।
1: संजय साड़ी का मोतिया झड़ी के, भोजपुरी सॉन्ग है।
0: जी जी, और सुनवाना भी है?
1: हाँ आपको सुनवाना है, और जाके जो है जितना श्रोतागण है सबको सुनाना है।
0: चलिए तो प्ले करें गाना आपकी।
1: चले कीजिए। ठीक
0: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल किए।

0: तो दोस्तों, आप लोग अभी कार्यक्रम हेलो माय चॉइस को मेरे साथ यानी आरजे सोनी के साथ सुन रहे थे। अब समय हो चुका है इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो मुझे दीजिए अब जाने की इजाज़त और ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो रिंजन 90.4 FM। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, नमस्कार।
1: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
2: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
1: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत नी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
3: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
7: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
8: कहाँ पर?
7: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, छवही खास, गोपालगंज,
8: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
7: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
8: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835556965।
9: ठक ठक।
10: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
11: अच्छा मिला ही नहीं।
10: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
12: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
10: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
12: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
11: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
10: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
11: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
12: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
13: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
14: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन डॉक्टर अनुज मिश्रा जी। ब्रेन और रीढ़ की बीमारियां नाम सुनते ही डर पैदा कर देती हैं, लेकिन सही जानकारी, सही जगह पे इलाज और समय पर इलाज इस डर को काफी हद तक कम कर सकता है। आज की बातचीत में हम इन्हीं बातों को आसानी से समझेंगे। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे इस एसएम रेडियो पे।
9: नमस्कार अभय जी, मेरा नाम डॉक्टर अनुज मिश्रा है, मैं न्यूरो सर्जन हूँ और मेरा हॉस्पिटल है ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, फातिमा रोड, पादरी बाजार, गोरखपुर में।
14: सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे श्रोताओं को जो विभिन्न ग्रामीण इलाकों और शहरी इलाकों से जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी शुरुआती पढ़ाई कहाँ कहाँ से हुई है।
9: धन्यवाद अभय जी मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। मैं बेसिकली बनारस का रहने वाला हूँ, मेरी शुरुआती शिक्षा केंद्रीय विद्यालय वाराणसी से ही हुई है और उसके बाद मैंने MBBS अपना BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से 1998 में शुरू किया है और MS जनरल सर्जरी भी BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से है और फिर न्यूरो सर्जरी में मैंने DNB किया है जो पारस हॉस्पिटल गुरुग्राम से किया है। शुरुआत में मैंने करीब 6 साल एज अ जनरल सर्जन गोरखपुर में प्रैक्टिस की है, उसके बाद 2019 में मैं DNB न्यूरो सर्जरी करने गुरुग्राम गया था और 2023 से एज अ न्यूरो सर्जन मैं गोरखपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और इस दौरान MS जनरल सर्जरी करने के बाद करीब 2.5 साल मैंने मैक्स हॉस्पिटल गुरुग्राम में और मैक्स हॉस्पिटल साकेत नई दिल्ली में काम किया है और DNB न्यूरो सर्जरी करने के बाद मैंने पारस हॉस्पिटल में कुछ दिन काम किया और उसके बाद करीब 6-7 महीने करीब लोक नारायण जयप्रकाश हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में काम किया।
14: आपने बहुत बढ़िया से अपने पूरे एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ साझा किया। एक क्वेश्चन जो दिमाग में आता है सबसे पहले कि आपने MBBS किया, उसके बाद MS जनरल सर्जरी और फिर न्यूरो सर्जरी जैसी कठिन विषय चुनने का आपने फैसला किया, इसके पीछे क्या आपका मन था और कैसे आपने ये निश्चय किया कि आप न्यूरो सर्जरी को चुनने वाले हैं?
9: देखिए, जब हम MBBS कर रहे थे तो उस समय हमारे एक न्यूरोलॉजी के टीचर होते थे, उन्होंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए थे, इसकी वजह न्यूरोलॉजी में एक इंटरेस्ट तो जगा ही था। बाद में जब जनरल सर्जरी कर रहे थे तो हमें कुछ न्यूरोलॉजी के केसेस या न्यूरो सर्जरी के कहीं केसेस देखने को मिले और वहां उन केसेस को मैनेज करते हुए मेडिकल कॉलेज में एक इंटरेस्ट था मन में कि न्यूरो सर्जरी किया जाए, तो उसके बाद फिर कुछ समय के बाद हम न्यूरो सर्जरी की पढ़ाई करने गए और इसमें देखा जाए तो हमारे समाज में न्यूरो सर्जरी या न्यूरोलॉजी को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं और काफी नेग्लेक्टेड फील्ड है, अक्सर लोग सही डॉक्टर के पास पहुंच नहीं पाते, जागरूकता का अभाव है, तो मुझे लगा कि इसी फील्ड में काम किया जाए ताकि कुछ पीड़ित लोगों की सेवा की जा सके।
14: बहुत अच्छी आपकी सोच रही है और हम आपसे जानना चाहेंगे आम भाषा में आप हमें ये समझाइए कि न्यूरो सर्जन क्या होता है, वह किन बीमारियों का इलाज करता है।
9: तो सामान्य भाषा में अगर समझने की कोशिश की जाए तो न्यूरो सर्जन एक न्यूरोलॉजिस्ट होता है जो ब्रेन, नस और रीढ़ की हड्डी, स्नायु तंत्र का बेसिकली ऑपरेशन करते हैं। तो हम बीमारियों के अर्ली स्टेज में दवा से ठीक करने की कोशिश करते हैं और बाद के स्टेज में जब दवाओं का असर कम हो जाता है या दवा से सुधार होने की संभावना कम रहती है तो ऑपरेशन के द्वारा इलाज करते हैं। एक न्यूरोसर्जन बहुत सारी बीमारियों का इलाज करता है जिसमें ब्रेन रिलेटेड बीमारियां जैसे कि ब्रेन ट्यूमर हुआ, एक्सीडेंटल केसेस में ब्रेन में कोई चोट लगी हो, खून का थक्का जम गया हो, स्ट्रोक या लकवा या फाली जिसको कहते हैं, स्पाइन के ट्यूमर मतलब रीढ़ की हड्डी के ट्यूमर जो कि नसों को इफेक्ट कर रहे हैं, स्पाइन का TB, फिर वहां से निकलने वाली नसों से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं उनका इलाज भी हम करते हैं जिसमें स्लिप डिस्क हो गया, शाटिका हो गया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई, नसों पे दबाव पड़ना, इन सारी चीजों का एक न्यूरोसर्जन इलाज करता है।
14: जब भी हमारे शरीर में नसों की समस्या होती है या फिर दिमाग से जुड़ी कुछ समस्याएं होती हैं तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन, आखिर ये दोनों में मतलब अंतर आम आदमी कैसे समझे, इसे आप बताएं।
9: देखिए, न्यूरोलॉजिस्ट मतलब स्नायु तंत्र और दिमाग की बीमारियों का दवा से इलाज करने वाले डॉक्टर और न्यूरोसर्जन मतलब ब्रेन, स्पाइन और पेरिफेरल नर्व मतलब स्नायु तंत्र का ऑपरेशन और दवा दोनों से इलाज करने वाले, ठीक है। तो एक इंटरेक्टिंग टाइप का फील्ड है, न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन को एक दूसरे की आपस में जरूरत पड़ती रहती है और कुछ बीमारियां कॉमन है जिनका शुरुआती स्टेज में दवा से इलाज होता है और जब दवा का असर आना बंद हो जाता है या बीमारी बढ़ चुकी होती है तो ऑपरेशन द्वारा इलाज होता है। तो एक ओवरलैपिंग टाइप का फील्ड है, आप किसी के पास भी जा सकते हैं, तो न्यूरोलॉजिस्ट होंगे अगर उनको लगेगा कि न्यूरोसर्जन की जरूरत है तो वो न्यूरोसर्जन के पास भेज देंगे, या अगर न्यूरोसर्जन के पास आप जाते हैं और न्यूरोलॉजिस्ट की जरूरत है तो वो आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेज देंगे।
14: सर, जो आपके पास मरीज आते हैं, आप हर दिन
15: सैकड़ों मरीजों को देख रहे हैं, तो इनमें से कौन कौन सी शिकायतें या समस्याएं जो आम है और सबसे ज्यादा आपको दिखाई देती है?
9: तो मेरे पास इस समय, क्योंकि ठंडी का मौसम है और इस समय लगवा फालिज की शिकायत बहुत बढ़ जाती है, तो इस समय मेरे पास फालिज से रिलेटेड लोग ज्यादा आ रहे हैं। ओवरऑल स्लिप डिस्क या शाटिका की परेशानी लोगों में ज्यादा है, और ये आजकल देखा गया है कि जवान लोगों में भी ये दिक्कत देखने को मिल रही है लाइफस्टाइल और ऑक्यूपेशन की वजह से। तीसरा प्रमुख जो लक्षण लेकर के मेरे पास लोग आते हैं वो सर दर्द, जो दवाओं से ठीक नहीं हो रहा है।
15: मेरा अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है सर कि जब ब्रेन या स्पाइन की सर्जरी का नाम लोग सुनते हैं तो अक्सर क्या होता है, डर जाते हैं और वो अलग अलग तरह के ख्यालात अपने दिमाग में बनाने लगते हैं। उनमें से कई मरीज से आप भी मिलते हैं, उनमें से सबसे आम डर क्या होता है और आप उन्हें कैसे समझाते हैं?
9: देखिए, सर्जरी या ऑपरेशन तो वैसे ही थोड़ा डरावना शब्द होता है, कोई भी डर जाता है कि अगर उसे ऑपरेशन के बारे में बोल दिया जाए। लेकिन स्पेशली जो स्पाइन की सर्जरी है उसके बारे में सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि ये सक्सेसफुल नहीं होती। अक्सर लोग ये कहते हैं कि किसी का ऑपरेशन हुआ था उसके बाद से वो चल फिर नहीं पाता। तो किसी भी प्रोसीजर की सक्सेस डिपेंड करती है कि बीमारी किस हद तक बढ़ चुकी है, और अक्सर हम ये बताने की स्थिति में होते हैं कि आप क्या सुधार एक्सपेक्ट करेंगे और क्या चीज नहीं सुधरेगी, या किस हद तक सुधार आएगा या कितने दिनों में सुधार आएगा। तो बेसिकली ये सारी चीजें हम किसी भी ऑपरेशन के पहले मरीज और उसके जो सहयोगी होते हैं, अटेंडेंट होते हैं, उनसे ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं और उनको पहले कन्विंस करते हैं, फिर उसके बाद ही ऑपरेशन करने की तरफ प्रोसीड किया जाता है।
15: हमारा अगला प्रश्न जो है वो जुड़ा हुआ है एक टर्म जो मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा यूज होता है, गोल्डन आवर से। जब दिमाग की चोट होती है या रोड पे एक्सीडेंट होता है तो उस केस में गोल्डन आवर बताया जाता है। ये आखिर क्या है, इसका कितना महत्व है और परिवार के लोगों को इस घंटे में क्या क्या करना चाहिए?
9: देखिए अभय जी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो होता है वो बहुत ही सीरियस कंडीशन है, और उसमें केवल ब्रेन या स्पाइन में ही चोट नहीं हो सकती है, उसमें शरीर के किसी भी अंग में चोट लग सकती है। तो गोल्डन आवर वो पहला घंटा है चोट लगने के बाद जो बहुत ही क्रूशियल होता है। क्रूशियल इस मामले में होता है कि इस दौरान जो पेशेंट की हेल्प हम कर सकते हैं मेडिकली या जनरली, उससे काफी हद तक डिसाइड होता है कि इलाज का प्रोग्रेशन या मरीज का फाइनल आउटकम क्या होगा। तो पहली चीज जो हमें ध्यान देने की होती है वो एयरवे होता है, मतलब मरीज के सांस में कोई रुकावट ना हो। अगर वो सांस नहीं ले रहा है या उसको रिकवरी पोजीशन में लिटा दिया जाए, अगर कर सकते हैं तो उसको करवट में लिटा दें, या गर्दन या पीठ में चोट लगी है तो फिर उसको हिलाए ना, वैसे ही रहने दें, बस ये देखें कि वो सांस ठीक से ले रहा है कि नहीं, उसके मुंह में कुछ डालने की कोशिश ना करें या उसे कुछ खिलाएं पिलाएं ना, और तुरंत एम्बुलेंस कॉल करके तुरंत उसको डेडिकेटेड ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट करें जहां पर न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, इमरजेंसी मेडिसिन के डॉक्टर उपलब्ध हों।
15: डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि आप अपने क्लिनिक का पूरा पता और हेल्पलाइन नंबर या ऐसा नंबर दे जो 24 घंटे उपलब्ध हो और हमारे श्रोता उस पे कॉल करके या फिर उनके परिजन जो भी हो अगर इमरजेंसी में कुछ सहायता चाहिए हो तो वो ले सकें।
9: जी अभय जी, मैं डॉक्टर अनुज मिश्रा हूँ, मैं न्यूरोसर्जन हूँ और मेरे अस्पताल का नाम है ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो फातिमा रोड पादरी बाजार गोरखपुर में सिचुएटेड है, और यहाँ का इमरजेंसी मोबाइल नंबर है 9170856587। ये नंबर 24 घंटे चालू रहता है, किसी भी इमरजेंसी नंबर लगाना, परामर्श लेना इमरजेंसी में, आप इसके लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
15: डॉक्टर साहब, आपका मेडिकल सफर काफी लंबा और प्रेरणादायक रहा है। अगर श्रोताओं को आसान शब्दों में समझाएं, किन लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?
9: देखिए अभय जी, पहले तो नस से या स्नायु तंत्र से रिलेटेड कोई भी ऐसे लक्षण नहीं होते हैं जिनको नजरअंदाज करने जैसा सोचना भी चाहिए। लेकिन अगर कुछ लक्षण हैं जो लगातार बने हुए या रोज रिपीट हो रहे हैं, जैसे सुबह उठते ही सर में दर्द होना, आंखों के पीछे भारीपन लगना या निचली उल्टी जैसा आना या दौरे, इन सब चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये गंभीर बीमारी की तरफ संकेत कर सकते हैं। कुछ और लक्षण हैं जैसे हाथ या पैर का सुन्न पड़ जाना, काम नहीं करना, ये फालिज का लक्षण हो सकता है। फिर पैरों में झंझनाहट, या तो वो एक पैर में हो रही है या दोनों पैरों में हो रही है, या तो वो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से या किसी क्रॉनिक बीमारी की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी का लक्षण हो सकता है, या पैरों में अकड़न, इम्बैलेंस, पीठ में और कमर में दर्द, ये रीढ़ की जो नस होती है उसकी गंभीर बीमारी की ओर संकेत कर सकता है। तो अगर आपको ऐसे कोई लक्षण आते हैं तो आपको देर ना करते हुए तुरंत किसी न्यूरोसर्जन से जरूर मिलना चाहिए।
15: बहुत अच्छी जानकारी सर। मेरा अगला प्रश्न ये है कि जो कमर दर्द है या फिर जो रीढ़ की हड्डी में दर्द है, तो इनमें अलग अलग तरह के केस होते हैं जिनमें कई में ऑपरेशन जरूरी हो जाता है और कुछ मामलों में सिर्फ दवाइयों से इलाज हो जाता है। तो ऐसे कुछ अगर आपके पास केस हैं तो उनका कुछ जानकारी दें हमें।
9: देखिए, कमर दर्द या स्पाइन से रिलेटेड बीमारी के कुछ प्रमुख कारण हैं इन्फेक्शन, कैल्शियम की कमी की वजह से दर्द होना, स्लिप डिस्क या शाटिका जिसको कहते हैं, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से न्यूरोपैथी। तो अक्सर ये केसेस ऐसे होते हैं जिसमें शुरुआती समय में दवाओं से ही ठीक किया जा सकता है, और इसके लक्षण होते हैं पैरों में सुन्नता, पीठ में या कमर में दर्द होना, हाथों पैरों में अकड़न आना, या पंजे में, पैर के पंजे में कमजोरी होना, या चलने फिरने में जमीन महसूस न होना, या ऐसा लगना कि पैरों के नीचे गद्दी या रुई रखी हुई है, या तो चप्पल या जूता पहनने में दिक्कत होना। अगर ऐसे लक्षण आते हैं तो आपको तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से मिलना चाहिए, पहली बात तो ये। और शुरुआती स्टेज में ही अगर इन चीजों का डायग्नोसिस बना लिया जाए, बीमारी को पकड़ लिया जाए, तो दवा से इलाज करना संभव होता है। कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे स्पाइन का ट्यूमर हुआ या टीबी हुआ, उसमें कभी कभी ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ सकती है, या स्लिप डिस्क, शाटिका, नस का दबना, इन केसेस में जब बीमारी बहुत एडवांस हो जाती है तो सर्जरी के बिना इलाज नहीं हो सकता।
15: जी सर, हम अगले प्रश्न पे आते हैं और ये जुड़ा हुआ है आपके अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। और ये प्रश्न ये है कि न्यूरो सर्जरी में कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी है जिससे रोगियों को लाभ हो रहा है और आप कैसे इन टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहे हैं।
9: आधुनिक न्यूरो सर्जरी में कोशिश की जाती है कि छोटे चीरे से छोटा घाव बना करके ही ऑपरेशन संपन्न किया जाए।
15: जी,
9: तो इसमें CR, एक्सरे, न्यूरो नेविगेशन, माइक्रोस्कोप और मिनिमलिस्ट इन्वेसिव सर्जरी, ये कुछ टेक्नोलॉजी हैं जिनका यूज करके हम छोटे चीरे में कम दर्द के साथ मरीज को बीमारी से निजात दिलाने की कोशिश करते हैं। इन सारी टेक्निक्स में जैसे जिस पेशेंट को जिसकी जरूरत होती है उस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम अपने रोगियों को जल्दी ठीक करना,
15: जी,
9: कम से कम दर्द में उनकी बीमारी से निजात और राहत दिलाने की कोशिश करें।
15: डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न मेरा जुड़ा हुआ है ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से कि आखिर इस हॉस्पिटल की क्या खासियत है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताएं।
9: ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो फातिमा रोड पादरी बाजार पे गोरखपुर में स्थित है, हमारे यहाँ 24 घंटे न्यूरो और ट्रॉमा इमरजेंसी की सुविधा, ICU विद वेंटिलेटर एंड मॉनिटरिंग, ब्रेन और स्पाइन की सर्जरी, CRM, EEG, एक्सरे, इन सारी चीजों की सुविधाएं उपलब्ध है जो राउंड द क्लॉक फंक्शन करती हैं। आप इमरजेंसी में भी हमारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और रूटीन OPD हफ्ते में 7 दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक न्यूरो की OPD चलती है।
15: यहाँ पे हम एक चीज समझना चाहेंगे एक सामान्य मरीज के तौर पर कि एक सामान्य मरीज की जर्नी कैसे रहती है OPD से लेकर और फॉलो अप तक के बारे में पूरे विस्तार से बताएं।
9: देखिए, हमारे जो मरीज आते हैं OPD में उनको जल्दी से जल्दी देखकर उनका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर हम कोशिश करते हैं कि जो जांचें हैं वो उसी दिन 2-3 घंटे के अंदर सारी करा ली जाए जिन जांचों की जरूरत है, ताकि उनका ट्रीटमेंट हम शुरू कर सके और उनको जल्दी से जल्दी घर भी भेजा जा सके। बाकी अगर आवश्यकता होती है तो उनको भर्ती किया जाता है और 2-4 दिन जैसी कंडीशन होती है उसके हिसाब से अस्पताल में रुकना पड़ता है। अगर ऑपरेशन की आवश्यकता होती है तो हमारे यहाँ सुसज्जित होती है जिसमें सारी व्यवस्था सुविधाएं उपलब्ध हैं, और ऑपरेशन के बाद यूजुअली 3-5 दिन में घर भेज दिया जाता है वापस फॉलो अप में, अगर कांके वगैरह लगे हैं तो फॉलो अप में कटाने के लिए बुलाया जाता है। और भेजने के पहले जो पेशेंट के अटेंडेंट है उनको पेशेंट की केयर करना, जो भी सावधानियां रखनी है, दवाइयां वगैरह कैसे खानी है या क्या जांच करा करके आना है, वो सारी चीज विस्तार से समझा कर फिर भेजा जाता है। और हमारी पॉलिसी है कि हम जो दूर के पेशेंट हैं उनको बहुत जल्दी जल्दी वापस नहीं बुलाते, धीरे धीरे फॉलो अप का ड्यूरेशन बढ़ाते जाते हैं और कुछ समय के बाद 90% पेशेंट 3-4-6 महीने के बाद उनको दोबारा यहाँ दिखाने की आवश्यकता नहीं भी रहती। उनकी रोजमर्रा का काम, उनका जो जीवन यापन है उस पे कम से कम असर पड़े। और अक्सर देखा गया है कि लोग अस्पताल जाने से डरते हैं कि बहुत पैसे लग जाते हैं, तो हमारे यहाँ ऑपरेशन के, भर्ती के, इलाज के रेट्स, दवाओं का खर्चा वगैरह काफी कम है और अनावश्यक मरीज को अस्पताल में हम रोकने से परहेज करते हैं। और कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनको घर भेज पाएं ताकि वो अपनी सामान्य जीवन में जल्दी से जल्दी वापस जा पाएं और आर्थिक स्थिति पे भी बहुत बुरा असर न पड़े।
15: बहुत अच्छी जानकारी सर आपने दी कि कैसे ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मरीजों का ख्याल रखता है और उनकी जिंदगी और आर्थिक स्थिति पर कम से कम असर पड़े इस बारे में ध्यान रखता है। हम अभी बात कर रहे हैं डॉक्टर अनुज मिश्रा जी से जो एक न्यूरोसर्जन है। सर हमें एक बार और हमारे सभी श्रोताओं के लिए इमरजेंसी मोबाइल नंबर और अपने हॉस्पिटल का एड्रेस बताएं।
9: जी मेरे हॉस्पिटल का नाम है ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये हातिमा रोड पादरी बाजार गोरखपुर में है और मेरे हॉस्पिटल का इमरजेंसी मोबाइल नंबर है 9170856587।
15: सर अगला प्रश्न मेरा जुड़ा हुआ है जो हमारे समाज से जुड़ा हुआ है कि हमारे समाज में ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर या स्पाइन की बीमारियों को लेकर बहुत सारी गलत फहमियां जुड़ी हुई हैं। तो आप कुछ भ्रांतियों के बारे में बताएं और कैसे उसे दूर किया जा सकता है इस बारे में श्रोताओं को जानकारी।
9: देखिए लकवा या फालिज या ब्रेन स्ट्रोक जिसको कहते हैं
15: जी,
9: वो मूलतया बुढ़ापे की बीमारी है लेकिन कभी कभी युवावस्था में भी हो सकती है। तो पहली भ्रांति तो इसी बात की है कि जवान है तो ब्रेन स्ट्रोक नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि जो समाज में डर बैठा हुआ है
15: जी
9: ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर या स्पाइन की बीमारी के इलाज से संबंधित। और तीसरी चीज है जो इग्नोरेंस है, मतलब शुरुआती स्थिति में जब आप काम चला सकते हैं तो आप दर्द की दवा खा करके काम चला रहे होते हैं और जब तक आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि दवाओं का असर खत्म हो चुका होता है और बीमारी के जो बुरे प्रभाव होते हैं जिनको रिवर्स नहीं किया जा सकता वो आने शुरू हो चुके होते हैं। सबसे पहली तो यही स्थिति समाज में सुधारने की जरूरत है जो जागरूकता ना होने की स्थिति है। दूसरी कॉमन गलतफहमियां ये है कि ब्रेन ट्यूमर या स्पाइन की बीमारी छुआछूत की बीमारी है, तो ऐसा नहीं है। और अक्सर ये ब्रेन ट्यूमर और स्पाइन के ट्यूमर वाली बीमारी दूसरे अंगों में नहीं फैलती है, कुछ केसेस बहुत कम कुछ केसेस को छोड़ करके, और समय पे इलाज संभव है और इंसान अपनी सामान्य जीवन में वापस लौट जाता है कुछ समय के बाद, सामान्य दिनचर्या अपना सकता है अगर सही समय पे इलाज करा जाए। सबसे बड़ी भ्रांति हमारे समाज में ब्रेन और स्पाइन के ऑपरेशन को लेकर है कि अगर ब्रेन या स्पाइन का ऑपरेशन होता है तो उसके बाद फिर कभी सक्सेसफुल नहीं होता और इंसान चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। तो इसके बारे में ये कहना चाहेंगे कि आजकल आधुनिक तकनीक से बहुत कम छोटे चीरे से ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन के बाद 80-90% लोग अगर सही समय पर इलाज किया जाए तो अपनी सामान्य दिनचर्या में कुछ परहेज के साथ जल्दी से जल्दी लौट जाते हैं। ब्रेन और स्पाइन की सर्जरी का सही समय पे करने पे सक्सेस रेट 80-90% रहता है।
15: जी सर आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी और इससे निश्चित रूप से भ्रांतियां दूर होंगी। मेरा अगला सवाल जुड़ा हुआ है कि ब्रेन और नसों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ सरल सुझाव दीजिए हमारे श्रोताओं को।
9: हमारी दैनिक जीवन में कुछ चीजें हैं जिनको करके हम अपनी अपने मस्तिष्क और अपने स्नायु तंत्र नर्वस सिस्टम को हेल्दी रख सकते हैं। जैसे रोज कम से कम 30 मिनट किसी भी तरह का हल्का फुल्का या कैसा भी कसरत, वॉकिंग, रनिंग, स्क्वाट, ये सारी चीजें, या स्विमिंग भी बहुत हेल्प करती है ब्रेन का खून का दौरा इम्प्रूव करने में और सफाई और रिपेयर करने में, पहली चीज। दूसरा अपना खान पान स्वस्थ रखना, खाने में हेल्दी चीजें जैसे फल सलाद सब्जियां इनकी मात्रा बढ़ाना, जो मोटा अनाज कहते हैं हम, जौ ज्वार बाजरा, इसका खाने में सम्मिलन करना। तीसरा अगर आपको ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर है तो उसको कंट्रोल में रखना, दवाइयां रेगुलरली खाना और समय समय पर जांच कराते रहना। और जिनको ये बीमारी नहीं भी है उनके लिए सुझाव ये रहेगा कि साल में एक बार अपने शरीर का फुल बॉडी चेकअप जरूर करें और जब सड़क पे निकलें और अगर आप दोपहिया वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं, कार चलाते हैं तो सेफली ड्राइव करें और सीट बेल्ट का यूज जरूर करें।
15: बहुत ही अच्छी जानकारी सर। अंत में हम अब आपसे जानना चाहेंगे रेडियो श्रोताओं के लिए, खासकर युवाओं और ग्रामीण श्रोताओं के लिए, कि आप चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे।
9: अभय जी, आपके श्रोताओं के लिए और जनरल आम जनता के लिए मेरा संदेश ये रहेगा कि अपने शरीर के बारे में पूरी जानकारी रखें, हेल्दी खाना खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच करते रहें और कोई भी बीमारी को लंबे समय तक केवल
16: मेडिकल स्टोर से दवा लेकर खाकर उसको बड़ा ना बनाएं।
9: रोज कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। मोबाइल टीवी उतना ही जितने की जरूरत है।
16: समय समय पर अपनी जांच कराते रहें। अगर आपको कुछ भी अपने मस्तिष्क, अपने स्नायु तंत्र, अपनी रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो समय रहते न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से संपर्क करके उसका निदान कराएं।
15: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमारे रेडियो के सभी श्रोताओं के लिए दिया, इसके लिए हम आभारी हैं। धन्यवाद सर।
16: धन्यवाद अभय जी।
17: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
18: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
19: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
18: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
19: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
18: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
19: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
18: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
20: सुनिए सुनिए सुनिए,
21: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
20: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
21: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
20: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
22: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
23: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
22: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
23: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
22: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
23: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
24: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
22: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
25: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
26: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
27: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आए और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाए और बनाए अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
26: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101-87952। नियम और शर्तें लागू।
28: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: 174 सीटों पर मिले रुझानों के अनुसार भाजपा 123 सीटों पर आगे है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 48 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। असम में सत्तारूढ़ भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से अब तक 95 के परिणाम घोषित हो चुके हैं। भाजपा को 70 सीटें मिली हैं, वहीं कांग्रेस को 8 सीटों पर जीत मिली है। रुझानों के अनुसार अभी भाजपा 12 और कांग्रेस 11 सीटों पर बढ़त बना रखी है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को अस्पष्ट बहुमत मिल गया है। कांग्रेस को 63 सीटें मिली हैं, वहीं उसकी सहयोगी आईयूएमएल ने 22 सीटों पर जीत हासिल की है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अभिनेता से राजनेता बने विजय के नेतृत्व में टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने के लिए तैयार है। टीवी के 51 सीटों पर आगे है और 57 सीटों पर उसे जीत मिल चुकी है। पुद्दुचेरी में एन रंगास्वामी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की कुल 30 सीटों में से 26 के परिणाम घोषित हो चुके हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार एन रंगास्वामी की एआईएनआरसी पार्टी को 10 सीटों पर जीत मिली है और 2 पर आगे है। भाजपा 3 सीटें जीत चुकी है और 1 पर आगे है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम और पुद्दुचेरी में पार्टी को मिली जीत को कर्मठ कार्यकर्ताओं के दशकों के अथक प्रयास और संघर्षों का परिणाम बताया है। श्री मोदी नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक दिन है।
1: आज का ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
0: कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि जनता का विश्वास भाजपा के प्रति लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये जीत पार्टी कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम है।
2: आज के दिन उत्सव का दिन है मित्रों, कल से हम फिर से परिश्रम के भाव से, पूरे सेवा के भाव से काम करेंगे और आने वाले समय में चुनाव की तैयारियां।
0: भाजपा को पश्चिम बंगाल और असम में मिली भारी जीत पर प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने रंग अबीर लगाकर और मिठाई तथा झालमुड़ी खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ताओं के बलिदान के कारण आज पार्टी को अभूतपूर्व जीत मिली है।
3: बंगाल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जो बलिदान दिया है, आज उनके बलिदान के कारण आज कमल खिला भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में सत सत अभिनंदन है। प्रधानमंत्री जी का, नितिन नवीन जी का, अमित शाह जी का, वहाँ के कार्यकर्ताओं का, वहाँ की जनता का, जो सुपड़ा साफ कर दिया टीएमसी का और ममता बनर्जी का।
0: जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में पश्चिम बंगाल और असम की जीत के लिए भाजपा को बधाई दी है। इधर जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने तृणमूल कांग्रेस के शासन को नकारते हुए भाजपा पर विश्वास जताया है।
4: ममता जी की सरकार 15 साल से थी, इन लोगों ने पूरे बंगाल में अराजक तत्वों का राज स्थापित कर दिया था और बहुत लंबे समय के बाद पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र स्थापित हुआ, जहां जनता का शासन हो, जनता के हित में काम होगा, अराजक तत्वों का सफाया होगा।
0: भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने पश्चिम बंगाल, असम और पुद्दुचेरी में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर खुशी व्यक्त करते हुए कार्यकर्ताओं को बधाई दी। बिहार विधान परिषद के विधानसभा कोटे की एक रिक्त सीट के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा के सूर्य कुमार शर्मा उर्फ अरविंद शर्मा निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। गौरतलब है कि इस सीट के लिए केवल अरविंद शर्मा ने ही नामांकन किया था। पूर्व मंत्री मंगल पांडे के सिवान से विधायक चुने जाने के बाद यह सीट रिक्त हुई थी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पटना, गया, सिवान, दरभंगा और मधुबनी समेत प्रदेश के अधिकतर जिलों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। कई जगहों पर वज्रपात की भी खबर है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि आंधी के कारण कई जगहों पर पौधे और बिजली के खंभे उखड़ गए। इसके चलते आवागमन और विद्युत आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई है। खेतों में लगी फसल के साथ साथ आम और लीची की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। इधर मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर स्थानों पर बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल और पश्चिम चंपारण जिलों में कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के अररिया, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की

0: वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस बीच बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि पुल की मरम्मत को लेकर आवश्यकता पड़ने पर सेना की भी मदद ली जाएगी। श्री सिंह आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे।
1: माननीय मुख्यमंत्री जी ने रक्षा मंत्री जी से भी बात किया है और आर्मी प्रमुख से भी बात किया है और हमारा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है और आर्मी का जो सेटअप होता है हम लोग उनसे भी सहयोग लेने पर विचार कर रहे हैं और यथाशीघ्र हम जो स्पैन गिरा है उसको जो हमारी टेक्निकल टीम गई है उसके रिकमेंडेशन के अनुसार उसे बनाने का काम करेंगे। हम लोगों का प्रयास है कि 3 महीने में इसको हम लोग कम्प्लीट करें।
0: निगम के अध्यक्ष ने बताया कि घटना की जांच के लिए आईआईटी पटना की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। उन्होंने बताया कि इस मामले में संबंधित कार्यपालक अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच भागलपुर के जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने बताया कि आवागमन को सुचारू रखने के लिए वाहनों को मुंगेर के श्री कृष्ण सिंह सेतु पर डायवर्ट किया गया है। साथ ही छोटे वाहनों के लिए नाव और स्टीमर की व्यवस्था की गई है।
2: भागलपुर और नौगछिया दोनों के बीच में क्योंकि एकमात्र मुख्य जो कम्युनिकेशन का माध्यम है नाव ही है तो नाव पे हम सभी नाव पे हमारे जो गवर्नमेंट की नाव है वो तो चलेगी ही। कुछ ऐसे जो फेरी के माध्यम है वो चलेंगे। हम लोगों ने 5:30 सुबह से चलाने का निर्णय लिया और शाम के 6 बजे तक यानी सूर्यास्त से पहले हम लोग उसको बंद कर देंगे। पटना जाने के लिए अपने भागलपुर के लोगों से आग्रह करेंगे यहां से सुल्तानगंज जो कि आप 4 लेन होते पहुंच सकते हैं कृष्णगढ़ चौक पे पहुंच सकते हैं और वहां से मुंगेर होते हुए आप जो 4 लेन है बेगूसराय जो खगड़िया से मुंगेर का जो बेगूसराय का 4 लेन है वहां पकड़ के पटना जा सकते हैं।
0: गौरतलब है कि कल रात भागलपुर और नौगछिया को जोड़ने वाले विक्रमशिला सेतु के 4 और 5 नंबर पिलर के बीच का स्लैब क्षतिग्रस्त होकर गिर गया था। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने आज नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किया। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों और परिसर की अवसंरचना का अवलोकन करते हुए विस्तृत जानकारी ली। जदयू नेता निशांत कुमार ने आज बगहा में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। श्री कुमार ने कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत बनाने की अपील की। संवाद कार्यक्रम को पार्टी के वरिष्ठ नेता और वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार और पार्टी विधायक दल के नेता श्रवण कुमार ने भी संबोधित किया। सीवान जिले के रघुनाथपुर विधानसभा के राजद विधायक ओसामा शाहब के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पुलिस टीम ने हुसैनगंज थाना क्षेत्र के प्रतापपुर स्थित ओसामा शाहब के पैतृक आवास और नगर थाना क्षेत्र के नया किला स्थित घर पर छापेमारी की। प्राप्त जानकारी के अनुसार जमीन कब्जा करने के मामले में ये छापेमारी की गई है। रोहतास जिले के दिनारा थाना क्षेत्र के बेलबैया मठिया गांव के पास आज सुबह सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर सभी मृतकों के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान की राशि उपलब्ध करा दी गई है। मुंगेर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने नक्सली पिगन कोड़ा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली की मुखिया परमानंद टुड्डू हत्याकांड समेत कई अन्य मामलों में तलाश थी। पूर्वी चंपारण जिले के छतौनी थाना क्षेत्र अंतर्गत मठिया स्थित एक होटल में पुलिस ने छापेमारी कर शराब पार्टी कर रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कैमूर जिला के तरौली भपुआ पथ पर महमूदिया बेहड़ी मोड़ के पास सड़क हादसे में जनगणना कार्य में लगी एक सहायक शिक्षिका की मौत हो गई। रोहतास जिले के सासाराम सदर अस्पताल में एम्बुलेंस कर्मियों की कथित लापरवाही से एक मरीज की मौत के मामले में अस्पताल अधीक्षक ने संबंधित कर्मियों से स्पष्टीकरण की मांग की है। अररिया के जिलाधिकारी विनोद तोहन ने नगर निकायों और बुटकों के कार्यों की समीक्षा के दौरान लंबित योजनाओं को समय पर पूरा करने का अधिकारियों को निर्देश दिया। सुपौल के भीमनगर चेक पोस्ट पर एसएसबी की टीम ने मानव तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 8 बच्चों को सुरक्षित बचा लिया है। इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। शिक्षा विभाग ने कटिहार जिले के आजमनगर में पदस्थापित एक नियोजित शिक्षक समेत 4 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। शेखपुरा जिले में ट्रांसजेंडरों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देने और उनके प्रति आम लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए जागरूकता रथ को रवाना किया गया। ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटाइजेशन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को नवादा के जिलाधिकारी ने सम्मानित किया। इधर अभियान के तहत सहरसा जिले के महिषी से लगभग 200 साल

पुरानी पांडुलिपियां एकत्र की गई हैं। इसे पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत। राज्य में पहली बार पार्टी को मिला स्पष्ट बहुमत। असम में भाजपा शानदार वापसी करते हुए तीसरी बार सरकार बनाएगी। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को स्पष्ट बहुमत। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवी के सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। बिहार विधान परिषद के विधानसभा कोटे की एक सीट के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा के सूर्य कुमार शर्मा उर्फ अरविंद शर्मा निर्विरोध निर्वाचित हुए। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
3: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
4: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।

0: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में?
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
6: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
7: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना

0: चला तो इज वाले बाबू मेरा गाना चला तो इज वाले बाबू मेरा गाना चला तो गाना चला तो गाना चला तो
1: अरे आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं गाना बजा दूं गाना बजा दूं बजा दूं आजा बेबी आजा बजा दूं आजा बेबी आजा बजा दूं गाना बजा दूं।
2: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
3: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग,
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
3: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करें 6052 62112 पे।
4: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, AC हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम
3: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। CBSE पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक, सेशन 2026 से 27 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
4: यहां मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
3: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और CCTV कैमरा की सुविधा,
4: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 8002221969 या 9117018350।
9: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
10: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
9: सुनो दिल से।

कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति मेरे शेर मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते।

0: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
1: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
0: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
1: यहाँ उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, नेबोश और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स,
0: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
0: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंजारी रोड HP पेट्रोल पंप के सामने गोपालगंज।
2: रेडियो रिमझिम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है, सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है, और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा, और हमारे एन्यूमरेटर्स हो सकता है कि कुछ प्रिजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये 2 फेज में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, क्योंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पे ज्यादा फोकस करें ताकि सही से जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पर जो बनने वाली हो सही सही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए स्मार्ट एजुकेशन, सुरक्षित एवं संस्कार के साथ शिक्षा, साफ सुथरा माहौल, AC हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो गोपालगंज में एक ही नाम,
7: बाबू भगवान सहाय सेंट्रल स्कूल। CBSE पैटर्न पर आधारित एक कंप्लीट को एजुकेशनल स्कूल, क्लास 10th तक, सेशन 2026 से 2027 के लिए प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8वीं तक एडमिशन ओपन।
6: यहां मिलती है वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, मॉडर्न फैसिलिटीज, कंप्यूटर क्लासेस विद लैब और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस।
7: कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की विशेष व्यवस्था, नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर और CCTV कैमरा की सुविधा,
6: बस एवं आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय, नेतरहाट और अलीगढ़ जामिया की तैयारी की सुविधा, 100% सफलता की गारंटी के साथ। पता, हरखुआ भगवान नगर, वार्ड नंबर 24, विष्णु शुगर मिल के पश्चिम, गोपालगंज।
7: संपर्क करें 800-222-1969 या 9117018350।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: नमस्ते, निदेशक सीबीएसई पब्लिक स्कूल बसडीला खास गोपालगंज जितेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं। अभिभावक महोदय, आप अच्छे स्कूलों की एक सूची बनाइए, उन स्कूलों के क्लासरूम में अवश्य जाइए जिसमें आप अपने वार्ड का एडमिशन दिलाना चाहते हैं। वहाँ क्लासरूम में बच्चों के रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स स्किल, बॉडी लैंग्वेज और फेयर नोटबुक देखने का मौका मिलता है। साथ साथ आप 10th और 12th के सीबीएसई का रिजल्ट भी देखने का मौका मिलता है। यदि अबव 95% स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस एवं रिजल्ट संतोषजनक है तो आप तय कर पाएंगे कि स्कूल अच्छा है। जी धन्यवाद।
4: Last 10th Board Result 2025. Outstanding performance. 50 students scored above 90% and no students scored below 80%. Truly शानदार achievement.
5: लगातार तीन वर्षों 2023, 2024 और 2025 में District Topper in Commerce Stream देने का गौरव।
4: Visit करें CBSE Public School, बस्टीला खास गोपालगंज या contact करें 7633970104।
6: रेडियो रिंगम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है, सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा और हमारे एन्यूमरेटर हो सकता है कि कुछ प्रिजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये दो फेज में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, चूंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एन्यूमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी एन्यूमरेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन पे ज्यादा फोकस करें ताकि सही से जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पर जो बनने वाली हो सही सही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
7: घर पर बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए अब इंतजार नहीं, एक सुनहरा मौका आपका इंतजार कर रहा है।
5: छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपालगंज लाया है आपके लिए शानदार करियर बनाने का अवसर।
7: अगर आप 10+2 डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास है तो बनिए एक प्रोफेशनल सेफ्टी ऑफिसर और पाए अपने भविष्य को एक नई दिशा।
5: यहां उपलब्ध है 1 साल का सेफ्टी डिप्लोमा ADIS, नेबोश और IOSH, PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्स
7: और सबसे खास बात 100% जॉब गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: मोबाइल नंबर 8511168095 और बात करें अमरेंद्र सर से।
7: पता छत्रपति शिवाजी महाराज फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बंजारी रोड HP पेट्रोल पंप के सामने गोपालगंज।
8: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलता नहीं और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु ओकर का भइल।
9: अरे ए बबू, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
8: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत तनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
10: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
11: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
9: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
10: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
9: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
11: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
9: संपर्क 99 393 65 930।
11: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज।
9: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
11: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
9: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराश आ जाता है।
11: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
9: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
12: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
2: भरोसे वाले से लेंगे,
1: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
2: और कीमत भी।
1: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
3: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
4: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन है।
5: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
5: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
5: कॉल करें 8570-32042 पे।
8: प्रसाद क्लिनिक,
9: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
8: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
9: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
10: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
11: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराएं नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
11: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9470-34468 पे। सुनिए सुनिए सुनिए,
11: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
5: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
11: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
12: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं।

0: चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
0: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
3: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
2: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
3: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
4: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिद्म 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला।

0: नूर मेडिकल के पास गोपालगंज, कॉल करें 94512-11001।
1: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
2: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
3: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
4: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
5: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
6: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा, असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी, पुदुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया, जीत का श्रेय देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की। अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवी के पार्टी ने तमिलनाडु में शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजारों में उत्साह का माहौल, सेंसेक्स 356 अंक बढ़ा और निफ्टी 24,100 अंक के पार। अब समाचार विस्तार से। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा है, पार्टी असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी, वहीं पुदुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवी के पार्टी ने शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की है। 5 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीट जीती है। एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 294 सीटों में से 208 सीट पर बढ़त बना ली है और इनमें से 148 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत भी हासिल कर लिया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस 79 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इनमें से 54 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है। वाम दल को 1 सीट मिली है और 1 सीट पर आगे है, अन्य को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से पीछे चल रहे हैं। नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी आगे हैं। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 101 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को 22 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालकुबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने जोरहाट सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई को हराया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वित्री कड़गम टीवी के सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभरकर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के 107 सीटों पर आगे है और इनमें से वो 84 सीटें जीत भी चुकी है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके और उसके सहयोगी दल 74 सीटों पर आगे हैं और इनमें से वो 51 सीट जीत चुके हैं। एआईएडीएमके और उसके सहयोगी दल 53 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, इनमें से 35 सीट जीत चुके हैं। पीएमके 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तमिलनाडु में चेन्नई से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी से। जी सुशील, विजय की टीवी के पार्टी की अप्रत्याशित जीत की प्रमुख वजह क्या रही?
7: देखिए लवलीन, जो विजय को सफलता मिली है, उनकी पार्टी टीवीके को सफलता मिली है, ऐसी किसी भी राजनीतिक विश्लेषक को कम से कम चुनाव परिणामों से पहले तक उम्मीद नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से युवाओं के बीच विजय का क्रेज था, उनकी एक ब्रांड इमेज सोशल मीडिया पर वो जिस तरीके से वायरल हो रहे थे, और खासतौर पर जिस तरीके से तमिलनाडु में 1 करोड़ से ज्यादा युवा वोटर थे, जिसमें 14 लाख से ज्यादा पहली बार बने वोटर थे, यानी जेंजी हम कह सकते हैं, तो युवाओं का एक जबरदस्त समर्थन मिलता हुआ उन्हें दिख रहा है। इसके अलावा जो जयललिता के निधन के बाद एक तरीके से एक सिनेमाई करिश्मा की उम्मीद तमिलनाडु के वोटरों को हमेशा रही है, सिनेमा के लोगों को उन्होंने हमेशा हाथों हाथ लिया है, चाहे एमजीआर की बात हो या फिर जयललिता की बात हो, तो एक लंबे वक्त तक सिनेमा के प्रति यहां के वोटरों का आकर्षण रहा है और वो इमेज और पुख्ता हुई है विजय के आने के बाद। तो एक तरीके से उन्हें जबरदस्त समर्थन युवा वर्ग से भी मिला, और खासतौर पर जो एंटी इनकम्बेंसी यानी जो सत्ता के विरोधी मत थे, उनमें भी उन्होंने एक बड़ी संख्या में मतों को हासिल किया। हम जानते हैं कि 5 साल से ज्यादा जो है सरकार दोबारा रिपीट होने का यहां पर चलन नहीं रहा है, तो उस चलन को देखते हुए डीएमके के खिलाफ जो वोट थे, एंटी इनकम्बेंसी जो वोट थे, वो बड़ी संख्या में उनके पक्ष में गए हैं। तो एक तरीके से उन्होंने पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल दिया है और जबरदस्त सफलता हासिल की है। जी लवलीन,
6: धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। उधर केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसके निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीत ली हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 26 सीटें जीती हैं, सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं, 4 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 28 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की एआईएनआरसी ने 12 सीटें जीती हैं और 2 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। एआईएडीएमके को 1 सीट मिली है, कांग्रेस को 1 सीट मिली है, डीएमके को 5 सीटें मिली हैं। असम से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश डोले से। जी राकेश, असम में एनडीए उम्मीदों के अनुरूप लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, यही दर्शाता है कि लोगों ने उनके कार्यों पर विश्वास बनाए रखा है।
8: जी, 2026 के असम विधानसभा चुनाव परिणाम राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं। देखिए, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की 102 सीटों के साथ प्रचंड जीत के पीछे मजबूत नेतृत्व, राजनीतिक गठबंधन प्रबंधन और विकास के साथ पहचान की राजनीति के संतुलित उपयोग जैसे कई प्रमुख कारक रहे। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा इस जीत के केंद्रीय सूत्रधार के रूप में उभरे। इस जीत में लक्षित कल्याणकारी नीतियों की भी अहम भूमिका रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास भी एक महत्वपूर्ण कारक रहा। ब्रह्मपुत्र नदी पर बड़े पुलों का निर्माण, सड़क संपर्क में सुधार और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना ने डबल इंजन सरकार की कार्य क्षमता को जमीन पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। अवैध घुसपैठ को रोकने और जनसंख्या संतुलन से जुड़े मुद्दों को उठाने की राजनीति मतदाताओं के बीच गहराई से प्रभावी रही। जी
6: धन्यवाद राकेश जानकारी के लिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
9: ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
6: श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है।
9: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
6: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है।
9: आप सबको कहा था गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है, बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ।

0: सरकार है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इस बार चुनाव में मतदान के रिकॉर्ड बने और महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक रही।
2: पश्चिम बंगाल में करीब 93% मतदान होना अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम में भी मतदान के नए रिकॉर्ड बने हैं। इसमें भी महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक रही है। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे उजली तस्वीर बन रही है।
1: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने भाजपा और एनडीए पर भरोसा जताने और समर्थन देने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पार्टी के अनगिनत कार्यकर्ताओं के बलिदान, संघर्ष और शहादत का परिणाम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और यूडीएफ सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव एम ए बेबी ने कहा है कि पार्टी केरलम में जनता के फैसले का सम्मान करती है और राज्य में हार के कारणों का आत्मनिरीक्षण करेगी। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजार में उत्साह का माहौल है। आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 356 अंक बढ़कर 77,269 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 122 अंक बढ़कर 24,119 दर्ज हुआ और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 17 पैसे कमजोर होकर 95.08 रूपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये आकाशवाणी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों और उद्योग ने बदलती परिस्थितियों का विश्लेषण और समझ विकसित कर ली है। उन्होंने कहा कि देश की तैयारी हमेशा अद्यतन उच्च स्तरीय तथा मानक के अनुरूप रहती है और ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नॉर्थटेक सिम्पोजियम के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने भारतीय रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने मूगा रेशम उत्पादन में मिजोरम को राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाने की महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत की। श्री सिंह ने दिन में आइजोल के रेमाबॉक क्षेत्र में स्थित सेरिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने रेशम कताई फैक्ट्री का निरीक्षण किया। श्री सिंह ने बताया कि मिजोरम को मूगा रेशम उत्पादन में अग्रणी बनाने के प्रयास जारी हैं। यूपीआई दुनिया के सबसे बड़े भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में उभर कर सामने आया है। यूपीआई से अप्रैल के महीने में 22 अरब 35 करोड़ लेनदेन किए गए। ये 11 अप्रैल 2016 को अपनी शुरुआत के एक दशक बाद दुनिया की सबसे बड़ी भुगतान प्रणाली बन गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद भारत और जमैका के घनिष्ठ संबंध हैं। दोनों ही ग्लोबल साउथ के विकासशील राष्ट्र होने पर गर्व करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही देशों ने वैश्विक समुदाय में अपनी अलग पहचान बनाई है। जमैका में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत उत्सवों, खेलों और मुश्किलों के हर पल में जमैका के साथ खड़ा रहा है। प्रसार भारती के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रसून जोशी ने आज नई दिल्ली में सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। उन्हें पिछले सप्ताह प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इससे पहले श्री जोशी मुंबई में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 179 रन बना लिए हैं। मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने इस वर्ष होने वाली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान आयोजन के संबंध में योजना बनाने और समन्वित क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। पुदुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। जीत का श्रेय देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की। अभिनेता से राजनेता बने विजय की। टीवी के पार्टी ने तमिलनाडु में शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजार में उत्साह का माहौल। सेंसेक्स 356 अंक बढ़ा और निफ्टी 24,100 अंक के पार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba.
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर. आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण.
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान. पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज. ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर. कॉल 9170856587.
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R. अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में.
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र.
4: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग.
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज.
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ.
4: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902.
5: सुनिए सुनिए सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
5: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती.
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज.
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को.
3: भारत के 24 राज्यों में 160 से अधिक शहरों में 280 से ज्यादा स्कूल्स के साथ एजुकेशन में एक ट्रस्टेड नेम बिरला.
4: अब वही लेगेसी, वही एक्सेलेंस आ गया है आपके शहर गोपालगंज में.
3: इंट्रोड्यूसिंग बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल. एडमिशंस आर नाउ ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 7.
4: और खास बात, प्ले ग्रुप के लिए लिमिटेड पीरियड फ्री एडमिशन.
3: मॉडर्न एजुकेशन विद AC क्लासरूम्स, डिजिटल लर्निंग, कंप्यूटर एंड साइंस लैब्स, लाइब्रेरी एंड सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी.
4: बिकॉज लर्निंग इज बियॉन्ड क्लासरूम्स, म्यूजिक, डांस, योगा एंड जूडो क्लासेस फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट. ऑल टीचर्स आर BEd qualified and follow CBSE guidelines, ensuring quality education.
3: Visit today, Yadopur Road, Saraya Ward No. 1, Shambhu Path, Saraswati Talkies ke paas, Gopalganj.
4: Call now 775-994-9440 or 775-994-9441.
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ. मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा. अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं. चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के. और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा.
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा. तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज. हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है. माया क्लासिकल में सब कुछ है. माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज. प्रोपराइटर सोनू जी. संपर्क करें 99399-66999.
9: रेडियो रिमझिम के समस्त श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं. मैं पवन कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी सह समाहर्ता गोपालगंज बोल रहा हूं. जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी जनगणना प्रारंभ हो गई है और 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वयं की जो जनगणना है, सेल्फ एन्यूमरेशन की कार्रवाई चल रही है. और 2 मई से 30 मई तक के बीच में हमारे एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर घर घर जाकर के इस कार्य को संपादित करेंगे. लेकिन मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है और आह्वान भी है कि आप सभी लोग सेल्फ एन्यूमरेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं. इसका फायदा ये है कि आप जो डाटा देंगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा सही होगा, और हमारे इन्वेटर्स हो सकता है कि कुछ प्रिजुडिस होकर कुछ डाटा इसमें डाल दें। तो अभी का ये दो फेज में होना है। अभी के फेज में जो डाटा है वो तो ब्रॉड घर के स्थिति के बारे में है, चूंकि हाउस लिस्टिंग और हाउस एनुमरेशन की कार्रवाई चल रही है। सेकंड फेज में जब एक्चुअल एनुमरेशन होगा तो उसमें कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो कि आप शायद किसी इन्वेटर के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एनुमरेशन पर ज्यादा फोकस करें ताकि सही सही जनगणना हमारी कैप्चर हो और हमारी नीतियां इसके बेसिस पर जो बनने वाली हो सही सही बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
10: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। सभी कार्यालयों में अब पदाधिकारी 1 बजे तक सुनेंगे जन समस्या। महीने में 2 दिन होगा सभी पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन। महिला की हत्या के मामले में 1 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर हुई प्री सिटिंग। और साइबर ठगी के मामले में 1 आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। बिहार सरकार के मुख्य सचिव ने सभी पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किया है। इसमें बताया गया है कि सहयोग शिविर के लिए नोडल पदाधिकारी और वरीय पदाधिकारियों को नामित करें, साथ ही सभी प्रखंड स्तरीय, अनुमंडल स्तरीय और जिला स्तरीय पदाधिकारी प्रत्येक कार्य दिवस को सुबह 10 बजे से अपराह्न 1 बजे तक निश्चित रूप से अपने कार्यालय में बैठेंगे तथा इस अवधि में कार्यालय के कार्यों के निष्पादन के साथ साथ आम जनता से मिलकर उनकी भी समस्याओं का समाधान करेंगे। कोई भी पदाधिकारी क्षेत्र भ्रमण कार्य उक्त अवधि के पश्चात ही रखेंगे। क्षेत्र में किए गए कार्यों के फलाफल का प्रतिवेदन भी अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे और क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम को लेकर भी जानकारी साझा करेंगे। इधर सामान्य प्रशासन बिहार पटना के तरफ से जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक महीने के प्रथम और तृतीय मंगलवार को पंचायत वार सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में 30 दिन पूर्व से आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था होगी। यह शिविर यथा संभव पंचायतों के पंचायत सरकार भवन में ही आयोजित होगा। जिन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन नहीं है वहाँ पंचायत के उच्च या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसी निर्देश के बाद अब 19/5/2026 को गोपालगंज के सदर प्रखंड और माझा प्रखंड के सभी पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन होगा, जहां आम जनता के बैठने और पेयजल इत्यादि की व्यवस्था होगी। इस सहयोग शिविर में आयोजन के 30 दिन पूर्व से ही आवेदन पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था कर दी गई है। निर्धारित शिविर के तिथि पर प्राप्त आवेदन पत्रों के निष्पादन से आवेदनकर्ता को अवगत भी कराया जाएगा। इस शिविर का उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और निष्पक्षता को लाना है। इसको लेकर आवश्यक प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इस शिविर में उस पंचायत के जितने भी वार्ड हैं, उन सभी वार्डों से संबंधित आवेदन पत्र यदि निष्पादन हेतु अपर समाहर्ता गोपालगंज, भूमि सुधार उप समाहर्ता गोपालगंज एवं अंचल अधिकारी गोपालगंज एवं माझा के न्यायालय स्तर पर भी लंबित हैं, तो उन आवेदनों का निष्पादन इस शिविर के पूर्व हो जाना चाहिए। साथ ही निष्पादन की सूचना संबंधित परिवादी को भी दे दी जाएगी। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि परिवादी स्वयं शिविर में उपस्थित हो। प्रथम शिविर होने के कारण 19 दिन का समय मिल रहा है, परंतु अगले शिविर के 30 दिन पूर्व इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी ताकि किसी भी परिस्थिति में कोई भी आवेदन अनिष्पादित नहीं रहना चाहिए। वहीं बताया जा रहा है कि शिविर में प्राप्त होने वाले आवेदनों को पंजीकृत किया जाएगा और उसे निष्पादित किया जाएगा। कटिहार थाना क्षेत्र में हुई 1 महिला की हत्या के मामले में 1 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि रविवार को कटिहार थाना क्षेत्र के अमही बाके गांव में महिला की हत्या उसके पति के द्वारा ही कर दी गई। पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस ने FSL की टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर अनुसंधान शुरू किया और इस घटना में प्रयुक्त चाकू को विधिवत जब्त किया गया। और इस मामले में कटिया थाने में एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इस कांड के नामजद अभियुक्त मुंशी मियां, पिता हनीफ मियां, साकिन अमही बाके थाना कटिया को गिरफ्तार किया गया, जो मृत महिला का ससुर बताया जा रहा है। इस हत्याकांड में महिला का पति अभी भी फरार है, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है, और इस कांड में शामिल अन्य आरोपियों की भी पहचान कर उन्हें भी गिरफ्तार करने की दिशा में पुलिस के द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है। 9 मई को व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निष्पादन के लिए आज व्यवहार न्यायालय के नए भवन के ग्राउंड फ्लोर में पक्षकारों और उनके अधिवक्ता गण के बीच प्री सीटिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें व्यवहार न्यायालय के सभी न्यायिक पदाधिकारी गण पक्षकारों के बीच प्री सीटिंग कर बहुत सारे सुलहनीय वादों को निष्पादन योग्य तैयार किए। इसे आगामी 9 मई को निष्पादित भी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार अनूप कुमार उपाध्याय ने MMCT वादों के चिन्हित करने एवं पक्षकारों के बीच प्री सीटिंग संबंधित आगे की कार्रवाई को लेकर भी बीमा कंपनी एवं दावाकर्ता के अधिवक्ता गण के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के सचिव के प्रकोष्ठ में बैठक करेंगे। इस बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों से न्यायालयों में लंबित MMCT के निष्पादन योग्य संभावित वादों पर चर्चा भी की गई एवं इसकी एक सूची तैयार की गई है, तथा अगली बैठक में उक्त वादों पर पक्षकारों से एवं बीमा कंपनी से वार्ता कर वादों को तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है, ताकि अगली बैठक में उक्त चिन्हित वादों की सूची निष्पादन योग्य वादों को तैयार किया जा सके। इधर साइबर थाना गोपालगंज के द्वारा आर्थिक अपराध इकाई के निर्देश पर एक म्यूल खाता से संबंधित मामले में त्वरित कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सूचना के अनुसार म्यूल खाता से आरोपी संदिग्ध लेन देन कर रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपाधीक्षक साइबर के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया और मानवीय और तकनीकी जांच तथा आवश्यक सत्यापन के उपरांत संबंधित खाते के धारक की पहचान कर छापेमारी की गई और आरोपी अरुण कुमार, पिता अमर मांझी, साकिन वृंदावन सदासी राय के टोला थाना उचका गांव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि उक्त खाते का उपयोग साइबर ठगी के माध्यम से अवैध रूप से प्राप्त राशि के लेनदेन के लिए किया जा रहा था। पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर इसे पूछताछ के बाद न्यायालय में उपस्थापन के लिए भेजा था, जहां से अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसमें संलिप्त अन्य व्यक्तियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए मानवीय और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने जनता से भी अपील किया है कि किसी भी प्रकार के साइबर फ्रॉड से सावधान रहें एवं संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या नजदीकी थाने को दें, ताकि पुलिस समय पर आपकी सहायता कर सके। पंचायत निर्वाचन 2026 को लेकर अब गतिविधियां शुरू हो गई हैं। बताया जा रहा है कि इसके लिए गठित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में वर्ष 2011 की जनगणना को दर्शाते हुए प्रपत्र 1 का प्रकाशन करने के लिए सचिव राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक 1505 के आलोक में गोपालगंज जिले के 3110 वार्डों की ऑनलाइन प्रविष्टियां पूरी कर ली गईं और इसको 18/5/2026 तक आपत्तियों को आमंत्रित किया जा रहा है। आपत्तियों का निष्पादन 4/5/2026 से 22/5/2026 तक होगा, तथा अपील वादों का निष्पादन 11/5/2026 से 29/5/2026 तक किया जाएगा। आपत्तियां ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष एवं जिला परिषद सदस्य के लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष दी जा सकती है। युवा रोजगार एवं कौशल विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना एवं मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को लेकर सभी संबंधित स्टेक होल्डर के साथ 5/5/2026 को जिला परिषद के सभागार कक्ष में सुबह 10:30 से 12:30 तक बैठक होगी एवं अन्य गणमान्य विशेषज्ञों के द्वारा एक कार्यशाला का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिले के प्रमुख नियोजकों, शैक्षणिक संस्थान एवं व्यावसायिक शिक्षण स्थानों के प्रमुख और कौशल विकास केंद्रों एवं अन्य संबंधित स्टेक होल्डर को आमंत्रित किया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के मामले में अपीलीय प्राधिकार से संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी तथा जिला परिषद सदस्य के लिए अपीलीय प्राधिकार जिला पदाधिकारी को नामित किया गया है। इधर नगर थाने में 6 महीने से अधिक समय से पड़े लावारिस वाहनों पर अब पुलिस ने निस्तारण की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया है। पुलिस ने इसको लेकर जानकारी दी है कि नगर थाना में कई ऐसे वाहन जो थाना परिसर में लंबे समय से बिना दावे के पड़े हुए हैं, इन वाहनों के वास्तविक मालिकों की पहचान के लिए परिवहन मंत्रालय एवं संबंधित इंश्योरेंस कंपनियों के माध्यम से आवश्यक जानकारी संकलित की गई है। वाहन मालिकों को सूचित किया गया है कि वे निर्धारित समयावधि के भीतर अपने वाहनों से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत कर थाना से संपर्क कर वाहन को प्राप्त कर ले, अन्यथा नियमानुसार आगे की कार्रवाई कर इन वाहनों का निस्तारण किया जाएगा। इसके लिए पुलिस ने एक पूरी सूची जारी की है। सभी वाहनों की सूची और उनके मालिकों की सूची थाने पर लगाई गई है। उसमें अगर किसी भी व्यक्ति का वाहन है तो वे लोग शीघ्र ही नगर थाना से वाहन छुड़ाने के लिए संपर्क कर आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। जगतौली ओपी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया और 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने भोपतपुरा स्थित स्याही नदी 4 मुहानी एवं कोयरी गांव 3 मुहानी के पास 2 मोटरसाइकिल से कुल 53 लीटर देशी शराब को बरामद किया और 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक अहद हुसैन पिता नूर अंसारी, दूसरा अबू बकर अली पिता अली अकबर, तीसरा रंजन कुमार पिता नंद किशोर महतो, ये सभी हथुआ थाना क्षेत्र के मनी छापर गाँव के रहने वाले हैं। वही प्रदीप कुमार शाह पिता राजेंद्र शाह साकिन डोमनपुर तथा मिंकू कुमार पांडे पिता जयराम पांडे साकिन पडरौना, ये दोनों जगतौली ओपी भोरे के रहने वाले हैं। इन 5ों को गिरफ्तार कर इनकी मोटरसाइकिल और शराब को जब्त करने के बाद पुलिस अब इन पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई कर रही है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के सल्लेपुर मटिहिनिया बांध पर छापेमारी करते हुए 3 शराब तस्करों को पकड़ा है। इनकी 2 मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि जो आरोपी पकड़े गए हैं उनमें इताफ आलम और छोटे आलम बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के ही तिवारी मटिहिनिया गाँव के रहने वाले है, तो वही तीसरा आरोपी गुलाब सहनी है जो बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के ही सिपाया ढाला का रहने वाला बताया जा रहा है। इनकी गाड़ी और शराब को जब्त करने के बाद उत्पाद पुलिस ने 3ों आरोपियों पर मामला दर्ज करते हुए इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आने वाले समय में गर्मी और लू को ध्यान में रखते हुए जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हीट वेव से बचाव के लिए महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की गई। इसको लेकर आम जनता की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और आवश्यक संसाधनों की तैयारी पर विस्तृत चर्चा की गई। जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित करते हुए कहा है कि गर्मी के इस संवेदनशील समय में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग को विशेष रूप से अलर्ट रहने को कहा गया तथा सभी सरकारी अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में हीट स्ट्रोक से निपटने के लिए पर्याप्त दवाइयां, ORS, बेड एवं चिन्हित कर्मियों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद को निर्देशित किया गया कि सभी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड चिन्हित कर वहां जरूरी सुविधाएं मुहैया कराएं, साथ ही एम्बुलेंस सेवाओं को सक्रिय रखते हुए त्वरित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी निर्देश दिया गया कि अस्पतालों में स्थापित कूलिंग रूम यदि सुचारू रूप से संचालित है तो उसका विधिवत निरीक्षण कर प्रमाण पत्र जारी करें। जिला पदाधिकारी ने पंचायती राज विभाग को निर्देश दिया कि सभी पंचायतों में सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की समुचित व्यवस्था करें, चापाकल नल कूपों की मरम्मत कर उन्हें चालू रखने के साथ साथ जरूरत के अनुसार नए और अस्थायी प्याऊ भी स्थापित करें ताकि आम जन को पानी की समस्या ना हो सके। जिला पदाधिकारी ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे दोपहर के समय अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं तथा गर्मी से बचाव के उपाय को अपनाएं। साथ ही उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सेविकाओं और जन प्रतिनिधियों को भी जागरूकता फैलाने में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा। प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार स्कूलों के समय में भी आवश्यकता अनुसार बदलाव करने एवं बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। कुल मिलाकर जिला प्रशासन द्वारा भीषण गर्मी से निपटने के लिए व्यापक तैयारी सुनिश्चित की जा रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर, सभी कार्यालयों में अब पदाधिकारी 1 बजे तक सुनेंगे जन समस्या। महीने में 2 दिन होगा सभी पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन। महिला की हत्या के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर हुई प्री सिटिंग और साइबर ठगी के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: इक्कीस वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज।
4: और अब 30 अप्रैल तक एडमिशन बिल्कुल फ्री।
3: CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए, 30 अप्रैल तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाइए।
4: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल 9939721308।
11: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री
4: कहाँ पर?
11: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल छवही खास गोपालगंज,
4: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
11: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है।
4: तो देर ना करें, ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
11: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास NH 27 गोपालगंज, कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835556965।
12: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
13: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
12: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 पे।

0: चाहते हो मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
3: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
4: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
3: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
4: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
3: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
4: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
5: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड गोपालगंज।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
8: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
9: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
8: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
8: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
9: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
8: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
9: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
10: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
11: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
12: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
13: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
12: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड गोपालगंज।
10: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91 626 64 498 पे।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97070675।
8: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
9: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
8: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
7: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
8: संपर्क 99-393-65-930।
9: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
7: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
8: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
7: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
8: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
7: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
8: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।

0: सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

बांधी निगाहों की डोर, अब हम

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 197 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस को 68 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वाम दल को एक सीट मिली है, अन्य को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को 21 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के ने 103 सीटें जीत ली हैं और वो 4 सीटों पर आगे है। टीवी के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों परम्बूर और तिरुची में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके के 56 सीट जीत चुकी है। एआईएडीएमके 45 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के बीएस बाबू ने 8,795 मतों के अंतर से हराया। केरल में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीत ली हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं, 4 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। पुद्दुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एआईएनआरसी के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 29 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की एआईएनआरसी और सहयोगी दलों को 17 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। एआईएडीएमके को 1 सीट मिली है, कांग्रेस को 1 सीट मिली है, डीएमके को 5 सीटें मिली हैं। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। गुजरात की उमरेठ सीट पर भाजपा के उम्मीदवार हर्षद भाई गोविंद भाई परमार चुनाव जीत गए हैं। महाराष्ट्र की राहुरी सीट पर भाजपा के अक्षय शिवाजी राव करदिले को जीत मिली है। नागालैंड में कोरीडांग सीट पर भाजपा के दाउचियर इमचेन विजयी रहे हैं। त्रिपुरा में धर्मनगर सीट से भाजपा के जाहर चक्रवर्ती को जीत मिली है। कर्नाटक में बागलकोट सीट से कांग्रेस के उमेश हुलप्पा मेदी को जीत मिली है। कर्नाटक में ही दावणगेरे दक्षिण सीट से कांग्रेस के समर्थ सामनूर मल्लिकार्जुन चुनाव जीत गए हैं। महाराष्ट्र में बारामती सीट पर उपचुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुनेत्रा अजीत पवार विजयी रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 229 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 198 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हैज स्क्रिप्टेड हिस्ट्री इन वेस्ट बंगाल बाय सिक्योरिंग एन ओवरवेलमिंग मैंडेट इन द 294 मेंबर स्टेट असेंबली। द रूलिंग बीजेपी लेड एनडीए हैज सिक्योर्ड अ हिस्टोरिक थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म इन असम। इन केरलम द यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट हैज स्वेप्ट द पोल्स विद 99 सीट्स सिग्नलिंग अ डिसाइसिव रिटर्न टू पावर। पुदुचेरी इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस द रिटर्न ऑफ अ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए गवर्नमेंट लेड बाय एन रंगस्वामीज ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस AINRC. In West Bengal, BJP candidate Suvendu Adhikari defeated West Bengal Chief Minister and TMC leader Mamata Banerjee in the Bhavanipur Assembly constituency by more than 15,000 votes. BJP has crossed the majority mark of 148 in the 294-member house, ending the 15-year rule of Mamata Banerjee-led Trinamool Congress TMC in the first election after Special Intensive Revision SIR of electoral roll. With the win, the state will be witnessing its first BJP government since independence. Out of a total of 293 assembly seats, results have been declared for 271 constituencies so far. BJP has bagged 197 seats while Trinamool Congress has won 68 seats. Congress and regional arm Janata Unnayan Party AJUP secured 2 seats each. CPM clenched 1 seat. In Assam, out of the results declared for 101 constituencies, BJP has bagged 73 seats, while its allies Assam Gana Parishad AGP has won 6 seats and Bodoland People's Front BPF has secured 8 seats. On the other hand, Congress has gained 10 seats, All India United Democratic Front AIUDF clinched 2 seats, while Raijor Dal and TMC have secured 1 seat each. BJP leader and incumbent Chief Minister Himanta Biswa Sarma has won from Jalukbari constituency, defeating Congress rival Bidisha Nyog. In Keralam, the Congress-led UDF has clinched a decisive win. While the Congress won 63 seats, its ally IUML added 22, giving the alliance a dominant edge across the state. In Puducherry, the National Democratic Alliance is set to form the next government, securing a comfortable majority of 18 in the 30-member house. Actor-turned-politician Vijay-led Tamaraga Vetri Karagam, TVK, is all set to create history in Tamil Nadu Assembly election by emerging as the single largest party. TVK has 105 seats and is leading on 2 seats out of 234 constituencies across the state. In an intense three-cornered battle in the state, 229 results have been declared while trends are available from other 5 seats. According to the Election Commission, the ruling Dravida Munnetra Kazhagam DMK led by Chief Minister M.K. Stalin has won 28 seats and is leading on 2 seats, while its rival All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam AIADMK has won 46 seats and is leading at 1 seat. PMK has won 2 seats, Indian National Congress INC has won 5 seats, BJP, DMDK and AMMKMNKZ bagged 1 seat each. CPI, CPIM, VCK and IUML bagged 2 seats each. Senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi has said that today is a historic and unprecedented day and expressed gratitude to the people and party workers of West Bengal, Assam, Puducherry, Tamil Nadu and Keralam. Addressing party workers at BJP headquarters in Delhi this evening, Mr. Modi said today heralds a new dawn for the nation and people have placed their trust in India's great democracy, politics of performance and trust in the spirit of Ek Bharat, Shreshth Bharat.
2: पराजय लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
1: एंड विद दैट वी एंड दिस न्यूज बुलेटिन।

रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी रेडियो दोस्त आरजे सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस के कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश को।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
2: जी मैम, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ, मैम मायर एमपी से।
1: जी, क्या हाल चाल है सुनील जी?
2: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे मैम शो का इंतजार करते हुए मैम, तो टाइम हो गया तो हम सोचे चलो अभी फोन लगाते हैं, फोन भी लग गया मैम।
1: चलिए बढ़िया है। गाना कौन सा सुन रहा है आज आपको?
2: जी हमको सुनवा दीजिएगा फिल्म।

0: जी सर, भगवान ने क्या बोला, तू धरती में जाए जहाँ पी रहे, तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। और सुनवाएंगे किसने रेडियो रिमझिम, दोस्त लोग सुनते सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
1: ओके तो प्ले करेगा ना?
0: ओके मैम।
1: ओके बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सो मैं कॉल किया।

0: हाँ अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजी 104 FM में।
0: मैं मोहम्मद यूसुफ सिपाही डाला अपना मेडिकल हॉल से।

0: बोल रहा हूँ।
1: जी कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया है। अभी फोन लगाए थे तो कट गया, नेटवर्क नहीं था।
1: जी जी बारिश हो रही है ना, शायद इसके वजह से नेटवर्क सही नहीं है।
0: यहाँ पर भी शिकायत डाला मैं, बहुत जोरों से बारिश हो रही है, 2 घंटा हो गया लगभग।
1: हाँ यहाँ भी वही हाल है।
0: हाँ मौसम तो बहुत खराब है, अब क्या कीजिएगा,
1: क्या करेंगे, काम तो करना ही है।
0: ये है कि गेहूँ के दौरी हो गया।
1: हाँ हाँ हो गया, लेकिन बारिश हो गया तो खेत के लिए भी सही है।
0: हाँ
1: हाल हो जाएगा।
0: हाँ हाल हो जाएगा, बिचड़ा वगैरह गिरेगा गेहूँ का, धान का।
1: हाँ जिसको गिराना होगा वो गिरा देगा, सही रहेगा उसके लिए।
0: तब हम यही कहेंगे कि आप हमको इसी बरसात का गाना सुनवा दीजिए।
1: जी बता दीजिए नाम।
0: ये कह रहे हैं कि बेमौसम बरसात हुई, अभी बरसात का मौसम नहीं है।
1: जी जी
0: बेमौसम बरसात हुई है, कुछ तो ऐसी बात हुई है, अपना सब हम भूल गए जब से सोनी जी से बात हुई है। हाँ तो जारे वो सारी बदरिया, यही
1: आवाज कट गया, एक बार और बताइए।
0: जारे वो कारी बदरिया
1: जी,
0: इसी गाने को सुनवाइएगा
1: और डेडिकेट भी करिएगा।
0: हाँ अपना मेडिकल हॉल के सभी स्टाफ और खास कर कन्हैया जी जो फौजी से रिटायर किए हैं उनको सुनवाइए।
1: चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी।
0: हाँ ठीक
1: ठीक बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोमे कॉल के जी।

0: सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: मैं अहमद अली सर, आवाज नंबर 1 है।
1: जी का हाल चल बा अहमद जी?
2: ठीक बस जी, अपन बताई बारिश में कैसा लागत है?
1: अरे का बताई कैसा लागत है, जैसे अंदर पाँव धैनी तले बारिश तेज हो गए, खुला लाटे 10 मिनट खातिर वही बीच में आईनी है।
2: भाग मनाई की पहुँच गई नहीं है न तो आइयो ना कोई दिन
1: न। हमको तो ऐसा ही लग रहा है की हम आज नहीं जा पाए, क्या की निकले के टाइम में ही बारिश आ गया।
2: हमारा नंबर तो 2 बार लागल है लेकिन उठनी है ना।
1: अरे जैसे आके चालू कर ले रही अभी बीच में आई रही, फोन में चार्जो ना रहे, लाइट ना रहे तो चार्जो ना भई रहे।
2: हम कहनी हमारा पर अपना जुलूम का है होता पूछे मम्मी से।
1: ना ना जुलूम नहीं होते, ना चार्ज ना रहे और बात करती तो तुरंत मोबाइल बैठ जाये।
2: कई अफसरी के मोबाइल से फिर लगनी, हम अपना मोबाइल से लगावत लगावत है
1: ना
2: लागल है। 126 बार डायल कर ले बनी।
1: अच्छा अच्छा चले लागल बता दी।
2: आज गाना तो सुनवा दी नजायज फिल्म से बरसात के मौसम में तो नहाई के आलम में। सुनाने के बाद सबसे पहले कमरान रशीद के, राघव जी के, दिलीप भाई के और जो भी रेडियो रिमझिम जहाँ से भी सुना था सब करा के आज कहिया बाजी गाना। गाना कब बाजी? आज की का
1: आज बाजी, आज शाम के 5 से 7 के बीच में आई।
2: ठीक बा
1: जी,
2: चलिए शुक्रिया
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जुम्मा मुबारक सब करा के।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
4: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
3: भागे भागे फिरते हैं।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: नमस्कार सोनी जी।
5: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: धर्मेंद्र तिवारी बोल रहे हैं
5: जी। कैसे हैं धर्मेंद्र जी?
6: बढ़िया है।
5: तो क्या हो रहा था अभी?
6: अभी तो घर पर आए हैं, बारिश हो रही। घर में कुछ काम है, वही कर रहे थे।
5: तो गाना कौन सा सुनना है आपको?
6: शादी वाला कोई गाना सुनवा दीजिए।
5: शादी वाला और सुनवाना भी है?
6: रेडियो रिमझिम सोता सुनेंगे सारे आदमी।
5: ओके, चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना आपकी
6: जी। नमस्कार।
5: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद समय कॉल किया।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजी 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
1: जी कुमारी गोपालगंज से।
0: जी कैसे हैं खुशी जी?
1: अच्छे हैं, अपना बताइए।
0: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या हो रहा था अभी?
1: अभी कुछ नहीं, बारिश हो रहा है, बैठे हैं।
0: तो गाना कौन सा सुनना है खुशी जी आपको?
1: गाना बज सकता है।
0: कौन सा गाना?
1: भोजपुरी गाना बज सकता है
0: जी। बिल्कुल बज सकता है भोजपुरी गाना। अच्छा, प्यार के बुखार उतारे लगी हो, ये वाला गाना ना?
1: हाँ यही।
0: अच्छा, और सुनाना भी है?
1: हाँ, कुमारी शिवम कुमार सलोनी कुमारी को और आपको जितने रेडियो सुने सबको।
0: ओके चलिए, तो प्ले करे गाना आपकी?
1: हाँ कर दीजिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय कॉल के।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello,
4: hello, hello, hello, hello, hello.
3: भागे भागे फिरते हैं।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: मैं अहमद अली सारे आवाज नंबर एक है
6: जी। का हाल चाल बा अहमद जी?
7: ठीक बा जी, अपन बताए बारिश में कैसा लागता?
6: अरे का बताए कैसा लागता, जैसे अंदर पाँव धैनी तले बारिश तेज हो गयी, खुला लाटन 10 मिनट खातिर वही बीच में आईनी है।
7: भाग मनाई की पहुँच गयी नहीं है, आइयो ना कोई दिन
6: न हमको तो ऐसा ही लग रहा है की हम आज नहीं जा पाए, क्या की निकले के टाइम में ही बारिश आ गया।
7: हमारा नंबर तो 2 बार लागल है लेकिन उठनी है ना।
6: अरे जैसे आके चालू कर ले रही अभी बीच में आई रही, फोन में चार्जो ना रहे, लाइट ना रहे तो चार्जो ना भई रहे।
7: हम कहनी हमारा पर अपना जुलूम का है होता पूछे मेन से।
6: ना ना जुलूम नहीं होते, ना चार्ज ना रहे और बात करती तो तुरंत मोबाइल बैठ
7: जाये। कई अफसरी के मोबाइल से फिर लगनी है, हम अपना मोबाइल से लगावत लगावत है
6: ना
7: लागल है। 126 बार डायल कैले बनी।
6: अच्छा अच्छा चले लागल बता दी।
7: आज गाना तो सुनवा दी नजायज फिल्म से बरसात के मौसम में तो नहाई के आलम में। सुनाबे के बाद सबसे पहले के कमरान रशीद के, राघव जी के, दिलीप भाई के और जे भी रेडियो रिमझिम जहाँ से भी सुना था सब करा के। आज कहिया बाजी गनवा? गनवा कब बाजी? आज की का?
6: आज बाजी, आज शाम के 5-7 के बीच में आई।
7: ठीक बा
6: जी,
7: चलिए शुक्रिया
6: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
7: जुम्मा मुबारक सब करा के।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन गिनते बजते हैं तो कहते हैं hello,
4: hello, hello, hello, hello, hello.
3: भागे भागे फिरते हैं।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: हाँ संग जी, हमारा संग ऐसा होता का?
5: जी जी, का होता थे बताई।
6: फोन था के कट गई है, नेटवर्क
5: ना जी, सबके संगे होता है, शायद बारिश के मौसम बनो, बारिश काफी तेज आता तो मैं नेटवर्क था फंसाता थे।
6: हम जाने की हमारे संग होता कभी वो भरी
5: ना, ना आज काफी भयानक वाला बारिश होता, आज 2 घंटा हो गए अभी बारिश होता।
6: हम नहीं कहता अभी नीचे
5: ना, यहाँ तो होता बारिश खुल रहा था मई नहीं, आज ऐसे अंदर पैर रखने फिर बारिश शुरू हो गए। राकेश सर से बात करता नहीं नू?
6: हाँ जी, हाँ जी
5: जी, बताए जी।
6: तब बढ़िया, हमने कहा 29 तारीख के खूब भयंकर बारिश भइल है, नहीं पानी होई तरी।
5: ओ दिन तेज भइ रहे, शाम के बारिश भइ रहे।
6: हाँ शाम के पूरा टेंट समझाने जितना लोग के लग रहे हैं दिया गए,
5: सब लेके चल गए।
6: हमने के पूरी खाई बैठल है यार, मतलब शाम के ही अभी मतलब 2-4 कवर पे खेल ही रखे तब तक पतल उतल न दिया।
5: बोला की ना खाए दे आज
6: ना खाए के मिल दिन,
5: अब सब उदिया ले गल तो कैसे आदमी खाए।
6: हाँ पूरा टेंट समझाना में पानी लग रहा है, एक फीट तक पानी लग रहा है, तो मैं अभी कहाँ बैठे कहाँ खाई है
5: ना खा पाई है। सही बात बा।
6: हाँ खाना में कुछ देख जो ड्रम सोल है ओकरा में पानी जगता जगती जो है ओकरा में पानी भर गया।
5: वही बात बटे, खाना भी बर्बाद हो गए।
6: हाँ।
5: तो बता दी गाना कौन सुने के बा?
6: अच्छा सुने के चाहत यहाँ पवन सिंह के सनहिया लगावल बहुत बात नहीं है
5: और सुनवाए के भी बा।
6: हाँ सुनवाए के पूरा रेडियो काल फैमिली बा, रहुआ बानी हम बानी। अरे घड़ी तो बलिराम जी संगे तनी छटक गई बड़न, छटक गई बड़न, जानते बनी उनका घरेलू बैठल बनी।
5: अच्छा अच्छा, क्या वहाँ के श्रीमती जी ने की आवेदन का?
6: श्रीमती जी कहते थे कि 24 घंटा में 23 घंटा तू उनके संग रहो तो हमारा संगे कब रहो।
5: ना तो 24 घंटा में 23 घंटा ना तो रखी।
6: हाँ तो अब बड़न की बार बार हमारे कहीं चले जाए,
5: तब तक लड़ाई होके के बात बटे।
6: हाँ वही से लड़ाई हो जाता है। बुधे के दिन समझे खदल बनी की तू हमारा संग भाई मत रहा।
5: चली बढ़िया कैले बनी
6: बनी की हमारा संग रहो, हम अपन जहाँ बनी तहाँ ठीक बनी, हमारा से जब जरूरत पड़े तब हमारा से आके मिल ली।
5: जब काम पड़ी तब मिल ली, ठीक
6: बा। हाँ काम पड़ी तब मिल ली
5: बना,
6: काम पड़ी तब मिलने के बिना मतलब की हमारा संग रहो भी ठीक नहीं है।
5: बिल्कुल
6: हाँ, उनको मेरा भी कहना मिलेगा।
5: चली ठीक बा, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें कॉल करने।
7: काहे आखिर काहे काहे रोवलू जब हंसावे के ना रहे, काहे गुनगुनौलू जब गावे के ना रहे, आज आंसू पोछा तनी एगो प्रश्न बन के, काहे कैलू मोहब्बत जब निभावे के ना रहे।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो,
1: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
3: भागे भागे फिरते हैं।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो मैडम, नमस्कार।
4: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: जी मैं मन्नान बोल रहा हूँ कपूरथला से।
4: जी कैसे हैं मन्नान जी?
5: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आज टाइम मिल गया है फोन करने के लिए। नाश्ता पानी हो गया?
4: जी जी बिल्कुल हो गया है।
5: हो गया कि हो रहा?
4: नहीं नहीं हो गया है।
5: हमको तो लगता है कि हो रहा है।
4: ना ना आज तो सुबह में ही हो गया है।
5: तो गाना सुना दीजिए मैडम।
4: जी
5: बन के दुल्हनिया मैं चली तेरे द्वार।
4: जी
5: तो गाना हमको वही सुनना था।
4: और सुनवाना भी है?
5: और सुनवाना है क्या है? वही जो आसाम वाले लोग आए हैं तो उन लोग को सुनाना है। जैसे बेनजीर नाम है, बाबुल नाम है, आलिया नाम है।
4: जी
5: इन लोगों को सुनवाना है और आपको सुनवाना है। बाकी रेडियो में जितने रिमझिम के साथ प्रेमी है लोग वो सुनेंगे।
4: तो प्ले करे गाना?
5: बिल्कुल शौक से प्ले कीजिए, ज्यादा सुने आपका प्ले किए हुए गाना।
4: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो माय चॉइस में कॉल किया।

0: गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन 90.4 FM में।
0: थैंक यू मैम, आपको भी बरसात मुबारक।
1: जी जी, बरसात आपके उधर भी हो रही है क्या?
0: बहुत अधिक, आज तो रेनकोट पहन के आए हैं काम पे।
1: अच्छा,
0: टाइम पे ही आ गए थे, बारिश हो रहा था।
1: जब रेनकोट पहन के आना है तो आदमी टाइम पे ही आएगा।
0: और आज हमें एक भजन सुनना है।
1: जी बिल्कुल, बताइए कौन सा भजन सुनना है।
0: संजय मित्तल का गाया हुआ है, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, जिंदगी अब तेरे नाम है सांवरे।
1: जी, और सुनाना भी है।
0: हाँ, सारे लिसनर्स लोग को। और जमाना बहुत खराब चल रहा है, लग रहा है कि अब भगवत भक्ति ही आदमी का मतलब अंतिम सहारा है।
1: तो यही होगा।
0: वही चीज लगातार अखबार में वही चीज सुनने देखने को पढ़ने को मिल रहा है, सोशल मीडिया पे भी वही चीज आ रहा है ज्यादातर।
1: वही चीज है एक। ठीक है फिर।
0: ठीक है
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोना कॉल।
0: थैंक यू मैम।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello,
5: hello, hello, hello, hello, hello.
4: भागे भागे फिरते हैं।
6: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
8: नमस्कार मैडम।
7: नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
8: नाम मनोज कुमार
7: जी,
8: हम मुंगेर जिला से बोल रहे हैं।
7: कैसे हैं?
8: ठीक हैं।
7: तो क्या हो रहा था?
8: क्या हो रहा था, बगीचा में बैठे हैं, रखवाली करते हैं। अपने क्षेत्र का कुछ जानकारी हम आपसे साझा कर सकते हैं?
7: जी बिल्कुल कर सकते हैं।
8: देखिए, हमारे गाँव के बगल में एक घोड़ाखुर पहाड़ है जिसका पौराणिक गाथा है कि जब दशरथ जी घोड़ा छोड़े थे तो वो घोड़ा जो था वही पहाड़ पे आके रुका था, तो उसका पदचिन्ह अभी तक यहाँ है।
7: अच्छा अच्छा,
8: इसी के नाम पे इस पहाड़ का नाम घोड़ाखुर रखा गया है। और वहाँ पर एक भोले बाबा का मंदिर है, वहाँ का मनोकामना सिद्ध होता है। जो भी कोई वहाँ जाके मांगते है ना, का मनोकामना सिद्ध होता है उस मंदिर में। बगल में झील है, बहुत सुंदर झील, बहुत अच्छा देखने में लगता है। 1 जनवरी को लोग वहाँ पिकनिक करने भी जाते हैं।
7: ये बढ़िया जानकारी दी है, कभी घूमना हुआ तो फिर आदमी आ सकता है उधर।
8: हाँ आइए, बहुत अच्छा घूमने का जगह है यहाँ पर। पानी इतना अच्छा गिरता है ना ऊपर से झरना, कहते हैं कि अगर किसी को खुजली उजली हो गया है कुंड में नहा लीजिए तो ठीक हो जाएगा।
7: अच्छा,
8: हमारे पहाड़ का यही विशेषता है मैडम। गाना हमको सुना दीजिए आज
7: जी,
8: दोस्ती का, गुड़िया कब तक रूठी रहोगी।
7: सुनवाना भी है?
8: सुनवाना है आपको, सरिता देवी को और सिंजिन के सारे श्रोतागण को। ठीक है, प्रणाम मैडम, गाना सुना दीजिए।
7: जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल किया।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: थैंक यू
1: जी। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: जी रियाज अंसारी, सिवान।
1: जी जी, क्या हाल चाल है?
2: हाल चाल बढ़िया है, यहाँ तो कंपटीशन हो रहा है कॉल लगाने के लिए।
1: चलिए तो कंपटीशन में आप जीत गए लग रहा है।
2: हाँ, मैं बन गया।
1: चलिए बढ़िया है, तो बता दीजिए।
2: पहली बार भी किया था तो 75, अभी 76।
1: चलिए बढ़िया है, लग गया ना?
2: हाँ लग गया जी, लग गया। लड़ाई पे जा रहे हैं, मार करेंगे, मार करेंगे।
1: चलिए, तो आपको उधर भी बारिश हो रही है?
2: नहीं, हमारे और इधर हम बेंगलोर में है ना, अभी फर्स्ट टाइम फोन किया था आपको, सेकंड टाइम है। तो इधर तो दिन में धूप होता है पर माशाल्लाह रात को बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। अब बारिश भी रात को ही होती है, दिन में कमाओ रात को सो जाओ।
1: बढ़िया है, रात को बारिश होती है तो कोई टेंशन नहीं रहता, अपने घर में सब कुछ रहता है।
2: उधर तो गाँव में तो पूरा आंधी तूफान, क्या क्या किसी का सामने आना, टेंट सब उड़ जाए।
1: आज तो बहुत सारा इधर लगन है और देख रहे हैं कि सुबह 10 बजे से बारिश इतनी कंटिन्यू हो रही है।
2: हम भी मिस कर रहे हैं यार बहुत अपने गांव की। वहाँ
1: चलिए, तो गाना कौन सा सुनना है?
2: गाना हमें सुनना है वो मेरे आने पे खिल जाना तेरा, और मेरे जाने पे रुक जाना तेरा, याद है ना?
1: जी, और डेडिकेट भी करिएगा।
2: हाँ करेंगे, आकाश, सैनुल्ला, मुकान और शहजादी।
1: चलिए तो प्ले करे गाना आपकी।
2: और एक बात, मैम कुछ बोल सकते हैं शहरी वगैरह? क्योंकि
1: बिल्कुल कुछ भी बोल सकते हैं जिससे सुन के किसी को आपत्ति नहीं हो, किसी को
2: नहीं, नहीं, नहीं,
1: नहीं, मतलब मैं आपको बोल रही हूँ किसी को दुख ना हो, बाकी आप सब कुछ बोल सकते हैं। और गाने में भी कोई ये नहीं है, गाना बस जातिवाद नहीं होना चाहिए, धार्मिक गाना नहीं होना चाहिए, बस
2: वो सबसे दूर रहते हम लड़ाई झगड़ा से, क्या मतलब। तो हम यही कहना चाहते कि हमारे सैड सॉन्ग के साथ में एक भी बज जाए। मांगा था खुशी आशियाने की, चल पड़ी आधिया जमाने की। मांगा था खुशी आशियाने की, चल पड़ी आधिया जमाने की। मेरा दर्द कोई समझ ना सका, क्योंकि हम याद रहते हैं हमेशा मुस्कुराने।
1: जी जी,
2: बस इतना ही, थैंक यू।
1: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी चॉइस में कॉल।
2: थैंक यू मैम,
1: वेलकम।

तो दोस्तों, आप लोग अभी कार्यक्रम हेलो माय चॉइस को मेरे साथ यानी आरजे सोनी के साथ सुन रहे थे। अब समय हो चुका है इस कार्यक्रम से विदा लेने का, तो मुझे दीजिए अब जाने की इजाजत और ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो रिंजन 90.4 FM। मिलते हैं अगले कार्यक्रम।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: क्या बोले थे? बुलाती है मगर जाने का नहीं।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: शहर का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

प्रभु की लीला और माया का अद्भुत दृश्य उपस्थित है अयोध्या में, जो सर्वत्र व्याप्त निरंजन अर्थात माया रहित निर्गुण और अजन्मा ब्रह्म है। वह भक्ति और प्रेम के वश होकर माता कौशल्या की गोद में नन्हा शिशु बनकर खेल रहा है। नील कमल और जल से भरे मेघ के समान इस बालक के शरीर में करोड़ों कामदेवों का अनुपम मनोहारी रूप है। चरण के तलवों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह अंकित हैं। नन्हे नन्हे पांव से पैंजनी की ध्वनि मुखरित होती है तो मुनियों का मन विमोहित हो जाता है। लाल कोमल होठों से उच्चरित मधुर तोतले शब्द बहुत प्यारे लगते हैं। चिकने घुंघराले बालों को माता ने कई प्रकार से बनाया संवारा है। ऐसी ही मनोहारी छवि है पीली झंगली में लिपटे शरीर के हाथों और घुटनों के बल चलने की। बाल लीला देखने और उसके सुख का भागी होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो रहा है जिन्होंने प्रभु के चरणों में प्रीति जोड़ी है। भगवान शंकर पार्वती को राम कथा सुनाते हुए कहते हैं, इस प्रकार जगत के माता पिता अवधपुर के निवासियों को सुख दे रहे हैं।

स्नान करा पालने में सुला दिया। जब स्वयं स्नान आदि से निवृत्त होकर रसोई में पहुंची तो वहां राम को भोजन करते पाया। चकित हुई, अभी थोड़ी देर पहले ही तो उन्हें पालने में पढ़ाया था। दौड़कर पालने के पास पहुंची तो पुत्र को वहां सोया देखा। उसी क्षण उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, अनेक पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण ज्ञान आदि अद्भुत दृश्य देखकर, जिनके बारे में कभी सुना भी न था, माता को आश्चर्यचकित तथा डरी हुई देखकर श्री राम ने पुनः शिशु रूप धारण कर लिया। माता ने परम ब्रह्म का वो रूप देख उनकी स्तुति करने में भी अपने को असमर्थ पाया।